मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप समाचार सुनेंगे।
1: जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

0: काल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ईश्वर नाम जपने से सारे दुखों का नाश हो जाता है और परम गति को ये हमारा शरीर हमारी आत्मा प्राप्त हो जाती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आप ये प्यारा सा भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला भजन आइए अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण की आवाज में। श्रोताओं, राम नाम या उसकी कृपा जिस मनुष्य को पा जाता है वो मनुष्य तो इस संसार में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा उस प्रभु की वाणी में लिखा है। प्रभु कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी आएगा मैं उसे इस भवसागर से पार कर दूंगा। और श्रोताओं, ऐसी कृपा विरले ही लोगों को मिलती है।

जी हाँ श्रोताओं, जो उस परम पिता की दया प्राप्त कर लेता है वो ऐसे ही गुण गाता है। अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं भाई हरचंद सिंह रागी की आवाज़ में ये शब्द।

अभी आप सुन रहे थे भाई हरचंद सिंह रागी की आवाज़ में ये शब्द। श्रोताओ, अब उस परवरदिगार, रहमत करने वाले उस परवरदिगार के दर पर चलते हैं और अपने दोनों हाथ फैलाकर उससे दुआ मांगते हैं और उसकी रहमतों की, जितनी भी उसने हमारे ऊपर रहमतें की है, अपनी पनाह में रखा है, हमें संभाला है, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं।

तस्लीम आरिफ और साथियों के स्वर में अभी आप ये नात सुन रहे थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कमल कुमार और साथियों के स्वर में श्री सूर्यदेव आरती। श्रोताओ, आज रविवार है और रविवार प्रिय होता है सूर्यदेव को। सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर इस आकाश में अपना परचम फैला चुके हैं। सूर्यदेव को हम नमन करते हैं इस आरती के साथ।

कमल कुमार और साथियों के स्वर में अभी आप ये सूर्यदेव आरती सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और अनुराधा पोटवाल के स्वर में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और अनुराधा पोडवाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: एक ज्ञान ऐसा है जो सीखने से मिलता है और एक ज्ञान ऐसा है जो भूलने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जो दौड़ने से मिलता है और एक ज्ञान ऐसा भी है जो रुक जाने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जिसे पाने के लिए महत यात्रा करनी पड़ती है और एक ज्ञान है जिसे पाने के लिए केवल अपने भीतर झांक कर देखना काफी है। जो ज्ञान श्रम से मिलता है।

0: है वह बाहर का ज्ञान होगा। आखिरी अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं। अंतिम अर्थों में तो जो अपने भीतर ही पाया है वही बस मूल्यवान होगा, क्योंकि जो ज्ञान हम बाहर से पाते हैं उससे हम स्वयं को नहीं जान सकेंगे, और जिस ज्ञान से स्वयं का जानना न हो वह ज्ञान नहीं है, केवल अज्ञान को छिपाने का उपाय है। पांडित्य से प्रभा उभरती है, यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। पांडित्य से प्रभा उभरती नहीं है, सिर्फ छिप जाती है, ढक जाती है। एक तो ज्ञान है खुले आकाश जैसा, जहाँ एक भी बादल नहीं है, और एक ज्ञान है आकाश बादलों से भरा हो, जहाँ सब आच्छादित है। मनुष्य की आत्मा आकाश जैसी है, न कहीं गई न कहीं जाने को कोई जगह है, न कहीं से आई न कहीं जा सकती है, आकाश की तरह है, सदा से थी और सदा होगी, कोई समय का कोई स्थान का सवाल नहीं। तुमने कभी पूछा कि आकाश कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? आकाश अपनी जगह है, आत्मा भी अपनी जगह है। आत्मा अर्थात भीतर का आकाश, परंतु आकाश में भी बदलियां घिरती हैं, वर्षा के दिन आते हैं, आकाश आच्छादित हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसकी नीलिमा बिल्कुल खो जाती है, उसकी शून्यता का कोई दर्शन नहीं होता, सब तरफ घने बादल घिर जाते हैं। ऐसे ही चेतना के आकाश पर भी बादल घिर जाते हैं, स्मृति के, विचार के, ज्ञान के, जो बाहर से अर्जित किया हो। और जब बादल घिर जाते हैं तो भीतर की नीलिमा का भी कोई पता नहीं चलता, भीतर की शून्यता बिल्कुल खो जाती है, भीतर का विराट शूद्र बदलियों से ढक जाता है। एक तो ज्ञान है बदलियों की भांति, जिसे तुम दूसरों से प्राप्त करोगे, जिसे तुम किसी से सीखोगे, शास्त्र से, समाज से, संस्कार से तुम उसे संग्रहित करोगे। जितना संग्रह बढ़ता जाएगा, जितना पांडित्य घना होगा, उतना ही भीतर का आकाश ढक जाएगा। जितना जानोगे उतना भटकोगे। जानने वाले का अहंकार उस मुक्त आकाश में नहीं ठहर सकता, क्योंकि एक ही पाप है, वह है अपने को भूल जाना। और अपने को भूलने का एक ही ढंग है, दूसरी चीजों को याद करने में लग जाना। फिर जगह ही नहीं बचती अपने को याद करने की, फिर हजार चीजें याद हो जाती हैं, एक चीज भूल जाती है, और हजारों की भीड़ में तुम्हारा कहाँ पता चलता है? बाजार की भीड़ है, आंकड़ों का फैलाव है, जानते तुम बहुत हो लेकिन भीतर तुम अंधेरे बने रहते हो। जिस जानने से स्वयं को न जाना जा सके उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह ज्ञान भ्रम है, आभास है। इस जगत में या तो तुम स्वयं को जान सकते हो और या तो शेष सबको जान सकते हो, क्योंकि दोनों के आयाम अलग अलग हैं। जो स्वयं को जानता है उसे भीतर की तरफ मुड़ना पड़ता है, जो और कुछ जानना चाहता है उसे स्वयं को छोड़कर भीतर की तरफ पीट कर लेनी पड़ती है। स्वभावतः अगर मुझे तुम्हें देखना है तो मैं स्वयं को कैसे देख पाऊंगा? तुम्हें देखना है तो मेरी आंखों में तुम भर जाओगे, तुम्हारा बादल मेरी आंखों में तैरेगा। और अगर मुझे स्वयं को देखना है तो मुझे तुम्हारी तरफ से आंख बंद कर लेनी पड़ेगी। सन्यासी का यही धर्म है, जिसने औरों को देखने से आंखें बंद कर ली, जिसने और कुछ सीखने से आंखें बंद कर ली, जिसने संकल्प कर लिया कि जब तक स्वयं को नहीं जान लेता तब तक और कुछ जानने का मूल्य भी क्या है। सब कुछ जान भी लिया और मेरे भीतर अंधेरा होगा तो उस प्रकाश का क्या सार है? चारों तरफ दिवाली होगी और मेरे भीतर अंधेरा होगा तो उस दिवाली से मुझे क्या लाभ होगा? अतः स्वयं को भली भांति जान लेना ही सच्चा और वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि सारा संसार जीत भी लिया और अपने को गंवा बैठे तो इस जीत का क्या अर्थ है?
1: ज्ञान। अभी आप ये चिंतन सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं श्री राम लखन पटेल का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: तुम अधेरों की गहन परछाइयों से मत डरो, तुम अंधेरों की गहन परछाइयों से मत डरो, देख दिन कर की रवानी ये स्वयं टल जाएंगी, देख दिन कर की रवानी ये स्वयं टल जाएंगी। मानता हूँ राह दुष्कर और पथरीला सफर,

आह दुष्कर और पथरीला सफर है सघन अधियार चारों और अनजानी डगर है सघन अधियार चारों और अनजानी डगर हाथ ले दृढ़ आश की लो हाथ ले दृढ़ आश की लो दो

0: बर्फ की दीवार सी सब भ्रांतियां गल जाएंगी, बर्फ की दीवार सी सब भ्रांतियां गल जाएंगी। आंसुओं का कोश तू खोता है क्यों हल्के लिए, आंसुओं का कोश तू खोता है क्यों हल्के लिए, आंधियों का जोर बस होता है दो पल के लिए, आंधियों का जोर बस होता है दो पल के लिए। साथ चलने की अटल, साथ चलने की अटल संकल्पना भर कीजिए, साथ चलने की अटल संकल्पना भर कीजिए। झूठ अत्याचार छल की नींव तक हिल जाएंगी, झूठ अत्याचार छल की नींव तक हिल जाएंगी। बिन मरे खुद स्वर्ग का संसार मिलता है नहीं, बिन मरे खुद स्वर्ग का संसार मिलता है नहीं, यूं हथेली पर तो कोई फूल खिलता है नहीं, यूं हथेली पर तो कोई फूल खिलता है नहीं। पतझरों में राख चंदन की तरह तन पर मलो, पतझरों में राख चंदन की तरह तन पर मलो, मधुमयी ऋतु में सुमन की क्यारियां खिल जाएंगी, मधुमयी ऋतु में सुमन की क्यारियां खिल जाएंगी। आग की हस्ती में तप कर स्वर्ण निखरा है सदा, आग की हस्ती में तप कर स्वर्ण निखरा है सदा, स्वर्ण आभूषण बना अंगार बिखरा है सदा, स्वर्ण आभूषण बना अंगार बिखरा है सदा। मन में सोने सी तपन का, मन में सोने सी तपन का हौसला ले आइए, मन में सोने सी तपन का हौसला ले आइए, हर सुनहरे स्वप्न को ऊंचाइयां मिल जाएंगी, हर सुनहरे स्वप्न को ऊंचाइयां मिल जाएंगी, हर सुनहरे स्वप्न को ऊंचाइयां मिल जाएंगी। ले चुके हैं जागने के नाम खर्राटे बहुत, इसलिए ही उग गए हैं खेत में कांटे बहुत, एक तिनके की तरह जलने की जिद पर आइए, एक तिनके की तरह जलने की जिद पर आइए, कंटकों की यह कटीली घाटियां जल जाएंगी, कंटकों की यह कटीली घाटियां जल जाएंगी। तुम अंधेरों की गहन परछाइयों से मत डरो, देख दिन कर की रवानी ये स्वयं टल जाएंगी, देख दिन कर की रवानी ये स्वयं टल जाएंगी। मत कहो सारा सरोवर हो गया है पंकमय, मत कहो सारा सरोवर हो गया है पंकमय, पंक के नीचे अतुल जल राशियां अब भी तो हैं, पंक के नीचे अतुल जल राशियां अब भी तो हैं। तुम सुनहरे आचरण के बीज तो बिखराइए, तुम सुनहरे आचरण के बीज तो बिखराइए, पंक में भी पंकजों की पांतियां खिल जाएंगी, पंक में भी पंकजों की पांतियां खिल जाएंगी। तुम सुनहरे आचरण के बीज तो बिखराइए, पंक में भी पंकजों की पांतियां खिल जाएंगी, देख दिन कर की रवानी, ये स्वयं टल जाएंगी। दिन नहीं अब शेष सपनों में गंवाने के लिए, दिन नहीं अब शेष सपनों में गंवाने के लिए, पग बढ़ा पग चिन्ह में गहराई लाने के लिए, पग बढ़ा पग चिन्ह में गहराई लाने के लिए। दिन नहीं अब शेष सपनों में गंवाने के लिए, पग बढ़ा पग चिन्ह में गहराई लाने के लिए, पग बढ़ा पग चिन्ह में गहराई लाने के लिए। अब भी यदि बैठे रहे धृतराष्ट्र के वंशज बने, अब भी यदि बैठे रहे धृतराष्ट्र के वंशज बने, पीढ़ियों को अपनी ही परछाइयाँ चल जाएंगी, पीढ़ियों को अपनी ही परछाइयाँ चल जाएंगी। तुम अंधेरों की गहन परछाइयों से मत डरो, तुम अंधेरों की गहन परछाइयों से मत डरो, देख दिन कर की रवानी, ये स्वयं टल जाएंगी। देख दिन कर की रवानी, ये स्वयं टल जाएंगी। देख दिन कर की रवानी, ये स्वयं टल जाएंगी। कि हर जमा को इस जमी से प्यार होना चाहिए, हर जमा को इस जमी से प्यार होना चाहिए, अब न जिंदा देश में गद्दार होना चाहिए, अब न जिंदा देश में गद्दार होना चाहिए। खोखले निर्जीव नारे अब न माँ को चाहिए, रक्त के टीके से फिर श्रृंगार होना चाहिए, अब न कोई आँच आए इस चमन की आन पर, अब न कोई आँच आए इस चमन की आन पर, हर कली की आँख में अंगार होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र का ध्वज एक कंधे पर टिका होता नहीं, सबको माँ की अस्मिता से प्यार होना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री राम लखन पटेल का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
2: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र

0: मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस् अय्यरेण अर्जितानाम् 100 धावनाङ्कानां बलेन पंजाब किंग्स् दलेन लखनऊ सुपर जायण्ट्स् दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स् दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स् दिल्ली कैपिटल्स् दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense and investment, energy security, connectivity, education, and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good.
4: Medium wave 314.47 meter arthat 954 kilohertz par Akashvani ka ye Najibabad kendra hai. Prastut hai karyakram Swasth Charcha.
5: गर्मी का मौसम चरम पर है। सूर्यदेव शरीर को

0: कपाने लगे हैं। वहीं गर्म हवाओं ने लू का विकराल रूप धारण कर लिया है। ये वातावरण जीवाणुओं और विषाणुओं के लिए काफी अनुकूल है। इस मौसम में ये तेजी से पनपते हैं। ऐसी तेज गर्म माहौल में जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गर्मी से सुस्त पड़ रही होती है, तभी ये जीवाणु और विषाणु कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले शरीर पर अपना निशाना साधते हैं। गर्मियों की गर्म हवाओं के साथ लू लग जाना आम बात है। इस रोग की चपेट में वे लोग आसानी से आ जाते हैं जो खाली पेट, थके और दुर्बल होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है, आसानी से इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। सिर खुला रखने से गर्मी तथा धूप का प्रभाव मस्तिष्क पर शीघ्र होता है और तत्काल ही पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। गर्मी के दिनों में पसीने द्वारा निकाले गए जल की पूर्ति निरंतर होती रहनी चाहिए। यदि किन्ही कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू की चपेट में आने पर शरीर ठंडा रहता है तथा त्वचा चिपचिपी हो जाती है। रोगी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शरीर का ताप बढ़ जाता है। त्वचा रूखी सूखी दिखाई देती है। यदि किसी को लू लग जाए तो चिकित्सक के आने के पहले तात्कालिक उपचार करना चाहिए। रोगी को ठंडे, हवादार और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए तथा वस्त्रों को ढीला कर दें। बेहोशी दूर करने वाले उपचार करने के साथ ही शरीर का तापक्रम कम करने का प्रयास करना चाहिए। सिर, हाथ तथा पेट आदि को बार बार ठंडे पानी से धोते रहें। मोटे तौलिए को बर्फ के पानी में भिगोकर शरीर को पोंछते रहें। ये काम तब तक करते रहना चाहिए जब तक शरीर का तापक्रम सामान्य अवस्था में न आ जाए। वमन, दस्त, प्यास आदि की स्थिति में पुदीने का रस थोड़ी थोड़ी देर पर चम्मच से देते रहना चाहिए। कच्चे आम को पानी में उबालकर उसका पना बना लें। इसमें सेंधा नमक, भुना जीरा, पुदीना तथा मिश्री आदि मिलाकर पिलाएं। गर्मी के मौसम में स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसका सेवन करना चाहिए। ये लू की प्रसिद्ध औषधि भी है। कुदरत ने कई ऐसी चीजें इस मौसम में उपलब्ध कराई हैं, जिनको खाने पीने या लगाने से भी गर्मी में ठंडा एहसास बना रहता है। खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सब्जियों में लौकी, तरोई, टिंडा तथा परवल का सेवन लाभदायक है। इन्हें कम मिर्च मसाले में बनाएं। फलों में तरबूज, फालसा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, शहतूत, बेल आदि का सेवन करें। मट्ठे का सेवन भी पेट को ठीक रखता है। दालों में मूंग तथा मसूर ही इस मौसम में मुफीद कहे जा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी लाभ पहुंचाता है। नींबू की शिकंजी और दही की लस्सी भी फायदा पहुंचाती है। यही नहीं, प्याज खाने और इसके रस के सेवन से लू से बचाव होता है। अनारदाना, पुदीना और अंबिया की चटनी भी इस मौसम में लाभदायक होती है। जाहिर है, अगर कुदरत की इन नियामतों का सही इस्तेमाल किया जाए तो गर्मियों में भी व्यक्ति निरोग और प्रसन्नचित रह सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। देखिए किसान भाइयों, आजकल खेती केवल पारंपरिक तरीके से फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। बदलते समय के साथ किसानों को नई तकनीक, आधुनिक सोच और बाजार की मांग के अनुसार खेती करनी होगी। यदि सही योजना और नई विधियों को अपनाया जाएगा तो कम जमीन से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारी खेती योग्य जो भूमि है वो कम होती चली जा रही है और हम अपनी उस कम भूमि पर ही अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, और खेती के जो नए नए तरीके हैं उसको हमें आजमाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फसल विविधीकरण की। तो कई किसान केवल गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन लगातार एक ही फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और लाभ भी सीमित रहता है। इसलिए किसानों को दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और औषधीय पौधों की खेती की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम कह सकते हैं कि टमाटर, मिर्च, मशरूम, हल्दी और एलोवेरा जैसी फसलें कम समय में अधिक लाभ दे सकती हैं। इसके साथ ही किसान भाई अपने खेतों में अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो किसान भाई अच्छी पैदावार अपने खेतों से ले सकते हैं। बात करते हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की। तो किसान भाइयों, आजकल बाजार में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और बिना रसायन वाली फसलों को अधिक पसंद कर रहे हैं। यदि किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम करके गोबर की खाद, जीवामृत और अन्य जैविक उपाय अपनाते हैं तो उत्पादन लागत घटेगी और फसल का मूल्य भी अधिक मिलेगा।

0: आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है, क्योंकि कृषि और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसान खेती के साथ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन करते हैं तो उन्हें पूरे साल आय का एक अच्छा स्रोत मिलता रहता है। गाय और भैंस के गोबर से जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिससे खेती की लागत कम होती है। इसी तरह मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन के साथ साथ फसलों में परागण बढ़ता है और उपज भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण विषय है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, यानी कि वैल्यू एडिशन। कई बार किसान भाई अपनी उपज को सीधे बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें कम दाम मिलता है। लेकिन यदि वही किसान गेहूं का आटा, मक्का का पॉपकॉर्न, टमाटर की चटनी या फलों का जैम बनाकर बेचेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। छोटे स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। आजकल देखा जा रहा है कि सीधी मार्केटिंग भी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से किसान अपनी उपज सीधे ग्राहकों या बड़ी कंपनियों तक पहुंचा सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और किसानों को उचित मूल्य मिलता है। कई किसान सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने उत्पाद बेच देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, हमारी सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि खेती में सफलता का मूल मंत्र है नई सोच, सही जानकारी और आधुनिक तकनीक का उपयोग। यदि किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ नई विधियों को अपनाकर लागत कम करें और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करें तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और रात्रि 10 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे नीलम सक्सेना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत बात आसपास की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज प्रातः 9:50 पर, जिसमें वाचन स्वर और संकलन होगा धीरेन्द्र धारीवाल का। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लता कुंजवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत एक और अनेक। इस कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर सुनिएगा हमारे मेहमान कलाकार सुनील दत्त और साथियों को। ये रिश्ता खास है। आकाशवाणी के 90 सालों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज संध्या 5:00। आज संध्या 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आकर्षण होंगे कुछ खास है आज झलकी बूस्टर्स, साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। आज संध्या 7:32 पर सुनिएगा शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगिरमपुरी। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग रहेगा अलीना अंजुम और साद अहमद का। आज दिन में 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में आप सुनेंगे 1991 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म सौदागर की कहानी और कुछ गीत। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 12:05 पर।

0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर सवेरे के 7:18 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: काम नहीं होगा,
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।

0: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP-MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा

0: शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। आईपीएल मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

साथ साथ। सुबह की हल्की धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती खुशबू एक जादू सा जगाती है। कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो ये जिंदगी, आप जैसे अपनों की याद आ ही जाती है। जी हाँ श्रोताओं, हमें आपकी याद आई और देखो हम चले आए इस प्यारी सी जगमगाती सुनहरी सुबह में। आप सभी को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्या कुछ खास लेकर आए हैं। श्रोताओं आज है 24 मई और आज के दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया भर के 56 सदस्य देशों द्वारा मिलकर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इसे आमतौर पर मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में इस दिवस को 24 मई को मनाया जाता है, जो कि महारानी विक्टोरिया की जयंती भी है। श्रोताओं आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1916 में ब्रिटिश साम्राज्य

राज्य के दौरान एम्पायर डे के रूप में हुई थी। ये दिन महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही चुना गया था। और श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि ये दिवस यानी राष्ट्रमंडल दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत 24 मई 1916 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के अवसर पर हुई थी, जबकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का राज चल रहा था। भारत में ऐतिहासिक परंपरा और वैश्विक सहयोग विश्व शांति के लिए मनाया जाता है। आज़ादी के बाद जब भारत और अन्य उपनिवेश देश स्वतंत्र हुए, तब इस दिन का महत्व बदल दिया गया। साल 1958 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम साम्राज्य दिवस से बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। भारत में गुलामी की कड़वाहट को पीछे छोड़कर इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाना जारी रखा, ताकि वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके और विश्व में शांति, भाईचारा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिल सके। भारत द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि सदस्य देशों के साथ व्यापार, शिक्षा और विकास में साझेदारी को भी बढ़ावा मिल सके। साथ ही राष्ट्रमंडल की द कॉमनवेल्थ संस्था के अनुसार इसके सदस्य देशों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, और भारत इस युवाओं के विकास के लिए इस मंच का उपयोग करता है। भारत राष्ट्रमंडल खेलों का एक सक्रिय सदस्य भी है। इन सभी कारणों के साथ साथ यह दिन खेल और सांस्कृतिक स्तर पर भी अन्य देशों के साथ भारत को मजबूत रिश्ते को भी दर्शाया जाता है। इन्हीं कारणों के चलते भारत में राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: श्रोताओं, गीत संगीत और संदेशों के बाद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको इतिहास के उन पन्नों की ओर, जहां से पता चलता है कि क्यों है आज का दिन कुछ खास। आपको बता दें कि 24 मई सन 1994 को मीना सऊदी अरब में हज से जुड़े एक समारोह में भगदड़ मच जाने से 250 लोगों से अधिक हाजियों की जान चली गई थी। आज ही की तिथि यानी 24 मई वर्ष 2000 को दक्षिण लेबनान में 22 साल का खूनी दौर समाप्त कर इजरायली सेना वापस लौटी थी। 24 मई सन 2002 को नेपाल में नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को नेपाली कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया था। और श्रोताओ, आज ही की तिथि यानी 24 मई सन 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला लिया था। और श्रोताओ, अब आपको बताते हैं 24 मई यानी आज ही की तिथि को किन किन महान हस्तियों ने जन्म लेकर बनाया इस दिन को और भी खास। श्रोताओ, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का जन्म भी 24 मई सन 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सन 1975 से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले राजेश रोशन ने लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है। श्रोताओं, बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल की, तो इनका जन्म भी 24 मई सन 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही है। उन्होंने ये कारनामा 23 मई सन 1984 को दिन के 1:07 पर किया था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म भी 24 मई सन 1896 को लुधियाना में हुआ था। और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही की तिथि को इस संसार से अलविदा कह दिया था। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी की, जिनका निधन 24 मई सन 2000 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीत लिखे थे। प्रताप चंद्र मजूमदार, जो कि ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता भी थे, इनका निधन भी 24 मई 1905 को कलकत्ता में हुआ था। और श्रोताओं, 24 मई सन 1543 को निधन हुआ था प्रसिद्ध यूरोपीय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का। इन्हें खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है। कोपरनिकस ने ही सर्वप्रथम यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। उन्होंने यह सिद्धांत भी दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और श्रोताओं, अब बात करते हैं 24 मई यानी आज ही की तिथि को एक मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के बारे में, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 मई 2024 को पारित कर एक प्रस्ताव के माध्यम से इस विशेष दिवस की स्थापना की थी, ताकि इस विलुप्त प्राय प्रजाति और इसके प्राकृतिक पर्वतीय आवास के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। श्रोताओं, आपको बता दें कि मारखोर एक जंगली बकरे की सबसे बड़ी और राजसी प्रजाति है। ये प्रजाति अपने शानदार लंबे और सर्पिल यानी पेंचदार आकार के सींगों के लिए जानी जाती है। यह प्रजाति मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के दुर्गम पथरीले और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस बकरे की प्रजाति यानी मारखोर भारत में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान में निवास करती है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का महत्व संरक्षण को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार जैसे खतरों के कारण मारखोर की संख्या प्रभावित हुई है। ये दिवस इन समस्याओं को कम करने के लिए सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, मारखोर को वर्ष 1972 में पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये प्रमुख प्रजाति होने के नाते इसका संरक्षण अन्य पहाड़ी वन्य जीवों जैसे भूरे भालू और कस्तूरी मृग की रक्षा करने में भी मदद करता है। श्रोताओं, मारखोर ही नहीं बल्कि प्रकृति का हर पशु पक्षी जीव जंतु स्वयं में अनमोल है। हमें सभी जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये सभी जीव जंतु प्रकृति का आभूषण है।

0: बंदर भी आया, छन छन करती आई चिड़िया।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, गीत संगीत और संदेश के बाद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है जिसका नाम है विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस, जो कि हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इस गंभीर मानसिक बीमारी यानी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता फैलाना है और समाज में फैले मिथकों यानी अफवाहों को तोड़ना है। इस मानसिक बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों और उनके देखभाल करने वाले सदस्यों को इस दिवस पर सहानुभूति और समर्थन देना भी इस दिवस को मनाने का परम उद्देश्य है। श्रोताओं, आपको बता दें कि सिज़ोफ्रेनिया एक जटिल और गंभीर दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति को सोचने, समझने, भावनाएं व्यक्त करने और वास्तविकता को पहचानने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। इस बीमारी में व्यक्ति ऐसी चीजें देखता है या सुनता है जो वास्तव में होती ही नहीं। किसी के प्रति कोई भी भावनाएं उनके पास नहीं होती, वे अलग अलग रहने लगते हैं। भूलने लग जाना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना इस बीमारी के लक्षण है। श्रोताओं, इस बीमारी के बारे में समाज में अनेक मिथ्या या अफवाह या भ्रम व्याप्त है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। कुछ लोग इस बीमारी को लाइलाज मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस बीमारी में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने लगता है, जबकि श्रोताओं, ये बीमारी एक गंभीर मानसिक बीमारी तो है ही, लेकिन सही सलाह, इलाज और देखभाल होने पर इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है।

इलाज के बाद व्यक्ति एक सामान्य और स्वतंत्र जीवन भी जी सकता है। और आज का युग तो विज्ञान और तकनीकी का युग है। इस युग में तो हर बीमारी का इलाज संभव है, बस आवश्यकता है तो सही समय पर इलाज और देखभाल की, सही दवाइयाँ, मनोचिकित्सक की सलाह, थेरेपी और काउंसलिंग, और परिवार का सहयोग यदि साथ हो तो इस गंभीर मानसिक बीमारी को पूर्णतया ठीक किया जा सकता है। तो श्रोताओं, हमारा भी आपसे यही कहना है कि बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर या भयानक क्यों ना हो, जब परिवार और अपनों का साथ बना रहता है तो वो ठीक भी हो जाती है। इसलिए अपनों का साथ हमेशा बनाए रखिए। फिर देखिए, हर दिन ईद और दिवाली है, और हाँ, अब ईद का भी मुबारक पर्व आने वाला ही है, तो आप सभी को हमारी ओर से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद, ईद की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि आपको आज के चंद अखबारात की सुर्खियों से रूबरू करा दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला अखबार की। अमर उजाला अखबार लिखता है कि 10 दिन में महंगाई की तीसरी किस्त, पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और CNG 1 रुपये हुई महंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक हो चुकी है 5 रुपये की बढ़ोतरी। बूंदाबांदी से भी राहत नहीं, कल से नौतपा शुरू, भीषण लू की चेतावनी यूपी के बांदा और प्रयागराज में, पारा 46 के पार। हल्की बारिश से दिल्ली में 2.5 डिग्री गिरा पारा। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का भारत मुख्य आधार, अहम साझेदार भी, कहा रूबियो ने। IPL में श्रेयस के शतक से जीतकर पंजाब ने बचाई उम्मीद, किंग्स ने लखनऊ को उसके घर में 7 विकेट से हराया। सुपर जायंट्स हार के साथ तालिका में सबसे फिसड्डी। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल 2029 तक होंगे तैयार, नरेंद्र मोदी, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा खेलों का मुख्य केंद्र। और अब दिन में भी लाल नहीं गुलाबी रंग की गेंद से खेले जाएंगे टेस्ट मैच। बात करते हैं दैनिक जागरण अखबार की। सपा नेता आजम खां की सजा 3 साल से बढ़ाकर हुई 10 साल। भारत के साथ रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने पहुंचे रूबियो। पहली बार आए अमरीकी विदेश मंत्री, मोदी को दिया अमेरिका आने का न्योता। 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा, अगले 5 दिन रातें भी रहेंगी गर्म। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, पहले दिन 6,500 श्रद्धालुओं ने टेका गुरुद्वारा साहिब में अपना माथा। एशिया के दूसरे तेज धावक बने गुरविंदर सिंह और भारत के प्रथम तेज धावक। बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियां हैं, सभी जिलों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना, कहा योगी आदित्यनाथ ने। श्रमिकों के लिए बनेंगे सुविधा केंद्र, सेवायोजन विभाग रोजगार तंत्र में होगा विकसित। रॉयल्स को अपने अंतिम लीग मुकाबले में मुंबई को देनी होगी पटखनी, राजस्थान की निगाह प्ले ऑफ पर। कोलकाता दिल्ली के लिए जीत की उम्मीद की किरण। और ईरान पर फिर हमले की तैयारी में ट्रंप, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम संघ की बैठक, समझौता नहीं तो हमला होना तय। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं, और चलते चलते सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
6: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
7: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
5: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
6: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
5: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का

0: साल योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ता में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की

0: It did not mean agreements would be reached on key issues and accused the Americans of contradictory statements. A ceasefire in Iran was agreed on 8th of April, and since then, Washington and Tehran have engaged in talks over a long-term peace deal. In the United States, a person who opened fire near a White House security checkpoint was shot dead by Secret Service officers after they returned fire. The Secret Service said in a preliminary statement posted on X that the suspect near 17th Street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Officers responded by opening fire, injuring the suspect, who was later declared dead at a hospital. The suspect was identified as a 21-year-old man, according to a law enforcement official. A bystander was also injured in the incident. U.S. President Donald Trump was inside the White House at the time of the incident. This was the third gunfire-related security incident near the president in the past month. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the civil investiture ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 16 programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. In these episodes, you would get an insight into the work and life of Padma awardees. These episodes would be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. Stay tuned to Akashwani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh. Similar weather conditions are also likely in places over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. In Meghalaya, a vibrant musical evening was held last evening at the State Convention Hall in Shillong to mark the 90 years of Akashwani's service to the nation as a public broadcaster. Jointly organized by Akashwani Shillong and Akashwani Northeastern Services, the musical evening featured dynamic performances by leading artists and bands of Meghalaya. On to sports. Gurinder Veer Singh has clinched the gold medal in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new national record timing of 10.09 seconds. He improved his previous personal best of 10.17 seconds and comfortably surpassed the Commonwealth Games qualification mark of 10.16 seconds. Animesh Kujur secured the silver medal with a timing of 10.2 seconds. While Pranav Pramod took bronze, clocking 10.29 seconds. In the men's 400-meter event, Vishal TK won the gold medal with a new national record of 44.98 seconds, becoming the first Indian athlete to break the 45-second barrier in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. The visit of U.S. Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times. While the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday pioneer, headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega set to come into effect from 1st of July with draft rules open for feedback till 3rd week of June under the headline Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for U.S. immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweep Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में 4 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकिफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनजर रखते हुए वज़राए खारजा तरजीही शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदामात पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतालिका दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कैनेडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا

0: मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफास के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोलियों के चलने की आवाज सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ और हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच सहपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने ملک میں جاری شدید گرمی سے متعلق سرخی لگائی ہے. اگلے چند دنوں میں دہلی این سی آر سمیت ملک کے بڑے حصوں میں گرمی سے راحت کی کوئی امید نہیں. اخبار پرتاب نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان آر پی سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ سنگین مالی اور انتظامی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے پنجاب.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے. آیوشمان بھارت اسکیم جولائی سے مغربی بنگال میں شروع ہونے جا رہی ہے. اس میں سواستھ ساتھی مستفیدین کو شامل کیا جائے گا. مہاراشٹر ایس آئی ٹی نے ناسک پی سی ایس جنسی زیادتی اور مذہب کی تبدیل کے کیس میں چار ملزمان کے خلاف فرد جرم دائر کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک بات چیت ہو گئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی سمیت شمالی وسطی اور مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید گرمی رہنے کی پیش گوئی کی ہے. اور ایتھلیٹکس میں رانچی میں گریندر ویر سنگھ نے فیڈریشن کپ میں ایک نئے قومی ریکارڈ کے ساتھ مردوں کے 100 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے سدا بہار گیتوں کا کاریکرم گولڈن ہٹس. کاریکرم گولڈن ہٹس سن رہے ہمارے سبھی شوتاؤں کو روی کانت ورما کا پیار بھرا نمسکار.

एक राधा एक मीरा। अभी ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी रविंद्र जैन ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से। आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है संतोष आनंद ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जिंदगी की ने टूटी लड़ी। अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के स्वर में। फिल्म का नाम था क्रांति। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तीन देवियों से। आवाजें किशोर कुमार और साथी। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है SD बर्मन और नालंदा ने।

तीन देवियां इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों को। और श्रोताओं, अब समय हो चुका है कि आपको कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अंतिम गीत सुनवाया जाए, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है नीरज ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे सामायिक चर्चा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायु तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं वो इंसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
2: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी CHC और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के CMO अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
4: हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम है, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
2: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
5: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकले, और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
2: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की

0: ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहां एसडीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
1: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी सीएचसीज पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चल रहे हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायत राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था की।
0: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है, भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
2: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
0: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
3: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभू शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर

0: कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
1: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
0: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
3: आकाशवाणी
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं नीलम सक्सेना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला रुहेलखंडी लोकगीत नीलम सक्सेना के स्वर में।

नीलम सक्सेना के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये रुहेलखंडी लोकगीत, और श्रोताओं इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें वाचन स्वर और संकलन है धीरेन्द्र धारीवाल का।

0: श्रोताओं नमस्कार। बात आसपास की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र धारीवाल। आज फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, ये गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में तेज धूप और लू तो चलती ही है, साथ ही इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा भी बना रहता है। इस मौसम में दूषित पानी, गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए सावधानी और स्वच्छता बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में डायरिया, हैजा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और पीलिया जैसी बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस मौसम में कौन कौन से संक्रामक रोग फैलने का खतरा रहता है और इन रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस संबंध में हम मिले डॉक्टर राजीव जी से, वो बताते हैं।
1: संक्रामक रोग फैलने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि आजकल मलेरिया है, ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। टाइफाइड है, गंदा पानी पीने की वजह से फैलता है। दस्त है, डायरिया वगैरह है, ये भी गंदा पानी पीने से या किसी वजह से फैलते हैं।
0: आजकल हमारे आसपास सबसे ज्यादा कौन से संक्रामक रोग देखने को मिल रहे हैं?
1: आजकल सबसे ज्यादा संक्रामक रोग जैसे कि वायरल फीवर है
0: जी,
1: टाइफाइड है, मलेरिया, डायरिया, दस्त, पेचिस।
0: बच्चों और बुजुर्गों को इन बीमारियों से बचाने के लिए विशेष क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: बच्चों को बचाने के लिए मच्छरों से दूर रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और कॉइल जलाएं, ऐसी चीज करें, या उस पे जो आजकल क्रीम सारी है, मच्छर भगाने क्रीम लगा सकते हैं मच्छरों से बचाव के लिए। गंदे पानी से बचने के लिए आप जो है वाटर प्यूरिफायर का यूज कर सकते हैं, उस पे क्लोरीन डाल सकते हैं और पानी उबाल के पी सकते हैं।
0: सेल्फ मेडिकेशन या बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना कितना खतरनाक हो सकता है?
1: बिना डॉक्टर की सलाह के अभी कोई दवाई देनी ही नहीं चाहिए, इससे कुछ ना कुछ नुकसान होंगे जरूर।
0: हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए?
1: खान पान में बदलाव करने के हमें जैसे मौसमी फल लेने चाहिए, तो दूध का प्रयोग करना चाहिए, दही खाने चाहिए। आजकल जैसे गर्मी हो रही है तो छाछ, लस्सी, मट्ठा, ऐसी चीजें हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए, तली हुई चीजें खाने से भी बचना चाहिए।
0: तो ये जो वैक्सीनेशन होते हैं इन बीमारियों को रोकने में कितना कारगर हो सकता है?
1: वैक्सीनेशन सभी बीमारियों में 100% कारगर है, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन आती है
0: जी। श्रोताओं, किसी भी बीमारी का इलाज समय रहते समझदारी से किया जा सकता है। हमें किसी भी बीमारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर स्वास्थ्य जांच कराने के बाद ही इलाज कराएं। स्वास्थ्य जांच संबंधी जानकारी के लिए हम पहुंचे पैथोलॉजी लैब में। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम निखिल सिंह है।
0: किसी भी बीमारी के उपचार में सही डायग्नोसिस का या जांच का क्या महत्व है?
2: सबसे पहले तो हमें किसी अच्छे से डॉक्टर दिखाना चाहिए जो कि हमको ये बताए कि टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए।
0: तो संक्रामक रोगों की पहचान के लिए आमतौर पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं?
2: जैसे हाल ही में चल रहा है टाइफाइड और फिलेरिया डाउन चल रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाथों पैरों में दर्द रहता है और पूरी बॉडी में बेचैनी से रहती है, जिससे हमें ये पता चलता है फिलेरिया डाउन हो सकती है।
0: तो उसके लिए कौन से टेस्ट है?
2: जैसे CBC हुआ, टाइफाइड हुआ।
0: क्या ब्लड टेस्ट करवाने से पहले खाली पेट रहना जरूरी है या ये टेस्ट पर निर्भर करता है?
2: वो टेस्ट पर निर्भर करता है, जैसे टेस्ट होंगे उसी हिसाब से पेशेंट को रिक्वायर्ड की जाती है।
0: तो रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है और पेशेंट को रिपोर्ट पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: पहली बात है पेशेंट खुद को रिपोर्ट नहीं पढ़नी चाहिए, किसी भी डॉक्टर किसी लैब टेक्नीशियन से इस चीज का मशवरा लेना चाहिए कि रिपोर्ट कैसी आई है हमारी।
0: और रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है?
2: वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेस्ट होंगे उसी से रिपोर्ट आई, ज्यादा ज्यादा एक घंटा लगता है।
0: एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की क्या पहचान होती है?
2: अच्छी पैथोलॉजी पहचान ये होती है कि उसमें पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए और मशीनें, विशेषकर मशीनों पर ध्यान देना चाहिए, मशीनें कौन कौन सी लगी हुई होती है। जैसे कि हाल ही में CBC टेस्ट होता है, जो नॉर्मल टेस्ट होता है, उसके लिए सेल काउंटर अच्छी कंपनी होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास है 6MX XP100, जापान की मशीन है, सबसे अच्छी और ठीक भी ज्यादा है इसका।
0: तो लैब में इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए आप किस तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं?
2: साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और ग्लव्स यूज करते हैं, जैसे कोई नए पेशेंट आए हैंड सैनिटाइजर सब चीज का प्रयोग करते हैं।
0: होम कलेक्शन की सुविधा लेते वक्त मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: मरीज को देना चाहिए जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए हैं वो अच्छे से ग्लव्स पहने हुए हैं नहीं और मास्क लगाए हुए हैं नहीं, इन चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: तो आमतौर पर अब सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं
2: जी,
0: रिपोर्ट्स डिजिटल होने से डॉक्टर और मरीज को कितनी मदद मिलती है?
2: काफी मदद मिलती है, क्योंकि रिपोर्ट पहुंचने में ऑफलाइन पहुंचने में काफी टाइम लगता है, लेकिन डिजिटल की वजह से ना बहुत जल्दी रिपोर्ट पहुंच जाती है पेशेंट के पास।
0: अपना इलाज करा रहे कुछ मरीजों से भी हमने बातचीत की। क्या नाम आपका?
3: मेरा नाम मोहम्मद अयान है।
0: आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है जिसके बाद आपने डॉक्टर से संपर्क करा है?
3: जुकाम, नजला, खांसी वगैरह जो होती है, वही नॉर्मल चीजें जो आजकल चल रही है।
0: तो डॉक्टर ने आपको पहले जांच करवाने की सलाह दी है,
3: हाँ
0: इस पर आपका क्या कहना है?
3: पर यही कहना है, डॉक्टर बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जो भी देते हैं वो असली बीमारी तक पहुंचते हैं, और बिना जांच कराए अगर मेडिसिन खाएंगे तो वो इफेक्ट पड़ेगी, उसका साइड इफेक्ट होंगे।
0: क्या आपको लगता है कि बिना जांच के दवाई शुरू करना सही होता है या टेस्ट करवाना ही बेहतर है?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेस्ट करवाना ही बेहतर है, क्योंकि बिना जांच के हम किसकी दवाई खा रहे हैं मेडिकल से, उसके अलग ही साइड इफेक्ट्स होते हैं।
0: जी, टेस्ट के नाम से लोग अक्सर डरते हैं, क्या आपके मन में भी कोई डर या कोई संकोच है?
3: नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं है, असल में बस सिरिंज का रहता है आजकल, जितने भी रहते हैं सब सिरिंज से डरते हैं।
0: क्या आपने डॉक्टर से मिलने से पहले कोई घरेलू नुस्खा या मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ली थी?
3: हाँ जी, पहले लिया करता था मगर अब बंद कर दिया, उसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं असल में।
0: आप अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं कि जैसे बदलते मौसम में इम्यूनिटी हाई रहे और स्ट्रेंथ वगैरह बनी रहे?
3: हाँ जी, उनका सारा ख्याल रहता है, मगर एक टाइम पे तो इंसान बीमार हो ही जाता है।
0: आपको क्या लगता है कि ये इन्फेक्शन आपको कहाँ से लगा हुआ?
3: नॉर्मल जो मौसम बदलते हैं, बारिश में भीग जाते हैं
0: जी,
3: यही चीजें बस।
0: थैंक यू। क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम कुलदीप सिंह है।
0: कहाँ के रहने वाले हैं आप?
4: मैं जट्टी वाले से।
0: तो आप यहाँ अपने किस चीज की जांच कराने के लिए आए?
4: मैं टाइफाइड की जांच कराने के लिए आया। कुछ दिन पहले मेरे को टाइफाइड हुआ था
0: जी,
4: तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक जांच और दोबारा करा लीजिए।
0: तो आप यहाँ अपने दोबारा जांच कराने के लिए आए हैं कि आपकी जो रिकवरी हुई है वो ठीक हुई है?
4: जी सर।
0: तो जब आपको पहली बार लगा कि आपकी तबीयत खराब है, तो आपने कौन से सिम्टम्स देखे थे, ऐसा क्या महसूस हुआ था आपको?
4: देखिए, मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता था और बुखार मेरे को उतरता रहता था, चढ़ता रहता था, इसलिए फिर मैंने जांच कराई टाइफाइड की।
0: तो आज आप अपनी सेकंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पैथोलॉजी लैब में आए हैं। सही समय पर ब्लड टेस्ट कराना कितना जरूरी है, इसको आप कैसे समझते हैं?
4: देखिए सर, अगर हम सही टाइम पे ब्लड जांच कराते हैं तो जो हमारे शरीर में जो कमियां हैं वो टाइम से हमें पता लग जाएगा कि कितनी हमारे शरीर में कमियां हैं, तो उसकी जांच हमें हमारी टाइम से हमें मेडिसिन मिल जाएगी।
0: क्या रिपोर्ट आने के बाद ही आपने सही ट्रीटमेंट शुरू किया या पहले से ही कोई घरेलू नुस्खा आपने अपनाया था?
4: ट्रीटमेंट तो मेरा चल ही रहा था, मेरे को आराम हो जाता था फिर बुखार चढ़ जाता था, तो इसलिए मैंने फिर जांच कराने का सोचा। डॉक्टर साहब ने मेरे को सलाह दी कि आप टाइफाइड की जांच करा लीजिए, तो मैं फिर लैब गया, लैब जाने के बाद मैंने जांच कराई अपनी टाइफाइड की।
0: अब जब आप ठीक हो रहे हैं तो आपने अपने लाइफस्टाइल खान पान में क्या बदलाव करा?
4: टाइफाइड में हल्के से हल्का खाना चाहिए।
0: जी जी।
4: हाँ जी, जैसे कि दलिया हो गया।
0: जी, अक्सर हम लोग संक्रामक रोगों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बीमार होने के बाद आपकी क्या राय है कि सफाई और बचाव कितना महत्व रखता है?
4: देखिए, महत्वपूर्ण तो सफाई पर निर्भर करता है। अगर हम खान पीन में अपना मतलब ठीक ठाक खान पीन रखेंगे,
0: जी जी,
4: घर का खाना खाना चाहिए, यही मेरी राय है।
0: दोस्तों, इन रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा साफ सफाई की गांव में क्या व्यवस्था कराई जा रही है, इस संबंध में जानकारी देते हुए आप हैं खंड विकास अधिकारी नजीबाबाद श्री दीपक तेवतिया जी।
5: ग्राम पंचायत में जो सफाई की व्यवस्था है वो स्थानीय निकाय का ही दायित्व है, उसके लिए हमारे ग्राम पंचायतों में जो है सफाई कर्मियों की तैनाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में हमारे पास टाइड की धनराशि भी आती है, और इसके अतिरिक्त हमारे ग्राम पंचायतों में जो है RRC सेंटर बने हुए हैं, उसका जो प्रोजेक्ट वो इस तरह से है कि ग्राम पंचायतों में जो भी हमारा कूड़ा होता है या जो कि वेस्ट होता है, बेसिकली वेस्ट कुछ नहीं होता, सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को रिकवरी करने के लिए हमारे पास सेंटर्स हैं। हम लोग झाड़ी कटाई, नालियों की सफाई, तालाबों की सफाई, जो हमारे उथले हैंडपंप हैं उनकी मार्किंग, और इसके अतिरिक्त जो एंटी लार्वा स्प्रे है वो सब कराया जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जन सहभागिता से कोई भी कार्य जो होता है उसकी सस्टेनेबिलिटी होती है, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि गाँव को अपने घर की तरह ही सब लोग सफाई करें, तभी हमारे जो है गाँव साफ रह पाएंगे।
0: तो दोस्तों, यदि संक्रामक रोगों से हमें बचना है तो साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें, और हमेशा उबला या शुद्ध पानी ही पिएं और भोजन को ढककर रखें। हाथों की सफाई बेहद

0: जरूरी है। खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। घर और आसपास में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण है। तो श्रोताओं, छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम खुद को और अपने परिवार को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, स्वच्छता ही सुरक्षा है। इसी के साथ आज का बात आसपास की कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मुझे अर्थात धीरेन्द्र धारीवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें वाचन स्वर और संकलन था धीरेन्द्र धारीवाल का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर का आज का ये अंक।

0: वक्त की लहरों ने जिसे पीछे छोड़ दिया, आज उसी गुजरे कल से नाता जोड़ दिया।
1: साल 2021 की वो बातें, वो जज्बात, वो मंजर लेकर आए हैं हम यादों का एक सुहाना सफर। नमस्कार, आदाब और सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त रविकांत वर्मा।
0: और मैं हूं आपकी दोस्त शिवा शुक्ला। आकाशवाणी के इस ऐतिहासिक मंच पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय रेडियो प्रसारण ने अपनी सफलता के 90 साल पूरे कर लिए हैं, जो कि एक बेहद भावुक और गौरवशाली पल है।
0: बिल्कुल सही कहा रविकांत। 9 दशकों से ये आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के सुख दुख का साथी बना हुआ है।
1: और इसी शानदार मौके पर सुहाने सफर की ये विशेष कड़ी आपको ले चलेगी साल 2021 के फ्लैशबैक में। हम याद करेंगे उन बड़ी खबरों को जिनकी प्रमाणिक पब्लिसिटी आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक पहुंचाई थी।
0: तो श्रोताओं, अपनी रेडियो की ट्यूनिंग सेट कर लीजिए, क्योंकि यादों का कारवां अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन रविकांत, क्यों अपने श्रोताओं को आगे बढ़ने से पहले सुनवा देते हैं साल 2021 में ही रिलीज हुई फिल्म अंतिम का गीत।
1: हाँ बिल्कुल, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने और संगीत दिया है रवि ने
0: और गीतकार है शबीर अहमद।
1: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: गीत के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। शिवा, साल 2021 को जब देश दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो हर तरफ एक नई उम्मीद थी।
1: सच कहा रविकांत, मुझे आज भी याद है जब आकाशवाणी के बुलेटिन में हमारे न्यूज रीडर ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की कामयाबी की खबर पढ़ी थी। ऑल इंडिया रेडियो ने ही गांव-गांव और कस्बे-कस्बे तक दवाई भी कड़ाई भी का संदेश पहुंचाकर लोगों का डर दूर किया।
0: सिर्फ इतना ही नहीं शिवा, फरवरी 2021 में इसरो ने एक साथ 19 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर विज्ञान जगत में भारत का परचम लहरा दिया था।
1: और विज्ञान की इसी दोहरी कामयाबी और जीत के जोश को सलाम करता हुआ हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं साल 2021 में ही रिलीज फिल्म सूर्यवंशी का एक प्यारा सा गीत। गीत को आवाज दी है अमित कुमार ने, संगीत है आनंद मिलिंद का और बोल है कुलवंत सिंह के।

0: वाह शिवा, इस गाने ने तो स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया।
1: माहौल तो अभी और बदलेगा रविकांत, क्योंकि अब बात होने वाली है उस ऐतिहासिक जीत की जिसने अगस्त 2021 में पूरे देश को आंसुओं और खुशियों से सराबोर कर दिया था।
0: अरे वाह, तुम टोक्यो ओलंपिक की बात कर रही हो ना, जब हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंककर इतिहास रचा था।
1: बिल्कुल, और जब हमारी पुरुष हॉकी टीम ने पूरे 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता, तो आकाशवाणी पर चल रही लाइव कमेंट्री सुन रहे करोड़ों भारतीयों के रोंगटे खड़े हो गए थे। आकाशवाणी ने इस जीत को देश के हर कोने में एक बड़ा त्योहार बना दिया था।
0: इस ऐतिहासिक खेल भावना और तिरंगे की शान के नाम, आइए सुनते हैं साल 2021 की फिल्म 83 का ये बेहद भावुक कर देने वाला और जोशीला गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत है प्रीतम का और गीत लिखा है कौसर मुनीर ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। वैसे रविकांत, साल 2021 में सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों में भी एक पन्ना जुड़ा था।
1: अच्छा, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए शिवा, वे कौन सी बड़ी खबर थी?
0: जुलाई 2021 में यूनेस्को ने गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर घोषित किया था।
1: अरे वाह, ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है आकाशवाणी ने अपने विशेष सांस्कृतिक बुलेटिन के जरिए धोलावीरा के प्राचीन जल प्रबंधन और इतिहास की पब्लिसिटी पूरे देश में की थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत को जान सके।
0: बिल्कुल रविकांत, और साल 2021 साहित्य की दुनिया के लिए भी बेहद गरिमामयी रहा। इसी साल असमिया लेखिका नीलमणि फूकन को 56वां और कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का ऐलान हुआ था।
1: आकाशवाणी के साहित्यिक मंचों ने हमेशा से इन महान लेखकों की रचनाओं को आवाज दी है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा की गई इस पब्लिसिटी ने देश के युवाओं को अपनी मातृभाषा और साहित्य से दोबारा जोड़ा था।
0: शब्दों और संगीत के इसी खूबसूरत रिश्ते को बयां करता हुआ सुनते हैं साल 2021 की फिल्म अतरंगी का ये बेहद प्यारा नगमा। संगीतकार हैं AR रहमान और गीतकार इरशाद कामिल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अतरंगी का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था अरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल और साथियों ने। शिवा, अब हम अपने सफर के उस पड़ाव पर है जिसके बिना आकाशवाणी का कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता, यानी हमारी फिल्मी दुनिया।
1: समझ गई रविकांत, आप साल 2021 की उस फिल्म की बात कर रहे हो ना, जिसने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होकर भी थिएटर्स जैसा तहलका मचा दिया था।
0: जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत और वीरता पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसके गानों ने तो संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर किया था। आकाशवाणी के विविध भारती पर राता लंबिया गाने की फरमाइशों के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे।
1: तो क्यों ना रविकांत, इसी रिकॉर्ड में हम अपने केंद्र को भी जोड़ते हैं और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म शेरशाह का ये गीत, जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाजों में, जिसका संगीत है तनिष्क बागची का और गीत के बोल भी तनिष्क बागची के ही हैं।

0: फिल्म शेरशाह के इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सुहाना सफर में। श्रोताओं, फिल्मों और सुरों का यही अनूठा संगम तो आकाशवाणी की असली ताकत है, जिसने बीते 90 सालों से हर पीढ़ी के दिलों को आपस में बांध कर रखा है।
1: वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है दोस्तों, आज साल 2021 की ये खूबसूरत यादें एक बार फिर हमारे कानों में गूंज उठी
0: और इन यादों को पूरी प्रामाणिकता के साथ हम तक सुरक्षित पहुंचाने का जरिया बना हमारा अपना आकाशवाणी, जो पिछले 90 वर्षों से बिना रुके बिना थके देश की सबसे भरोसेमंद आवाज बना हुआ है।
1: सुहाना सफर के इस विशेष प्रसारण में आज के लिए बस

0: ना ही अब अपने दोस्त रविकांत वर्मा
1: और अपनी साथी शिवा शुक्ला को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी, क्योंकि यहाँ हर सफर सुहाना है। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे साथी
1: शिवा शुक्ला। मैं हूँ श्रोताओं आपके साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे लेकर। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम में आप हमें भेज सकते हैं अपनी फरमाइश।
0: हाँ, और फरमाइश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं, देर ना करिए, जल्दी से आप हमें मैसेज कर दीजिए कि आप कौन सा गीत आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर अपना नंबर बताया और शिवाजी, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज भी आने लगे हैं।
1: रविकांत, हमें मैसेज मिला है परी महल कासगंज से। आवाज खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय, बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। और अगला मैसेज है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत।
0: और ये शिवा, हमारे पास कुछ पत्र भी है। ये पत्र आया है मोहल्ला धर्मदास चौक बाजार नजीबाबाद से। लिखने वाले हैं रूपा वर्मा, तनु, विशाल, आराध्या, अगम्य, सुरेंद्र वर्मा, प्रभा वर्मा, स्वाति, तुषार, शिवांश और पूजा वर्मा का।
1: और ये अगली फरमाइश आई है सहारनपुर से, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग की ओर से।
0: तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है
1: ये दिल आशिकाना फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।
0: संगीत है नदीम श्रवण का और इसको गीत लिखा है समीर ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया फीडबैक चाहिए
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया फीडबैक।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और आज आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा, और मेरे साथ हैं
7: शिवा शुक्ला।
6: तो श्रोताओं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और पत्रों का सिलसिला फिर से जारी करते हैं। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरु

0: पति साहू, चौक बाजार नजीब आबाद से विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, राजेंद्र कुमार, अनिमेश कुमार और सौरभ कुमार। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, कादिर चौधरी, रिहाना चौधरी और नाजमा बी का।
1: अगला मैसेज है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का। फरमाइश करता है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, सोनी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए श्रोताओं, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म
1: हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की।
0: गीत लिखा है मनोज मुंतजिर ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है मिथुन ने।

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत फिल्म दिल परदेसी हो गया से, सुनिधि चौहान के स्वर में। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का।
8: मोहल्ला अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से हमें मैसेज किया है, लिखने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और मोहम्मद जैन।
7: इसी गीत को सुनना चाहते हैं सहारनपुर से सैयद मसरूर शेख अल्हाबख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, SK नारंग, आशा। और
8: इसी गीत को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। नगीना से अनिल विनोचा, सम्मी विनोचा और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
7: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से भी हमें फरमाइश मिली है इसी गीत के लिए, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी की ओर से। और सैयद आलम हाशमी, ये दोबारा आया है मैसेज। और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। तो आइए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म दिल परदेसी हो गया का ये गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से हम अपना नंबर बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। और चलते हैं अब कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज के स्वर में। फिल्म का नाम है मुद्दत। गीत लिखा है इंदिवर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी बप्पी लहरीनी ने। और इस गीत के लिए हमारे फरमाइश करता है
1: व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया शायना, महवेश मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: बीजना मुरादाबाद से फरमाइश भेजी है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान।
0: मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से ये हमें पत्र भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। लिखने वाले हैं वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर ने।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी बाग अंकोलसा से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय सरोज चौक, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: फरमाइश करता है अगले लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है लिखने वाले हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां।
1: और ये अगले फरमाइश करता है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन और

0: वेस्ट दिल्ली तिलक नगर से RSVT आर के शुक्ला, जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश भेजी है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने।
1: तो आइए श्रोताओं, इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मुद्दत का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी रविकांत वर्मा को अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में आगे आपके साथ बनी रहेंगी शिवा शुक्ला।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादल का ये गीत। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह और साथी। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म बादशाह से। गायक कलाकार हैं अभिजीत और अलका याग्निक, गीतकार जावेद अख्तर और समीर, और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अगली पेशकश है फिल्म सिर्फ तुमसे। गायक कलाकार हैं अमीन साबरी, फरीद साबरी, जसपिंदर नरूला और साथी।

श्रोताओं, चितपट संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुम का ये एक प्यारा सा गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म जीत से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत के बोल हैं समीर के और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनवाते हैं श्रोताओं आपको ये अगला गीत फिल्म धड़कन से। गायक कलाकार अलका याग्निक और साथी हैं, बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म मुस्कान से अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है निखिल विनय ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की स्वर में फिल्म मुस्कान का ये प्यारा सा गीत। और आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ये अंतिम पेशकश फिल्म दाग दी फायर से। अनुराधा पौडवाल और जसविंदर नरूला की आवाजों में, गीतकार समीर हैं और संगीतकार राजेश रोशन।

फिल्म दागदी फायर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं चितपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कॉपी और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लता कुंजवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। एक और अनेक कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर हमारे मेहमान कलाकार होंगे सुनील दत्त और साथी।

रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 5 बजे।

आज शाम 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के मुख्य आकर्षण होंगे कुछ खास है आज, झलकी, बूस्टर्स, साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत।

आज शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में हमारे किसान भाई सुनेंगे चर्चा फसल चक्र का महत्व, साथ ही आप सुनेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन विषय पर कीट वैज्ञानिक के नगीना डॉक्टर पिंटू कुमार से जितेंद्र कुमार की बातचीत।

आज शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे श्री सत्यवीर सिंह की कहानी सिलवटें। शाम 7:32 पर सुनिएगा शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगीरमपुरी। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग रहेगा अलीना अंजुम और साद अहमद का।

आज दिन में 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में आप सुनेंगे सन 1991 में बनी हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म सौदागर की कहानी व गीत।

हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका सुनेंगे आज दिन में 1:15 पर, जिसमें आज जानकारी के विषय रहेंगे भारतीय पर्व गंगा दशहरा, ईद उल अजहा। जानकारी क्रम में आप सुनेंगे राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई के बारे में, साथ ही लघु नाटिका व बाल गीतों का आनंद आप लेंगे श्रोताओं इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: लफ्जों में छुपे एहसास आज डिजिटल रूप में आए हैं, कुछ आपके कुछ उनके खास संदेश हम लाए हैं। थाम कर बैठिए दिल, अब यादों का सफर शुरू होता है। हर एक मैसेज में यहाँ किसी न किसी का दिल धड़कता है। नमस्कार श्रोताओं, दोपहर के 12:06 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है। आपका पत्र मिला, जो कि आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपके साथ शिवा शुक्ला, और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस चहेते शो आपका पत्र मिला में। श्रोताओं, हर बार की तरह आज भी हमारे व्हाट्सएप पर आपके संदेशों की बाढ़ आई हुई है। आपके इन सभी डिजिटल पत्रों को पढ़ने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर सवाल हर जज्बात का खूबसूरती से जवाब देने के लिए रविकांत वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी आपका स्टूडियो में।
1: धन्यवाद शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को रविकांत वर्मा का भी सादर नमस्कार। बिल्कुल शिवा, आज मैं हमारे दोस्तों के खतों के जवाब देने और उनसे दिल की बातें साझा करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
0: तो फिर देर किस बात की, चलिए घड़ी की सुइयों के साथ शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सिलसिला। हमारे व्हाट्सएप बॉक्स से निकालते हैं आज का ये पहला संदेश, जो हमें लिख भेजा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। लिखने वाले हैं पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुश दिल, हसमुखलाल जिंदल, संजीव कंचन, सुनीता जिंदल और इनके पूरा परिवार जी। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: साथ ही ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को हमारा पत्र शामिल हुआ था, जिसे सुनकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर साथ ही एक शिकायत कर रहे हैं कि गीत तुम्हारे फार्मेसी प्रोग्राम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज शामिल नहीं किए जाते। इसका कारण बताने की जरूर कोशिश करें। और लिखते हैं कि हम तो 1978 से प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के, सुबह 5:53 से लेकर रात के 11:10 तक, जैसे सूरज के साथ साथ युववाणी प्रोग्राम संदेश.com, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे हफ्ते में 2 बार कर दें, ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपकी सभी अनाउंसर बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हम आपके सभी अनाउंसर्स और रेडियो स्टेशन डायरेक्टर सभी को गुलाब के फूलों के साथ धन्यवाद करते हैं। साथ ही रविकांत जी, इन्होंने इसमें गुलाब, बहुत सारे गुलाब भी टाइप करके भेजे हैं,
1: मैसेज इन्होंने लिखा है और गुलाब से सजा रखा है। तो सबसे पहले चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा दिलखोश संगीता रानी जिंदल, आप सभी को ये पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप ने लिखा है कि पिछले रविवार को आपका पत्र शामिल हुआ और इस रविवार को भी आपका पत्र शामिल हो गया, तो आपके लिए तो ये दोगुनी खुशी हो गई है ना। तो आगे आपकी थोड़ी सी शिकायत भी है कि कृषि जगत कार्यक्रम में आपका जो मैसेज है वो शामिल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ देखिए टाइम लिमिट होती है, कुछ हो सकता है ऐसा कुछ है, क्योंकि लगातार हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं, इसके लिए हमें बहुत ही ये कामिल करना पड़ता है। अब भी देखिए हमारे स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और कोशिश करते हैं लगातार हम आपके पत्रों को पढ़ें और ऐसा ना हो कि कोई भी पत्र आपका छूट जाए।
0: बिल्कुल रविकांत जी, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमने दूसरे का लिया तो एक पीछे छिप गया, तो इस कारण से।
1: और आगे आप लिखते हैं कि युवाणी कार्यक्रम संदेश.com ये आपको बहुत अच्छा लगता है, इसे हफ्ते में 2 बार कर दीजिए। तो आपका ये सुझाव हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंच गया है, क्योंकि वो भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे। तो आगे आप लिखते हैं कि सभी अनाउंसर बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी अनाउंसर्स का प्रोग्राम सुना और सुबह से लेकर आप रात तक कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला पत्र शिवा शुक्ला जी कहाँ से आया है?
0: अगला पत्र हमें भेजा है गांव जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी जी ने। साथ ही इन्होंने और भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखे हैं, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: क्या लिखते हैं ये?
0: ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे रविकांत वर्मा जी और शिवा शुक्ला जी को हमारा प्यार भरा आदाब, साथ ही आपको और सभी श्रोताओं को आने वाली ईद की दिली मुबारकबाद। और हम भी इन्हें मुबारकबाद देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: आपको भी सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद।
0: ये लिख रहे हैं, आज हम सुबह से ही कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी कार्यक्रम बहुत सुपर हिट जा रहे हैं। रविकांत वर्मा जी ने गीतों का जो चयन किया है वो बेमिसाल है, और अब रविकांत वर्मा जी और शिवा शुक्ला जी इस कार्यक्रम में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वन में लक्ष्मण भैया और सीता जी भी
1: वार्तालाप करें। बहुत ही प्यारी उपमाएं ये देते हैं हमारे नियमित श्रोता हैं। आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे लिखते हैं कि बीते शुक्रवार को जागरूक श्रोता कार्यक्रम जो युवा जोड़ी नमित राज और विवेक प्रताप जी ने प्रस्तुत किया, हमें बहुत पसंद आया। उनका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अलग है। 20 मई को याद है जरा जरा कार्यक्रम में हमने नौटियाल जी को सुना, उनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और पुरानी यादें ताजा हो गई। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी एक गुजारिश है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम को भी लाइव कर दिया जाए ताकि हम आपसे रूबरू और आमने सामने बात कर सकें। कृपया हमारे पत्र को पूरा पढ़ें। पत्र पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखिए शिवा शुक्ला जी, इनका पत्र पूरा तो पढ़ा गया।

0: और शामिल भी हो गया और इनकी खुशी भी बढ़ गई होगी। अब लिखते हैं ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी जी, और ये हमारे नियमित श्रोता है। जैसे कि ये लिखते हैं कि कार्यक्रम इन्हें सुबह से ही सुन रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईद की मुबारकबाद भी आपने दी है, तो आप सभी को भी हमारी ओर से एक बार फिर से आने वाली ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे लिखते हैं सुबह से कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत इन्हें पसंद आ रहे हैं। देखिए शिवा शुक्ला जी, हम यही कोशिश करते हैं, चाहे इसमें हम हो या हमारे सभी अनाउंसर साथी, सभी कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम अच्छा हो ताकि हमारे श्रोताओं को पसंद आए। आगे इन्होंने बहुत अच्छी उपमा दी है कि शिवा शुक्ला जी और रविकांत वर्मा जी, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण भैया और सीता जी वार्तालाप कर रहे हैं। इतने प्यारे उपमा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीते शुक्रवार नमित राज जी और विवेक प्रताप जी का कार्यक्रम, जो कि जागरूक श्रोता था, इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपकी बात है उन तक पहुंच गई होगी। 20 मई को याद है जरा जरा कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि नौटियाल जी को सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए राशिद जी, नौटियाल जी हमारे प्रिय अनाउंसर हैं और उनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, वास्तव में उनकी यादें ताज़ा हो गई। आज भी हम उनकी कमी महसूस करते हैं आपने आकाशवाणी नजीबाबाद में, और इतना सुंदर पत्र लिखा। इस पत्र में आपने बहुत सारी बातों को शामिल किया, अनाउंसर्स को शामिल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पत्र ये कहाँ से आया है?
1: अगला पत्र है गांव चमरुआ, जिला संभल, उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं ब्रजेश मिस्त्री, शीशपाल मिस्त्री, राजू भाई, अमन भाई, सभी लोग मिलकर पत्र भेज रहे हैं। ये लिखते हैं कि काम कर रहे हैं, चेन्नई का धूप में खड़े हुए हैं, लेकिन आकाशवाणी को की बातों को नहीं भूलते, लगातार सुनते हैं। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हमें आकाशवाणी से सुनने को मिलते हैं, जो कि सबसे प्यारा, सबसे भरोसेमंद हमारा साथी है। साथ ही ये लिखते हैं कि हमारा दोस्त आकाश भाई न्या ये बात है, हर मोड़ पर हमें संभालना, हर सुख दुख में हमारे साथी बना। आकाशवाणी के लिए लिखते हैं शायद।
0: हाँ बिल्कुल, आकाशवाणी के लिए लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल
1: किया है। और साथ ही लिखते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी
0: तरक्की करता रहे,
1: तरक्की करता रहे। और एक से एक क्या लिखते हैं ये अगले पत्र में,
0: अगले पत्र
1: शिकायतें,
0: हाँ शिकायत की कोई गुंजाइश होगी तो अगले पत्र में जरूर बताएंगे,
1: हमें अवगत कराएंगे। आपका शुभचिंतक ब्रजेश सिंह, 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी को। हमारा नाम बहुत लोगों ने तो रेडियो दीवाना ही रख दिया है, हमें बुरा नहीं लगता कि हम रेडियो दीवाने बचपन से हैं, आज भी हैं और रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही ये लिखते हैं कि सभी श्रोताओं उनसे कहना है कि नए लोग भी जुड़िए, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे, और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हम नजीबाबाद से प्राप्त करते हैं जो भी हमें कोई घर परिवार में नहीं बताता। कभी कभी हम जिंदगी से निराश भी हुए हैं, लेकिन बाद में हमें संभालना बहुत हमें संभाला भी है आकाशवाणी पंडित जी,
0: बिल्कुल आकाश पंडित जी जोड़कर
1: की पंडित जी बनकर आकाशवाणी
0: संभाला है।
1: सारी टीम को ये धन्यवाद देना चाहते हैं, नजीबाबाद की टीम को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले तो इतना लंबा पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें पत्र मिला है ग्राम चमरौया, जिला संभल, उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं ब्रजेश मिस्त्री, शीशपाल मिस्त्री, राजू भाई।

0: ने भेजी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आपको कार्यक्रम सुनने के लिए मिलते रहेंगे। और अगला पत्र ये हमें कहाँ से मिला है शिवा?
1: पत्र है जिला रामपुर गांव खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत जी, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश की तरफ से।
0: क्या लिखते हैं ये?
1: ये लिख रहे हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स, हेलो नजीबाबाद, व्हाट्सएप पर आधारित प्रोग्राम, फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम और कोई भी अन्य प्रोग्राम होते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। आपके प्रोग्राम में खंडिया रामपुर में होता हूँ तो रेडियो सेट पर सुनता हूँ, कहीं घर से कहीं बाहर होता हूँ तो मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनता हूँ।
0: बहुत ही प्यारा सा पत्र आपने लिखा है, जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत जी। आप लिखते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के सारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं। जी हाँ, हम कार्यक्रम में इतनी मेहनत करते हैं और इसीलिए ही करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को हमारे सारे प्रोग्राम अच्छे लगे। और जो भी आपको शिकायत हो, जैसे कि तारीफ के साथ साथ हम अपने सभी श्रोताओं से ये भी अनुरोध करेंगे कि आपको कार्यक्रम में क्या क्या नए बदलाव चाहिए, क्या आपको शिकायतें हैं वो भी लिखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, क्या कमी आपको उसमें लग रही है वो भी लिखकर हमें ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप पर आधारित प्रोग्राम, जैसे कि इन्होंने लिखा है गीत तुम्हारे हैं, आपकी फरमाइश है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, हेलो फ्रेंड और हेलो नजीबाबाद की तारीफ करते हैं। हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम हमारा ऐसा है कि वो तो कोई व्यक्ति होगा जिसे अच्छा ना लगता हो, क्योंकि अच्छा उसे ही नहीं लगेगा जिनका फ़ोन नहीं लगेगा, है ना। कभी कभी शिकायत आती है कि हमें हमारा फ़ोन नहीं लगता है, इस कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ये अपना कार्यक्रम है, आप कोशिश करते रहिए, आज नहीं लगा है तो आपका कॉल अगली बार ज़रूर लगेगा, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी टीम का करना चाहते हैं तो इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए। अमरजीत जी, शिवम जी, शुक्लाल जी, अमरपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी की ओर से। इन्होंने लिखा है कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा तरफ से प्यार भरा आदाब, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ को और श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं। 9 मई को फिल्मी संडे में हिना फिल्म की कहानी और गीत सुनाए, बहुत अच्छे लगे।
0: बहुत प्यारा सा पत्र है ये हमारे पास, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से। लिखने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी जी। तो आपने इतना सुंदर सा पत्र लिखा और जिस तरह से आपने प्यार भरा आदाब लिखा है, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और 90 वर्ष पूरे होने के लिए आप जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 मई का फिल्मी संडे आपको बहुत अच्छा लगा, जिसमें हिना फिल्म की कहानी और गीत सुनवाए गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम है, आप इसी तरह कार्यक्रमों की सराहना करते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र भेजा है हमें कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय की ओर से। साथ ही कुछ नाम और इन्होंने शामिल किए हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: क्या लिखते हैं ये?
1: ये लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को गुड आफ्टरनून। आपसे एक शिकायत है कि आप हम लोगों के पत्र एवं ईमेल गीत आपके शामिल नहीं करते, क्या आप हम लोगों से नाराज हैं? कृपया आप हम लोगों की शिकायत पर ध्यान दें।
0: देखिए, जैसा कि आपने सबसे पहले ही अपनी शिकायत हमारे सामने रख दी है कि आपके पत्र या ईमेल शामिल नहीं होते, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे जैसे मैसेजेस के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें लगातार 300-400 मैसेज लगातार, जैसे कि बाढ़ आ गई हो, जैसे अभी शिवा जी ने बताया कि आपके इसी तरह आज भी हम सोच रहे हैं कि लगातार आपके पत्र आ रहे हैं, आपके पत्र मिला के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपके पत्र हम शामिल भी करें, तो ये आपकी शिकायत कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी, और आज तो दूर भी हो गई होगी, है ना। तो आपने लिखा है कि आपसे नाराज़ हैं क्या? ऐसा नहीं है, हम अपने श्रोताओं से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते हैं। इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय।

0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये
1: अगला
0: अगला पत्र हमें कहाँ से मिला है?
1: ये अगला पत्र आया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हीना कौसर की ओर से ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हमें 16 मई का गीत तुम्हारे जो नमित राज जी और फरीना जी ने पेश किया बहुत पसंद आया। जिंदगी लाइव जो फरीना जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा 15 मई को जागरूक श्रोता तो धर्मेंद्र जी और मनोज वर्मा जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। हेलो नजीबाबाद और रात के हम सफ़र जो चरणजीत सिंह जी ने पेश किया पसंद आया। 14 मई को गीत तुम्हारे जो ताहिर जी और महवश जी ने पेश किया पसंद आया। आपकी फरमाइश ज्योति जी, ज्योति गौड़ जी ने पेश किया अच्छा लगा। 13 मई को गीत तुम्हारे राजवीर जी और नमित राज जी ने पेश किया, वो उसकी भी उन्होंने तारीफ लिखी है। 12 मई को गीत तुम्हारे जो नेहा शर्मा जी और चरणजीत सिंह जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। 11 मई को आपकी फरमाइश ज्वलका जी ने पेश की, आपका पत्र मिला में शोभित शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं? वादा किया था कि आपका पत्र मिला में हर हफ्ते आएंगे, उनके बिना इस प्रोग्राम में मज़ा नहीं आता। एक बात ये इन्होंने शिकायत में लिखी है और जो कह रहे हैं कि
0: जो सत्य है वही लिख रहा हूँ।
1: धन्यवाद।
0: वाकई में हम भी आपके सत्य की जो है कामना करते हैं। ये पत्र हमें लिखा है मोहम्मद वकार फरीदी जी ने। तो सबसे पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपने डेट वाइज 16, 17 और बहुत सारे तारीख का, बहुत सारे अनाउंसर का हमारे तारीफ की है, जिनमें परीना जी है और मनोज वर्मा जी है, चरणजीत जी है, ताहिर जी है, विवेक जी है। 12 मई का गीत तुम्हारे जो नेहा शर्मा जी ने और चरणजीत जी ने मिलकर पेश किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 11 मई का आपकी फरमाइश जो अलका सिंह जी ने पेश किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। आपके पत्र मिला में आगे इन्होंने लिखा है कि शोभित शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं, वादा किया था कि ये आपके पत्र मिला में आएंगे। तो देखिए, हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, कुछ व्यस्तता ऐसी आ जाती है कि कार्यक्रम में आना संभव नहीं हो पाता है, तो उनकी कमी हमें भी महसूस होती है। लेकिन आप नाराज़ मत होइएगा, जब भी उन्हें समय मिलेगा और कोशिश करेंगे कार्यक्रम में शामिल होने की। इतना सुंदर पत्र लिखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकार जी।
1: अब अगला पत्र है मुरादाबाद से, शबनम, सैफी, अयूब, ईरम, शवाना, तौफीक, असलम और बेबी अजरा लिखते हैं। ये लिख रहे हैं कि निधि जी और सचिन जी को हमारा सलाम।
0: ये लगता है इनके पुराना मैसेज इन्होंने भेज दिया है। कोई बात नहीं, इनका पत्र शामिल हो गया है और इन्होंने, ये भी पुराना ही पत्र है इनका, इन्होंने दोबारा ही भेज दिया है, कोई बात नहीं। ये अगला पत्र हमें कहाँ से मिला है?
1: अगला पत्र है मुरादाबाद से, गांव सोनपुर से। ये लिखते हैं, प्रस्तुतकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपके सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक शिकायत है आपसे कि हेलो फरमाइश का समय जरूर बढ़ाएं। और हेलो फरमाइश कौन से दिन आ रहा है? हेलो फ्रेंड्स कौन से दिन आ रहा है, इसका समय बताएं, जिससे कि अन्य साथियों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले नंबर भी जरूर बताइए, जिससे कि हम नए श्रोता अपना फोन लगाने में उन्हें समस्या ना हो। हमारे इस पत्र का आप जवाब दें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, जैसे कि आपने लिखा है कि गाजियाबाद से हमें ये पत्र मिला है, सोनपुर ये लिखने वाले हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद, गाजियाबाद लिख दिया है इन्होंने। लिखने चाहते हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत लिखने वाले हैं ग्राम सोनपुर, जिला मुरादाबाद से ये पत्र लिखकर भेज रहे हैं और नियमित हमारे सभी कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। ये आगे लिखते हैं कि आपकी शिकायत है कि आपका जो हेलो फरमाइश का कार्यक्रम जो है, इनमें आपकी शिकायत है कि हेलो फरमाइश कौन से, इनका फ़ोन नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमारा एक कार्यक्रम आता है हेलो नजीबाबाद, वो आता है शुक्रवार को 9:30 बजे रात्रि को, है ना। इसके लिए, और आपने आगे लिखा है कि हेलो फरमाइश का नंबर आपको बता दिया जाए, तो हम आपको नंबर बताते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप मैसेज भी है जिस पे आपने हमें मैसेज भेजा है। तो इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवाजी, जैसे कि हम देखते हैं कि कार्यक्रम का समापन की जो समय भी आ गया है, ये अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। किनका है ये?

0: ये अगला है नगीना से अनिल विनोचा जी का मैसेज।
1: क्या लिखते हैं ये?
0: ये लिखते हैं, सबसे पहले तो ये स्वागत ही नमस्कार करते हैं,
1: हाँ
0: और गुस्सा की वही आप प्रेजेंटर का लेखा झोंका, क्या लिखते हैं इस
1: सेंड करना इनके, इन्होंने इंग्लिश यूज़ करते हैं,
0: हाँ
1: इंग्लिश
0: तो
1: और
0: थोड़ा
1: हिंदी का थोड़ा जुड़ाव है ये। लिखते
0: जी
1: हैं, साहिबा शिवा शुक्ला और हजूरे आला रविकांत वर्मा जी को प्यार भरा सादर नमस्कार।
0: और साथ ही ये लिखते
1: रवि जी,
0: हैं
1: सुबह से सारे प्रोग्राम बहुत चेंज कर रहे हैं और सुहाना सफर में शिवाजी और
0: जिन्हें जिम्मे इन्हें लिखते हैं कि सुहाना सफर से शिवाजी ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। चित्रपट प्रोग्राम तो सुपर पेश किया है, बीता कल जिंदगी लाइफ पर अनुपम जी ने किया।
1: इन्हें बहुत अच्छा लगा।
0: और ये क्या लिखते हैं कि पशु और इंसानों पर किया, अच्छा उनका
1: हाँ
0: विषय था
1: विषय
0: तो
1: होगा,
0: जो
1: हाँ
0: टॉपिक
1: दोस्त।
0: छोटा था लेकिन जैसा उन्होंने बना दिया अच्छा लगा। शेर नशिस्त अच्छा लगा इन्हें, दिल ने फिर याद किया, दोस्ती पर था रात के हम सफर,
1: बचपन
0: बचपन
1: की
0: की
1: यादों
0: यादों का
1: पर
0: बहुत अच्छा लगा, और चरणजीत सिंह जी का तो अंदाज
1: अंदाज़े बयां
0: बयां सबसे
1: सबसे ही
0: अलग
1: अलग
0: है,
1: है।
0: जो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी ऊर्जा से प्रोग्राम करते हैं, सच उनका ये समर्पण प्रोग्राम को बहुत अच्छा
1: बना
0: बना
1: देता
0: देता है,
1: है।
0: और सभी सॉन्ग बेस प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: देखिए अनिल विनोचा जी, नगीना से आपने पत्र लिखा और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, 11 बजे का चित्रपट संगीत आपको बहुत अच्छा लगा, सुबह से जो कार्यक्रम आपने सुने वो उनकी भी आपने तारीफ की है, और साथ ही चरणजीत का अंदाज़ आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अनाउंसर्स का नाम भी आपने लिखा है। और कार्यक्रम में आगे आप लिखते हैं कि आपको रात के हम सफ़र कार्यक्रम बचपन की याद दिलाता है, अंदाज़े बयां अच्छा लगा आपको चरणजीत का, ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अनाउंसर्स आपका ये पत्र भी सुन रहे होंगे और आपकी ये जो तारीफ़ है, शुभकामनाएं हैं, उन तक पहुंच गई हैं। तो इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला पत्र हमारे पास आया है
0: अगला पत्र आया है
1: ग्राम,
0: गांव ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, राघविंद्र अरविंद रगिया, रागनी रिया रेनू, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव का। ये लिखते हैं, आपके यहाँ से सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक सुनने को मिलते हैं, हम आपके केंद्र के बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोता हैं। आपके यहाँ से रात के हम सफर गीत, तुम्हारे सूरज के साथ साथ, युवाणी कार्यक्रम, बूझो तो जाने, इसमें श्रोता भाइयों से पूछते हैं सवाल और हम लोग जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 20 तारीख को धर्मेंद्र जी ने कार्यक्रम पेश किया आकाशवाणी 90 साल बेमिसाल, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा सुनकर, मेरी ओर से उनको बधाई और मीठी सी शिकायत जरूर है कि एक दो कार्यक्रम आपका पत्र मिला में हमें शामिल नहीं किया जाता, आज काफी अंतराल के बाद पत्र भेज रहा हूँ, जरूर शामिल करना।
1: हाँ बिल्कुल। देखिए काफ़ी अंतराल के बाद आपने कार्यक्रम में पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल जी, आपका जो कार्यक्रम है ये, आपका पत्र मिला, इसमें आपका पत्र शामिल हो गया है, ये भी शिकायत आपकी दूर हो गई है। आपने हमें 90 साल के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमें आज का ये सफ़र यहीं समेटना होगा।
0: बिल्कुल सही कहा रविकांत जी, जिन दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज आज हम नहीं ले पाए हैं, छूट गए हैं, उनसे हम माफी चाहते हैं, उन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अगले अंक में जरूर शामिल करेंगे। और आज हमसे जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का हम करते हैं
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: फिल्मी संडे,
1: फिल्मी संडे,
0: फिल्मी संडे,
1: फिल्मी संडे।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्मी संडे में मैं हूं आपके साथ शिवा शुक्ला। श्रोताओं, आज फिल्मी संडे के इस सफर में हम बात करेंगे साल 1991 में आई सुपरहिट फिल्म सौदागर के बारे में। श्रोताओं, फिल्म के निर्देशक थे सुभाष घई और मुख्य कलाकार थे बॉलीवुड के दो दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार। श्रोताओं, ये जोड़ी 1959 की फिल्म पैगाम के करीब 32 साल बाद एक साथ पर्दे पर नजर आई थी। इस फिल्म से मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। साथ ही श्रोताओं, फिल्म की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा हाथ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के गीतों ने उस समय युवाओं के बीच बेहद लोकप्रियता लूटी। फिल्म ने पूरे भारत में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी और ये 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सुभाष घई को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था। आइए श्रोताओं, बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस कहानी में जान फूंक दी। अनुपम खेर मंदारी फकीर के रोल में है, जैकी श्रॉफ विशाल के रोल में, मुकेश खन्ना गगन के रोल में, गुलशन ग्रोवर बलीराम के रोल में, अमरीश पुरी बने हैं चुनिया बाबू, दिलीप कुमार वीर सिंह दादा के रोल में है, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रोल में है, विवेक मुश्रान बने हैं वासु, मनीषा कोइराला राधा के रोल में है और दीप्ति नवल आरती के रोल में है। श्रोताओं, फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक चित्रकार मंधारी घोड़े पर सवार सनातनपुर में भटक रहा है और जो याद कर रहा है अपने दोस्तों वीरू और राजू को, जो इतने पक्के दोस्त थे कि राजू के पैर में एक बार चोट लगने पर वीरू ने ये प्रण ले लिया था कि वो भी अपने पैर में पट्टी बांध कर रहेगा। बड़े होने पर राजू की बहन का रिश्ता वीरू से हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन उसे चाहती थी। लेकिन इसी बीच वीरू यानी वीर सिंह को किसी लड़की की शादी में जाना होता है जहां पर दहेज के कारण शादी टूट रही होती है, तो उसे मजबूरन उस लड़की से शादी करनी पड़ती है। ये सुनकर राजू की बहन जहर खा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सबको देखकर राजू वीरू से बहुत ज्यादा नाराज है और उनकी दुश्मनी हो जाती है। इस बात को 25 साल बीत चुके हैं। राजू विदेश में जाकर अपना बिजनेस कर रहा है और उसके बेटे सनातनपुर में पाली नगर बसाने की सोच रहे हैं। वीर सिंह गांव का मुखिया बन चुका था, उसके भी दो बेटे थे जो फलों और सब्जियों के सौदागर बन चुके थे। राजेश्वर के आदमी चुनिया और बलीराम धोखे से वीर सिंह के बड़े बेटे विशाल को मार देते हैं और राजेश्वर को भी एक कलेक्टर के मर्डर केस में फंसा देते हैं, तो उसे 14 साल की कैद हो जाती है और ये सब करवाने का इल्जाम वीर सिंह पर लगाते हैं, जिसे सुनकर राजेश्वर सिंह कहता है, सनातनपुर और पालीपुर के बीच बह रही नदी को सीमा बना दिया गया और दोनों ओर के संरक्षक तैनात कर दिए गए। कई साल बीत गए हैं, फिल्म अब वर्तमान में आती है। हवेली में राजेश्वर की पोती गंजा की बेटी राधा दिल्ली से कॉलेज में पढ़कर पहली बार छुट्टियां काटने आई है, लेकिन उसका मन नहीं लगता तो उसका भाई कहता है कि मैं सुबह घुड़सवारी के लिए जाऊंगा, तू भी चलना। दूसरी तरफ वीर सिंह का पोता वासुदेव भी कई साल बाद जन्माष्टमी के मौके पर आचार्य जी के यहाँ से पढ़ाई करके लौटा है। वासुदेव और राधा की मुलाकात होती है। राधा गलती से सनातनपुर की सीमा में आ जाती है। वासु उसे उसकी सीमा तक छोड़कर आता है और अपना परिचय देता है कि वो दुश्मनों का लड़का है। वासु का चाचा उसे सनातनपुर सुरक्षा दल में रखता है। अगले दिन वे सैनिकों के वेश में ठाकुरगढ़ जाते हैं, जहां वासु को गोली लग जाती है। तब राधा ही उसकी पट्टी करती है और अपनी सीमा से बाहर निकालती है और हंस कर कहती है,
3: राधा नाम है मेरा, दुश्मनों की लड़की हूँ।
2: दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है और वे एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं।

0: ठाकुर राजेश्वर जेल से लौटता है। राधा अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ चित्रकार मंदहारी दोनों दोस्त राजू और वीरू की तस्वीर लेकर जाता है और दिखाकर दोस्ती की याद दिलाता है, लेकिन राजेश्वर तलवार से उस चित्र के दो हिस्से कर देता है। ये बात मंदहारी जाकर वीरू को बताता है। इसी बीच राजेश्वर हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा है और रास्ते में इंजन खराब हो जाने के कारण अपने दुश्मनों के बीच सनातनपुर में उसे उतरना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात वीरू से होती है।
1: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तुमने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड, वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर, मुझे तो आसमानों पे उड़ता फिरे थे ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए।
2: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
0: वीरू अपने आदमियों से इशारा करके राजू पर वार करने से रोक देता है और उसे वहां से जाने देता है। तो राजेश्वर कहता है,
2: अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी।
0: राधा वासु से कहती है कि उसका हवेली से निकलना बंद हो गया, अब वो कैसे मिलेंगे। वासु बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है। तीन रंग के गुब्बारे दिखाकर कहता है कि अगर तुमने लाल रंग का उड़ाया तो इसका मतलब होगा ठहरो, खतरा है। पीले रंग का उड़ाया तो मतलब तुम्हें मेरी याद आ रही है, और अगर हरे रंग का गुब्बारा उड़ाया तो इसका मतलब होगा कि आ जाओ और मैं पंछी बनकर आ जाऊंगा तुम्हारी हवेली में। चैलेंज करता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। राधा डर कर कहती है कि मुझे कोई चैलेंज नहीं करना जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो।

राधा का भाई कुणाल सनातनपुर के एक गरीब की बेटी अमला से छिपकर शादी कर लेता है। वो उसके बच्चे को जन्म देती है और इसकी खबर भिजवाती है, तो कुणाल डरकर वहां से चला जाता है। जब ये बात वीर सिंह और गांव वालों को पता चलती है तो सभी राजेश्वर और उसके बेटों को घेर कर रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ अमला कुणाल से मिलने जाती है तो रास्ते में चुनिया बाबू, जो कि कुणाल का मामा है, धोखे से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, फिर उसकी हत्या कर देता है। राजेश्वर और उसके बेटे कुणाल के बच्चे को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वीर सिंह कसम खाता है कि ये बच्चा हमारे घर पलेगा और बड़ा होकर अपना हक मांगेगा, और तब तक वो पालीपुर में किसी के घर शहनाई तक नहीं बजने देगा। ये बातें सुनकर दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। कलेक्टर बीच में आ जाता है, दोनों पक्षों में समझौता कराता है और बोलता है कि तुम्हारे हथियारों का लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। राधा और उसके भाई ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। राधा अपने भाई कुणाल को वासु से प्रेम के बारे में बताती है तो वो कहता है कि मैं तो कायर निकला, तू अपना फैसला कर और अपना प्यार पा ले। वो ट्रेन से कूदकर वासु के साथ सीधा मंधारी काका के पास पहुंचती है। मंधारी उन्हें वापस अपने घर लौटने की सलाह देता है तो वो आत्महत्या करने के लिए कहने लगते हैं। तब मंधारी एक उपाय सुझाता है जिसे सुनकर राधा तो डर जाती है और कहती है कि इस उपाय से तो भाई हमारी हत्या भी हो सकती है, लेकिन वासु को ये सब स्वीकार है। वासु का चाचा गगन उसे ले जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ भाग गए थे। वासु कहता है कि उसे हथियार नहीं चलाने, तो उसके दादू वीर सिंह उसे वापस आचार्य के यहाँ मंधारी के साथ भेजने को कहते हैं। मंधारी राधा को एक अनाथ लड़की बनाकर वीर सिंह के घर लाता है और कहता है कि मैं तो वासु के साथ जा रहा हूँ, ये अकेली लड़की है, इसे अपने घर में 2 महीने के लिए नौकरानी बनाकर रख लीजिए। वासु भी एक अनाथ लड़का बनके पालीपुर में चला जाता है। वहाँ राजा महेंद्र सिंह के बेटे को तेंदुए के वार से बचाकर राजेश्वर सिंह का दिल जीत लेता है और उनके घर में रहने लगता है। वहाँ साफ सफाई का काम उसे मिल जाता है। बातों बातों में वीर सिंह और राजेश्वर सिंह की दोस्ती का वो जिक्र करता है, लेकिन राजेश्वर सिंह उसे मना कर देता है कि वो आज दोस्त नहीं है, आज वे पक्के दुश्मन हैं, फिर कभी इस बारे में बात नहीं करना। राधा वीर सिंह के घर में रह रही है, लेकिन उसे वासु की याद सताती है। वहां पर पल रहे उसके भाई कुणाल के

बच्चे का भी वो ख्याल रखती है। वहीं पर एक नौकर है जो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, तो राधा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे वासु की याद सताती है।

0: वासु की माँ आरती राधा और वासु को छिपकर मिलते हुए देख लेती है तो खुश होती है और कहती है कि ये मेरी बचपन की सहेली की बेटी है और अब इस घर में नौकरानी नहीं रानी बनकर रहेगी। वीर सिंह को भी राधा से लगाव हो जाता है। राधा वीर सिंह से और वासु राजेश्वर सिंह से उनकी दोस्ती का जिक्र करते रहते हैं जब भी उन्हें समय मिलता है और दोनों ही इमली का बूटा गीत गुनगुनाते हैं तो वीर सिंह और राजेश्वर सिंह उन्हें रोक देते हैं क्योंकि इस गीत से उन्हें अपनी दोस्ती की याद आती है।
1: इतनी मोहब्बत थी हमें उससे, हम उसकी बैलगाड़ी को धक्का दिया करते थे, धक्का धक्का देते देते टांग तुड़वा ली थी हमने उस दिन।
2: जब उसकी टांग टूट गई थी ना तो हमने भी अपनी टांग बदलवा ली और हमने ले लिया था। 7 दिन तक एक ही टांग पर टिक टिक खड़ा रहा है।
3: अच्छा,
1: अरे वो दोस्ती क्या समझेगा, हम विदेश जाकर भी उसे नहीं भूले।
2: राजू से राजेश्वर सिंह हो गया और ऐसा भी बदला के बंदूका ही तान ले।
1: बड़ा भयानक धोखा दिया उसने हमें, हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली।
2: बदले में उन्होंने कैसा घाव दिया मुझे, मेरे चौहान बेटे विशाल का खून करा दिया।
1: विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम और उसने हमें कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल करवा दी। जेल
2: तो जेल का मैंने कराई थी, किसने बिछाया था वो था
0: वीर सिंह राधा के साथ मंधारी की कुटिया में जाता है। वहाँ राजेश्वर का चित्र देखकर कहता है कि किस घमंडी का चित्र लगा रखा है। तो मंधारी कहता है कि तेरे यार का ही तो है, तेरे दोस्त का ही तो है। वीर सिंह गुस्से में कहता है था वो मेरा दोस्त। तो मंधारी कहता है तेरे गुस्से में मैंने मोहब्बत की झलक नजर आ रही है दादावीर। दादावीर नदी के एक किनारे पर जाकर खूब जोर से राजेश्वर को पुकारता है कि देख तेरा दुश्मन खड़ा है और पुरानी बातें दोहराता है। राजेश्वर चुपचाप सब कुछ सुनता है और हवा में गोली चलाता है। तो दादावीर कहता है चलानी है तो मेरी छाती पर गोली चलाओ। दूसरी ओर चुनिया बाबू ने पालीपुर का सौदा 2 करोड़ में दूसरे मुल्क के आदमी माइकल थापा से कर दिया है, जो कि कागजों पर राजेश्वर बाबू के दस्तखत मांग रहा है। चुनिया राजेश्वर से राधा का रिश्ता अपने बेटे मोंटी के लिए मांगता है जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। ये सुनकर राजेश्वर चुनिया को जोर का थप्पड़ लगाता है। राधा का भाई कुणाल चुनिया बाबू के पास आता है और कहता है कि वो बच्चा उसी का है जो कि वीर सिंह के यहाँ पल रहा है और अपने बड़े पापा यानी राजेश्वर से उसे बचाने की गुहार लगाता है। कुणाल राधा के पास पहुँचता है छिपकर और वहां से अपने बच्चे को ले जाता है और साथ ही साथ उनके बीच में बातें होती हैं कि वासु उनके घर में नौकर बनकर रह रहा है। ये सब बातें वासु का चाचा गगन सुन लेता है और वीर सिंह भी सुन लेता है। राधा वहां से भाग निकलती है। वासु को भी राजेश्वर के बेटे खूब पीटते हैं, वो भी उन्हें सच बताकर वहां से निकल जाता है। मंधारी राधा को लेकर कलेक्टर माथुर साहब के यहाँ पहुँचता है तो माथुर उनसे कहता है कि सुबह होली है और मैंने होली की पार्टी में वीर सिंह और राजेश्वर दोनों को बुला रखा है और तुम राधा को यहाँ लेकर आ गए, फिर तो कयामत आ जाएगी। मंधारी कहता है कि कयामत तो आ गई है माथुर साहब। गोलियां चलने की आवाज आती है, तभी वहाँ वासु पहुँचता है जिसे देख कर राधा दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। राधा और वासु दोनों कसमें खाते हैं कि किसी ने भी उन्हें छूने की कोशिश की तो हम आग में कूद कर जान दे देंगे। राधा और वासु को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। राजेश्वर और दादावीर अलग अलग बैठे हुए हैं, तभी वहां बलीराम और मोंटी राजेश्वर से प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत करवाने आते हैं। इसी बीच राजेश्वर का बलीराम से बहुत जोर का झगड़ा हो जाता है। वो उसे मारने के लिए दौड़ता है क्योंकि राधा के लिए उसने कुछ अपशब्द बोल दिए थे, लेकिन वीर सिंह बीच में आकर समझौता कराता है और राजेश्वर को समझाता है कि तुझे फिर से जेल हो जाएगी और कहता है कि तेरे ही आदमी हैं जिन्होंने हमारे बीच नफरत की दीवार पैदा की। तभी वहां होली की टोली आ जाती है। माथुर वीर सिंह को रंग लगाने के लिए आगे आते हैं तो वीर सिंह उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि पिछले 35 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रंग लगाने की। तभी वहां राजेश्वर सिंह आता है और उस पर गुलाल फेंकता है और बोलता है कि कर्नल, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। और दोनों एक दूसरे को खूब रंग लगाते हैं और अंत में गले मिल जाते हैं।

चुनिया छल से राधा और वासु को अपने साथ ले जाता है ये बोलकर कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और उन्हें बंदी बना लेता है। ये सुनकर राजेश्वर और वीर सिंह भी वहां पहुंचते हैं राधा और वासु को बचाने के लिए। इसी बीच काफी लड़ाइयां होती हैं, गोलियां चलती हैं और चुनिया वासु के चाचा गगन और राधा के पिता गंजा को गोली मार देता है। दोनों पहाड़ी से गिर जाते हैं और साथ ही साथ इन्हीं लड़ाइयों के बीच राजेश्वर और वीरू को भी कई गोलियां लग जाती हैं और वो एक बेर के पेड़ के नीचे एक दूसरे से गले लगे हुए दम तोड़ देते हैं।

0: विनाश भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है और फिर फैलती है प्यार की रोशनी।
1: राधा और वासु की शादी हो जाती है, सनातनपुर और पालीपुर के बीच की दुश्मनी मिट जाती है और इस तरह इस फिल्म का सुखद अंत हो जाता है। श्रोताओं, आज का ये अंक अब यहीं संपन्न करने की अपनी साथी शिवा शुक्ला को अनुमति दीजिए। श्रोताओं, अगले सप्ताह फिल्मी संडे में एक और नई फिल्म के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। आज की फिल्म थी सन 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, फिर लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी इलाकाई खबरें। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jayashankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent, and to East Asia.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on key issues that will shape the coming century. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 11th round of counting for the Faulta Assembly repoll. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of the BJP was leading by 44,891 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxists was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress in third, and Jahangir Khan of All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting has been conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds for the Faulta constituency. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. At least 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Pakistan's Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered a partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta. Chinese Ambassador to India Xu Feihong today expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for sending a condolence message following the mining incident in Shanxi province of China. The incident has so far claimed 82 lives, while 9 people are still missing. The Department of Consumer Affairs has expanded the role of government-approved test centers, or GATCs, to strengthen the system for checking weights and measures in the country. For this, the government has amended the Legal Metrology Rules 2013. The 6th-day 79 World Health Assembly concluded in Geneva yesterday, during which member states adopted multiple resolutions to advance multilateral cooperation in safeguarding human health. The Assembly adopted more than 20 decisions and 13 resolutions on issues including stroke, tuberculosis, antimicrobial resistance, emergency care, hemophilia, precision medicine and radiation. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals in Mumbai at 3:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनतों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वजीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वजीर आला महकमा तवानाई, पावर कारपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निज़ाम का जायजा ले रहे थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोज़गार महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने

0: चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की जो इस वक्त 20 अजला में चल रही है और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 जिलों में नई दफात के साथ नाफिज किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेजी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर जरूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर-आला ने वाज़ेह हिदायत दी कि मुकर्रर मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के जरिए रेवेन्यू अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और आवाम पर मरकूज बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग में वज़ीर-आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतजाम तक महदूद रखने के बजाय मुअस्सर तरीके से आखिरी फर्द तक पहुँचाने के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने गाँव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउडस्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फराइज में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मुअसर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के जरिए मुनक्किद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतायज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन ज़िला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतजामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: दिखाने के लिए नए नए कपड़े, सबसे अच्छी बात, सबके चेहरे पर रौनक दिखाई देती है। आपको पता है हमारा भारत देश त्योहारों और आपसी प्रेम का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के पर्वों की खुशियों में शामिल होते हैं, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसे हम सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी मेल मिलाप कहते हैं, जिसका मतलब होता है सभी लोग प्रेम, सम्मान और भाईचारे के साथ रहें। बच्चों, जून के महीने में तो हम दो खास पर्व मनाने जा रहे हैं। एक तो गंगा दशहरा, कहते हैं इस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। आज के दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, साथ ही भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। बच्चों, गंगा जी को हमारी संस्कृति में माँ का सम्मान दिया गया है, क्योंकि वो हमें जल देती हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। बच्चों, ये पर्व हमें स्वच्छता, श्रद्धा और प्रकृति से प्रेम करने की सीख देता है, इसलिए हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, साथ ही अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, हमारा एक और पर्व आने वाला है, ईद उल अजहा। बच्चों, ये फेस्टिवल भी हमें त्याग, दया, इंसानियत की सीख देता है। इस दिन लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। बच्चों, इस पर्व का सबसे सुंदर संदेश है दूसरों की खुशी का ध्यान रखना और सबके साथ प्रेम से रहना। इसलिए बच्चों, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की एकता में अनेकता की खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और आपको पता है कि हम महीने के फोर्थ संडे को आपके लिए लाते हैं एक लघु नाटिका। तो आज भी हम आपके लिए लाए हैं लघु नाटिका कपटी मित्र, जिसमें कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। प्रस्तुतिकर्ता है शोभित शर्मा, निर्देशक अंकित सैनी और कलाकार हैं सुरवंदिता, विधात्री अनंत और सूत्रधार हैं नीलम शर्मा। तो आइए सुनते हैं लघु नाटिका कपटी मित्र। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक सुंदर नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक चंचल बंदर।
1: वाह, क्या मौसम है और ये प्यारा सा जंगल और मीठे मीठे जामुन। सच में कितना सुंदर है सब कुछ। चलो थोड़े जामुन और खाए जाए। अरे वाह, ये वाला तो बहुत मीठा है। अरे ये वाला तो इससे भी मीठा है। मजा आ गया, लेकिन काश कोई मित्र होता तो खाने का मजा दुगना हो जाता।
2: अरे बंदर, किससे बात कर रहे हो बंदर भाई?
1: अरे तोते भाई, कुछ नहीं, बस यूं ही।
2: अरे बंदर भाई, कुछ उदास लग रहे हो, मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ।
1: कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था, अकेले खाने में इतना मजा नहीं आता, अगर कोई मित्र होता तो।
2: क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? जो कुछ खाओ मुझे भी खिलाओ।
1: ऐसी बात नहीं है तोते भाई, तुम भी मेरे मित्र हो, लेकिन तुम कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ते रहते हो। मुझे ऐसे मित्र की जरूरत है जो मेरे साथ रहे, जिससे मैं बातें कर पाऊँ, मीठे मीठे जामुन खाऊँ साथ में।
2: सही कहा, खुशी तो बातने से भरती है।
3: अरे ये कैसी मीठी खुशबू आ रही है, लगता है कहीं स्वादिष्ट फल है। जिसकी खुशबू इतनी मीठी हो वो फल कितना मीठा होगा भाई।
1: अरे कौन हो भाई, किस खुशबू की बात कर रहे हो?
3: मैं नदी का मगरमच्छ हूँ, यही नदी में रहता हूँ, और तुम?
1: ओ स्वागत है तुम्हारा, मैं बंदर, इसी जामुन के पेड़ पर रहता हूँ। आओ ऊपर आ जाओ। अरे नहीं, तुम तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते।
3: और तुम नदी में तैर नहीं सकते। हा हा हा हा।
1: लो मैं

0: तुम्हारे लिए जामुन फेंकता हूँ।
1: वाह, इतने मीठे जामुन! मैंने आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया।
0: जब मन करे आ जाना दोस्त।
1: क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? कहाँ तुम, कहाँ मैं?
0: क्यों नहीं, दोस्त दिल से होते हैं, रूप से नहीं।
2: अब मगरमच्छ रोज आने लगा, दोनों घंटों बातें करते।
1: बंदर भाई, तुम दिन भर पेड़ पर पड़े रहते हो, बोर नहीं होते?
0: नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं होता। मैं पक्षियों के साथ बातें करता हूँ, गाने गाता हूँ और पेड़ पर कूदता हूँ।
1: काश मैं भी पेड़ पर चढ़ पाता।
0: काश मैं भी नदी में तैर पाता।
1: तो फिर हम दोनों अधूरे हैं।
0: नहीं मित्र, हर किसी में अलग गुण होते हैं। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, मैं नदी में नहीं तैर पाता।
1: वाह, तुम कितने समझदार हो।
0: तुम भी।
1: एक बात पूछूं, तुम इतना उछलते क्यों हो?
0: और तुम इतना मुंह क्यों खोलते हो?
1: क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ।
0: मैं बंदर हूँ।
3: दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, एक पेड़ पे नहीं चढ़ पाता और एक नदी में नहीं तैर पाता।
1: बंदर भाई, आज तो तुमने बहुत सारे मीठे जामुन खिला दिए, बहुत पेट भर गया। अच्छा, एक बात पूछूं, तुम इस तरह पेड़ों पर कूदते हो, तुम्हें डर नहीं लगता?
0: डर तो सबको लगता है, लेकिन डर का जीना ठीक नहीं है।
1: चलो, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब भाई शाम हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए।
0: घर?
1: हाँ भाई, घर। तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी।
0: तुमने बताया ही नहीं कि हमारी भाभी भी है। तो ऐसा करो, आज तुम ये जामुन मेरी भाभी को भी दे देना मेरी तरफ से।
1: ठीक है दोस्त, तुम्हारी भाभी भी जामुन खाकर आज खुश हो जाएगी।
2: मगरमच्छ अपनी पत्नी को जामुन देता है।
4: वाह, इतने स्वादिष्ट जामुन!
1: मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं, वही जामुन के पेड़ पर रहता है।
4: तुम्हारा दोस्त बंदर? ये कौन सा नया दोस्त है?
1: वही जामुन के पेड़ पर रहता है, मुझे भी जामुन खिलाता है और खुद भी खाता है।
4: तो क्या तुम्हारा ये दोस्त रोज मीठे जामुन खाता है?
1: जब वो उसी पेड़ पर रहेगा तो खाएगा नहीं।
4: अगर जामुन इतने मीठे हैं, तो सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा।
1: तुम कहना क्या चाहती हो?
4: मैं कहना चाहती हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा इस जामुन की तरह।
1: क्या तुम पागल हो गई हो? वो मेरा दोस्त है।
4: अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे उसका दिल ला कर दो।
1: नहीं, वो मेरा दोस्त है।
4: मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी।
2: बेचारा मगरमच्छ बड़ी परेशानी में पड़ जाता है।
0: अरे दोस्त, आज इतने उदास क्यों हो?
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही।
0: अच्छा, मित्र से बात छुपाते हो?
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही।
0: अरे क्या हुआ भाई, क्या बात है?
1: अरे मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पर बुला रही है।
0: अरे वाह, फिर तो मैं जरूर चलूंगा।
1: लेकिन तुम तैर नहीं सकते।
0: हाँ, ये भी सही है।
1: ऐसा करना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
0: वाह मित्र, आज तो नदी घूमने का मजा आ जाएगा और भाभी के हाथ का भोजन भी मिलेगा। चलो अब, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ गया हूँ, अब जल्दी चलो। वाह, नदी कितनी सुंदर लग रही है। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो?
1: मित्र, मुझे माफ कर दो।
0: अरे क्या हुआ?
1: मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है।
0: क्या?
1: मैं मजबूर था।
0: तो क्या तुम मुझे मार दोगे?
1: क्या करूं, मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया पर वो मानती ही नहीं, इसलिए मुझे छल से तुम्हें यहाँ लाना पड़ा।
2: बंदर समझ गया कि अब अपनी जान बचाने के लिए बुद्धि से काम लेना होगा।
0: अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया।
1: क्या, दिल पेड़ पर छोड़ा है?
0: हाँ, तुम्हें पता नहीं है, हम बंदर अपना दिल अलग रखते हैं।
1: तो चलो वापस चलते हैं। ओह, तो चलो वापस चलते हैं, तुम जल्दी से अपना दिल पेड़ पर से ले आओ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है।
2: किनारे पहुंचते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है।
1: मित्र, जल्दी अपना दिल लेकर आओ।
0: अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रखता है?
1: ओह, तो मैं धोखा खा गया।
0: नहीं मित्र,

0: धोखा तो तुमने दिया है, दोस्ती तो भरोसे पर चलती है। जहाँ लाला चाहता है वहाँ मित्रता खत्म हो जाती है। आज से मेरी और तुम्हारी मित्रता खत्म हो गई है, तो वे कपटी मित्र हो।
1: तो बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए, सच्ची दोस्ती निभानी चाहिए और कठिन समय में बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये लघु नाटिका? हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी हाँ बच्चों, हमें अपने दोस्तों को, मित्रों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्त हैं, सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आप भी जब भी आप अपना फ्रेंड बनाएं, दोस्त बनाएं, तो हमेशा उसके साथ ईमानदारी से रहें। तो बच्चों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, कुछ जानकारी की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय मंडल दिवस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की। बच्चों, दुनिया के कई देश आपस में मिलकर दोस्ती, शांति और सहयोग का संदेश फैलाते हैं। इन्हीं देशों के समूह को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। हर वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इस समूह में भारत सहित अनेक देश शामिल होते हैं। बच्चों, इस दिन लोगों को एकता, भाईचारे, शिक्षा, खेल और पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के बच्चे, खिलाड़ी और कलाकार मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बच्चों, अलग अलग भाषा, संस्कृति और पहनावे होने के बावजूद हम सब मिलजुल कर शांति और मित्रता के साथ रह सकते हैं। आइए चलते हैं, अब दूसरी जानकारी की बात करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। और हर वर्ष हम 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। इस दिन वर्ष 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रचा था। बच्चों, ये दिन हमें साहस, मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। प्यारे बच्चों, पर्वतरोहियों को कठिन मौसम, बर्फ और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। तो बच्चों, यदि हम मेहनत और लगन के साथ काम करें तो जीवन की बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ जरूरी संदेश भी सुन लेते हैं।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। छुट्टियों का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। ना पढ़ाई की जल्दी, ना सुबह सुबह स्कूल जाने की भाग दौड़। लेकिन दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमें खूब मजे करने के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना चाहिए। तेज धूप में ज्यादा देर बाहर खेलने से हमें लू लग सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, सिर दर्द, चक्कर और बुखार भी आ सकता है। इसलिए बच्चों, दोपहर के समय, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक धूप में बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ जरूरी काम है और जाना भी पड़ गया, तो आप कैप या छाता लेकर जाएं, और पानी की बोतल तो हमेशा साथ रखें। गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए बच्चों। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना और ताजे फल जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा और आम खाना चाहिए। ज्यादा बच्चों, तली भुनी चीजें और बहुत ठंडी चीजों से तो परहेज रखना चाहिए। और छुट्टियों में देर तक मोबाइल देखने के बजाय कुछ नया सीखें। कहानी की किताब पढ़ें, चित्र बनाएं, पौधों को पानी दें और कोई खेल खेलें। और हाँ बच्चों, मम्मी पापा और दादा दादी की मदद करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे अपना कमरा साफ करना, पानी भर कर रखना, छोटी छोटी चीजें ला कर देना या पौधों की देखभाल करना। इससे बड़े भी खुश होंगे और सबको अच्छा लगेगा। बच्चों, छुट्टियां सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती है, कुछ अच्छा सीखने और सबके साथ खुशियां बांटने का के लिए होती हैं। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों का मजा लें, खूब मुस्कुराएं और अपना ध्यान रखें और हर दिन कुछ नया सीखें। और साथ में हमारी जो मम्मियां हैं, उनकी भी शिकायतें हैं कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते। तो ये बात तो बहुत गलत है कि भाई बच्चे अपनी मम्मी का कहना नहीं मानते। देखिए बच्चों, मम्मी तो सुबह से उठकर कितना काम करती हैं घर का, और कुछ बच्चों की मम्मी तो बाहर जॉब भी करती हैं, फिर भी वो अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। और फिर अगर आप अपनी मम्मी की बात नहीं मानेंगे तो मम्मी को कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए आप सब अच्छे बच्चे हैं और आप अपनी मम्मी की सब बातें मानिए। मम्मी क्या कहती है, पढ़ने के लिए कहती होगी तो आप पढ़ाई करेंगे, तो इसमें आपका ही भला होगा, है बच्चों? तो इसलिए मम्मी को बिल्कुल ना परेशान करें, मम्मी की बात माने और अच्छे बच्चों की तरह अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। और हाँ, हॉलीडे होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पढ़ाई सब चीजों से सबसे ऊपर है। तो थोड़ी बातें बाद में कर लेंगे, तो पहले क्यों ना ये प्यारा सा गीत सुन ले।

तो बच्चों कैसा लगा आपको ये गीत? सच में बच्चों मम्मी पापा जो होते हैं वो ईश्वर की ही तरह होते हैं, इसलिए मम्मी पापा पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाते हैं। पता है बच्चों, एक ना छोटी सी लड़की थी, बहुत प्यारी सी थी, बहुत सुंदर सी थी, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। हर समय वो गुस्सा करती थी और उसकी मम्मी उससे बहुत परेशान थी और हमेशा समझाती थी कि गुड़िया गुस्सा मत करा करो, गुस्सा करने से चेहरा खराब हो जाता है। पर उसकी समझ में नहीं आता था और उसे आए दिन जब देखो तो अपने छोटे भाई पे, कभी किसी पे, जरा जरा सी चीज़ों पर वो चिल्लाने लगती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो पढ़ रही थी और वो जो उसकी स्टडी टेबल थी उस पर एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था और उसका जो छोटा भाई था वो खेलते खेलते आया और अचानक से उस गुलदस्ते पे उसका हाथ पड़ गया और वो गुलदस्ता टूट के नीचे गिर गया। और फिर क्या था, फिर तो गुड़िया इतना चीखने चिल्लाने लगी, शोर मचाने लग गई और अपने भाई की पिटाई भी कर दी। और उसकी पिटाई सुन के मम्मी भी दौड़ती हुई आई तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं पढ़ रही थी और इसने ये गुलदस्ता तोड़ दिया। तो मम्मी ने कहा तो फिर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है भाई, गुलदस्ता था, गलती से लग गया, टूट गया। लेकिन गुड़िया कहाँ मानने वाली थी, वो तो इतना शोर कर रही है। तो उसकी मम्मी ने क्या करा, चुप मम्मी चुपचाप ने मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शीशे के पास ले गई। और जब शीशे

में गुड़िया ने देखा कि वो जो चीख रही है, इतना चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, उसमें उसका मुंह इतना बुरा लग रहा है, वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तो उसने कहा, मम्मी ये मैं ही हूं क्या? तो मम्मी ने कहा, देखा तुमने, तुम वैसे कितनी सुंदर हो, लेकिन जब तुम गुस्सा करती हो, जब तुम चिल्लाती हो, तो तुम कितनी बुरी लगती हो, यानी कि तुम्हें अपना ही चेहरा इतना खराब लग रहा है। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि हमेशा हर बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हमारा जो अपना चेहरा है, अपना जो फेस है, वही खराब हो जाता है। जब तुम्हें अपना ही चेहरा इतना खराब लग रहा है, तो देखो मैं तुम्हें समझाती थी ना कि कभी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईना जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो जैसे आपका चेहरा है वैसा ही दिखाता है। तो बच्चों, गुड़िया को रियलाइज हुआ कि वाकई इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। उस दिन से गुड़िया ने प्रॉमिस करा कि वो अपनी मम्मी पे, अपने भाई पे और किसी पे भी बिना मतलब कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी आज से प्रॉमिस करें कि आप भी कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे और हमेशा बड़ों का और छोटों को सबका सम्मान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप अपने सुझाव हमें जरूर लिखें। अगर आप बच्चों को कोई कविता लिखने का या कहानी लिखने का शौक है, तो वो भी आप हमें अपने कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में भेजें, हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। तो हमारा एड्रेस है कार्यक्रम बाल वाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहें और पत्रों द्वारा आप हमें बताएं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगले रविवार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता कुंजवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

आप सुन रही हैं लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत लता कुंजवाल की गाए कुमाऊनी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हो, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

0: इन क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। नमस्कार श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो एक और अनेक। श्रोताओं, आज हमारे एक यानी मुख्य केंद्र बिंदु हैं हिंदी सिनेमा के सबसे शालीन और दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब, और अनेक हैं उनकी फिल्मों में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले वो शानदार सह कलाकार जिन्होंने मिलकर सिनेमा का इतिहास रच दिया। शुरुआत करते हैं साल 1965 की कल्ट क्लासिक फिल्म वक्त से। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब के साथ राजकुमार और साधना जैसे बड़े कलाकार थे। महफिल सजी है, राजकुमार और साधना सामने बैठे हैं और सुनील दत्त साहब की मौजूदगी में पार्श्व में आशा भोसले की मखमली आवाज गूंज रही है। आइए सुनते हैं ये सदाबहार गीत फिल्म वक्त से। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

वक्त फिल्म की इस महफिल के बाद अब रुक करते हैं हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन संगीतमय कॉमेडी फिल्म पड़ोसन की तरफ, जो साल 1968 में आई थी। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब के साथ अनेक कलाकारों की टोली थी, खूबसूरत सायरा बानो, कॉमेडी के किंग महमूद और खुद किशोर कुमार। ये गाना एक मुकाबला है जहां एक तरफ सुनील दत्त साहब खिड़की पर खड़े हैं और पीछे से किशोरदा उनके लिए सुर लगा रहे हैं। चलिए इस मज़ेदार जुगलबंदी का आनंद लेते हैं। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, अब बात करते हैं एक ऐसी जोड़ी की जिसने रुपहले पर्दे पर जज्बातों की नई परिभाषा लिखी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुनील दत्त साहब और बेमिसाल अदाकारा नूतन जी की। साल 1967 में आई फिल्म मिलन पुनर्जन्म पर आधारित एक अमर प्रेम कहानी थी। इस गाने में दत्त साहब कश्ती चला रहे हैं और नूतन जी को सुर मिलाना सिखा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों से सजा ये रूहानी गीत सुनिए।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। श्रोताओं, हमारे एक और अनेक कार्यक्रम में जो एक कलाकार है, मुख्य कलाकार है, वो है सुनील दत्त। श्रोताओं, सुनील दत्त साहब की खासियत थी कि वे हर तरह के कलाकारों के साथ स्क्रीन पर जम जाते थे। साल 1967 में ही एक और बेहतरीन फिल्म आई थी, हमराज। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में दत्त साहब के साथ राजकुमार और विमी मुख्य भूमि

श्रोताओं, कार्यक्रम एक और अनेक में यादों का ये सुरीला सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज के प्रोग्राम एक और अनेक में हमने बात की आपसे कि कैसे सुनील दत्त साहब ने खुद चमकते हुए अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर कई यादगार और भावुक लम्हे बुने। अब समय हमें इशारा कर रहा है कि मुझे यानी आपकी दोस्त शिवा शुक्ला को आपसे विदा लेनी चाहिए। चलिए श्रोताओं, जाते जाते आपको छोड़ जाती हूँ साल 1965 की पारिवारिक ड्रामा फिल्म खानदान के इस बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले गाने के साथ। श्रोताओं, इस गाने के दौरान सुनील दत्त साहब व्हीलचेयर पर बैठे हैं और उनके साथ नूतन, प्राण, सुधीर कुमार और मनमोहन कृष्णा जैसे अनेक कलाकार एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। लता मंगेशकर की रूहानी आवाज में सुनिए ये लाजवाब गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है रवि ने। और इस गीत को सुनते रहिए और साथ ही साथ आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए और सुनिए ये प्यारा सा खानदान फिल्म का कार्यक्रम में अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आकाशवाणी के जो 90 साल ये बेमिसाल रहे हैं, यानी कि ये सफर श्रोताओं शुरू हुआ 8 जून सन 1936 में, और सन 1936 8 जून से चलता हुआ ये 90 सालों का सफर आज आ पहुंचा है 24 मई 2026, और आने वाले 8 जून 2026 को ये सफर पूर्ण होगा 90 सालों का। जी हाँ श्रोताओं, वैसे तो इसकी शुरुआत सन 1920 के दशक में हुई थी, जब ये सफर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। और श्रोताओं, अब चलते चलते ये सफर जब हुआ 23 जुलाई 1927 को, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बंबई स्टेशन का उद्घाटन कर देश के पहले बड़े रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। आर्थिक संकट के कारण श्रोताओं 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया, और 8 जून 1936 को श्रोताओं इसका नाम बदलकर हुआ ऑल इंडिया रेडियो, यानी के AIR। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज़ादी के समय यानी कि 1947 में देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। 3 अक्टूबर 1957 को लोकप्रिय विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, और इसी वर्ष यानी 1957 को ऑल इंडिया रेडियो की आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया। जी हाँ, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम पड़ा आकाशवाणी। और 1990 के दशक में FM भी श्रोताओं रेडियो की शुरुआत हुई, और 2001 में बेंगलोर में पहला निजी FM चैनल रेडियो सिटी खुला था। जी हाँ श्रोताओं, और ये सफर अब पूर्ण होने जा रहा है 8 जून 2026 को 90 सालों का। जी हाँ श्रोताओं, तो ये तो था 90 सालों के, हमने इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली, और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि श्रोताओं आपको पता है कि इस कार्यक्रम में यानी कि रिश्ता ये खास है कार्यक्रम में हम बात करते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं से, तो आइए इसी क्रम में हमने अपने एक श्रोता से बातचीत की, उन्हीं श्रोताओं की बातचीत हम आपको सुनवाते हैं।
1: मैं पूनम कानपुर से, आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसके लिए आकाशवाणी को और आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी बहुत प्यारा नाम है, शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी से हर कोई जुड़ना पसंद करता है, क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो सभी के जीवन में एक प्रेरणादायक नाम है और एक प्रेरणा का स्रोत है आकाशवाणी। आकाशवाणी से हम बचपन से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं, और अभी तक आकाशवाणी से हमारा जुड़ाव बना हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आकाशवाणी का एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी सभी को ज्ञान देती है और साथ साथ ढेर सारा मनोरंजन भी करती है। सभी श्रोताओं के जीवन में एक नया रंग भरती है आकाशवाणी, और सभी के जीवन में खुशियां लाती है आकाशवाणी। आकाशवाणी को हम सब बहुत प्यार से सुनते हैं, और आकाशवाणी से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने सिखाने का नाम है आकाशवाणी। आकाशवाणी नजीबाबाद की हम बात करते हैं, तो आकाशवाणी नजीबाबाद को हम सुनते आ रहे हैं जब से हमने रेडियो पर सुनना शुरू किया है। आकाशवाणी नजीबाबाद को रेडियो पर हम सब पहले सुनते थे, और आकाशवाणी का एक कार्यक्रम आता था, फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, पहले रिकॉर्डेड कार्यक्रम आता था, और इस कार्यक्रम को हम सब रेडियो पर ही सुनते थे, और रेडियो पर ही सुनकर हम सब बहुत कुछ सीखते भी थे। और अब तो नई नई तकनीक आ गई है, और अब हम मोबाइल ऐप पर भी आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनते हैं, और साफ सुथरा प्रसारण और अच्छी क्वालिटी में प्रसारण हम सबको सुनाई देता है, और हम सब बहुत प्यार से आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनते हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम सबको सुनने को मिलते हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, या फिर महिलाओं के लिए हो, या फिर किसानों के लिए कार्यक्रम हो, या फिर सभी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम। हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम, जो कि हर शुक्रवार को रात 9:30 से 10:30 तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम से हमेशा मैं जुड़ी रहती हूँ। नजीबाबाद के और भी कार्यक्रम आते हैं, उन सब कार्यक्रम को मैं सुनती हूँ और आनंद लेती हूँ। तो हम सब चाहेंगे कि आकाशवाणी नजीबाबाद को सभी श्रोता सुने और जुड़ें, और आकाशवाणी नजीबाबाद से अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनने को मिलते रहें और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप सब प्रस्तुत करते रहें। हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम, जब हम रेडियो पर सुनते थे तब हम कल्पना पंकज जी को सुनते थे। कल्पना मैम बहुत अच्छा कार्यक्रम करती थी उस समय पर। आकाशवाणी नजीबाबाद से मैं अपनी यादें साझा करती हूँ। कार्यक्रम को मैं सुना करती थी और मैं भी सोचा करती थी कि काश मेरा भी फोन आकाशवाणी नजीबाबाद में लग जाए। तब मैं रिकॉर्डेड कार्यक्रम सुनती थी और तब से मेरे मन में बस एक ही विचार आता था कि मैं नजीबाबाद में जरूर से कॉल लगा कर रहूंगी। फिर जिस दिन मेरा पहला कॉल लगा था आकाशवाणी नजीबाबाद में, मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत अच्छा लगा था। और अब लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं जरूर जुड़ती हूँ और मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। तो सभी श्रोता ऐसे ही नजीबाबाद से जुड़े रहे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। और आप सभी आरजेस को हम सलाम करते हैं। आप सभी बहुत मेहनत करते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के लिए, हम सबके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत, सभी आरजेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सलाम है आप सभी की मेहनत को। आप सब ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाते रहें और हम सबको सुनवाते रहें। सभी श्रोताओं को और आप सभी आरजेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो ये तो थी हमारी श्रोता, हमसे अपने विचार अपने अनुभव इन्होंने साझा किए, और सभी कार्यक्रम आकाशवाणी नजीबाबाद के इनको पसंद आते हैं। और इन्होंने रेडियो के सफ़र के बारे में भी बात की, और बिल्कुल सही बात है श्रोताओं कि पहले आकाशवाणी सुना जाता था रेडियो सेट पर। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो सेट पर आकाशवाणी नजीबाबाद सुना जाता था, और धीरे धीरे ये सफ़र चलता गया। उसके बाद FM रेडियो आए, और अब तो श्रोताओं हम अपने मोबाइल सेट पर यानी कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से देश और विदेश के किसी भी कोने में बैठकर आकाशवाणी नजीबाबाद को सुन सकते हैं और कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, हमारे इन्हीं श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं इन्हीं की पसंद का ये गीत।

इसी के साथ श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीब बाबा से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम रिश्ता ये खास है अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आइए पहले नजर डालते हैं आज के शेष कार्यक्रमों पर। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल साइंस मैगजीन कार्यक्रम रेडियोस्कोपी, और रात 10 होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00, और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। शाम 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत कलामे शायर होंगे रिजवान जिगर। शाम 7:32 पर श्रोता सुनेंगे मजलिसे अजा दरगाहे आलिया नजफे हिंद जोगीरमपुरी के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। समय याद रखिएगा शाम 7:32 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा शाम 6:55 पर। 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सत्यवीर सिंह की लिखी कहानी सिलवटें। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर पिंटू कुमार कीट वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय होगा कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। और युववाणी कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद आज क्रम होगा झलकी का।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। और आइए अब एक नजर डालते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। तो श्रोताओं, कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और रात 10 होगा कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। और 10:30 पर आपके व्हाट्सएप मैसेज और फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। गीत संध्या, ये कार्यक्रम होगा रात 8:00 और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:42 पर आप सुनेंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। शाम 7:32 पर होगा कार्यक्रम मजलिशे अजा। जी हाँ श्रोताओं, दरगाह आलिया नजफे हिंद जोगीरमपुरी के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा 6:55 पर। 6:45 पर होगा आप सुनेंगे वार्ता विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विकास में जलमार्ग का योगदान। वार्ताकार होंगे रोहित कौशिक। कृषिगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर होगा क्रम गपशप अड्डा और क्रैश कोर्स पैसा वसूल। रिश्ता ये खास है, जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम होगा कल शाम 5:00। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। और लोक संगीत के कार्यक्रम लोक धारा में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे मीरा शर्मा के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोक संगीत के कन्य कार्यक्रम धरती गाती है में कल सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे रजनी टोंक के गंगा दशहरा पर्व पर विशेष गंगा गीत। आपके साथ संगत पर होंगे ढोलक पर रामकेश, हारमोनियम पर अखिलेश कुमार और बेंजो पर होंगे परवेज। परिवार जगत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 1:15 पर। इस क्रम में आप सुनेंगे लघु नाटिका उड़ान मिड डे मेलोडी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। 12:05 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विजय गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग। सुहाना सफर, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे सवेरे 10:00 और 9:50 पर होगी बात आसपास की। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 था 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: अरे भाई, ये मई जून की गर्मी है या सूरज ने पर्सनल दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है हमसे।
1: ऊपर से पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट।
0: और बिजली का हाल तो ऐसा है कि पंखा भी हमें देखते ही कहने लगता है, भाई ऐसा है कि मुझे भी पंखा चाहिए।
1: सच में उज्मा, एक तरफ गर्मी की डिग्री बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों का बीपी, तीसरी तरफ बिल्स और चौथी तरफ हमारे रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं, बेटा आगे का प्लान है।
0: और अब बेचारा आम इंसान करे भी तो क्या करे।
1: तो जनाब, दिन भर की भाग दौड़, टेंशन, ट्रैफिक, टारगेट, तंगी और टेम्परेचर से परेशान जनता
0: शाम के ठीक 5:15 बजे एक ठंडा सा नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा का ग्लास लेकर अपने रेडियो सेट को ऑन करती है या न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड करके सर्च करती है आकाशवाणी नजीबाबाद, ताकि इस बढ़ती महंगाई और परेशानियों की दुनिया में थोड़ा सा खुशी का डोज मिल जाए।
1: और उस खुशी के डोज के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज लेकर आए हैं हम, यानी मैं आपकी अपनी दोस्त श्रेया विश्वास, और मेरे साथ है।
0: मैं आपकी अपनी दोस्त अजमा।
1: तो दोस्तों, इस बढ़ती गर्मी में क्यों ना हो जाए एक ठंडा सा गीत। तो आइए ले चलते हैं आपको इस ठंडे से म्यूजिकल ब्रेक पे।

0: श्रेया, उल्फत में तो सच में मैं भी हूँ। श्रेया, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि इस साल सूरज ने भारत को ही अपना पर्सनल टारगेट बना लिया है। सुबह 8 बजे ही धूप ऐसे पड़ती है भाई, जैसे किसी ने ऊपर से ना तंदूर ऑन कर दिया हो।
1: बिल्कुल, पहले लोग कहते थे दोपहर में बाहर मत निकलो, अब हालत ये है कि सुबह निकलो तो रोस्ट, दोपहर निकलो तो टोस्ट और
0: बिल्कुल।
1: शाम को निकलो तो ऑलमोस्ट घोस्ट।
0: और ये मई जून तो इस बार पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। घर के अंदर बैठो तो पसीना, बाहर निकलो तो हीट वेव। आखिर इस साल इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?
1: देखो उज्मा, इस बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये है एल नीनो, जो एक एनवायरमेंटल फिनोमिना है।
0: एल नीनो?
1: यस, इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई, पोल्यूशन, कॉन्क्रीट सिटीज, गाड़ियों का धुआं। भाई कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस हैं।
0: श्रेया, बाकी रीजंस तो सब मेरी समझ में आ गए, पर अब ये एल नीनो, ये कौन सा विलन है?
1: देखो उज्मा, एल नीनो विलन तो है पर फिल्मों वाला नहीं बल्कि वेदर वाला विलन है, जिसकी वजह से जो पैसिफिक ओशन हमारा, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म होने लग गया है, जिससे दुनिया भर के जो मौसम का तापमान है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ता जा रहा है।
0: मतलब ना कूलर काम आ रहा है ना एसी में चैन मिल रहा है, बिजली का बिल अलग से डर आ रहा है और सूरज ऊपर से मुस्कुरा रहा है। वाह रे एल नीनो।
1: दोस्तों, ऐसी गर्मी से बचने के लिए पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, जो पानी से करेगा प्यार वही बचे रहेगा इस गर्मी की मार से।
0: बिल्कुल, घर से बाहर निकलो तो कैप, अम्ब्रेला, सनग्लासेस का यूज करो, क्योंकि स्टाइल भी रहेगा भाई आपका और सर्वाइवल भी।
1: बिल्कुल, खाने में तरबूज, खीरा, नींबू पानी, छाछ, ऐसे हाइड्रेटेड चीजें लीजिए।
0: बिल्कुल, और अपने कमरों में स्नेक प्लांट तो जरूर ही रखे, जिसे मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं, जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं और कमरों की हवा फ्रेश रखते हैं।
1: बालकनी में या कमरे के बाहर आप एलोवेरा लगा सकते हैं, ये गर्मी में आपको कूल रखेगा और ये बेस्ट प्यूरिफायर भी कहा जाता है।
0: पीस लिली कमरों में डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, ये सुंदर तो होते हैं, सुंदर सफेद फूलों के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी भी जो है कंट्रोल करते हैं।
1: उसमें तुम जानती हो ऐसे कितने पेड़ पौधे हैं जो हमें इस उबलती गर्मी से बचा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ, बिजली बचाओ और पानी बचाओ।
0: बिल्कुल श्रेया, मुझे भी ना पानी से दोस्ती करनी है। देखो भाई, एक छोटा सा

0: देख लेते हैं, हमारे लिसनर्स भी ना अपना नींबू पानी का ग्लास हाथ में लिए बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपना सिप लेना ही भूल जाए।
1: ठीक है जैसा तुम कहो। तो दोस्तों ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मजे लेते हैं इस म्यूजिकल रिदम का।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं युवाणी और मैं हूं आपकी अपनी साथी उज्मा और मेरे साथ है हमारी दोस्त श्रेया।
5: उज्मा तुमने कभी सोचा है कि हमारे लिसनर सिर्फ हमारी आवाज सुन पाते हैं, हमें देख नहीं पाते?
4: और हमारी आवाज ही हमारी पहचान है श्रेया, हमारे लिसनर हमारी आवाज से ही पहचान लेते हैं। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो?
5: क्योंकि उज्मा आज कुछ खास है। आज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एहसास की जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत लोगों के अंदर चुपचाप पल रहा होता है।
4: एक ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि दिमाग, इमोशंस और

0: दिल तक को थका देती है।
1: दोस्तों आज हम हमारे सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं साइलेंट बर्नआउट क्या होता है और इसे कैसे पहचाने।
0: साइलेंट बर्नआउट यानी वो हालत जब इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है।
1: वो रोज काम कर रहा होता है, लोगों के साथ हंस रहा होता है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर इतनी थकान, इतनी चिड़चिड़ाहट और इतना खालीपन वो क्यों महसूस कर रहा है।
0: और सबसे बड़ी बात, कई बार इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो बर्नआउट का शिकार हो चुका है।
1: क्योंकि दोस्तों ये अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन की बैटरी बैकग्राउंड ऐप्स की वजह से क्वाइटली ड्रेन हो जाती है।
0: कभी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कभी छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं, और कभी किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, और कभी इंसान सिर्फ चल रहा होता है, जी नहीं रहा होता।
1: दोस्तों सबसे पहले खुद से थोड़ा टाइम, खुद के लिए टाइम निकालिए, रेस्ट दीजिए अपने आप
0: बिल्कुल।
1: को। हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी तो नहीं।
0: और थोड़ा फोन और सोशल मीडिया से भी ब्रेक लीजिए, थोड़ा दूर रहिए, अच्छी नींद और अपने पसंद के छोटी छोटी चीजों के लिए अपने लिए टाइम निकालिए।
1: किसी अपने से बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार दिल हल्का करने के लिए आधी परेशानी वही खत्म हो जाती है जब आप किसी से बात करते हैं।
0: बिल्कुल। और याद रखिए दोस्तों, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा आराम कर लेना कमजोरी नहीं होती।
1: क्योंकि मशीन भी लगातार अगर चलने लग जाए ना उसमें तो गर्म हो जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं।
0: बिल्कुल।
1: थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, थोड़ा मन को अगर सुकून दे देंगे तो हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, और बैटरी चार्ज हो गई तो इस भागती हुई दुनिया में हम आराम से काम कर पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों ये तो था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज, जिसमें हमने बात करी साइलेंट बर्नआउट की। इसी के साथ ले चलते हैं आपको हमारे इस छोटे से ब्रेक पे।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लेकर आते हैं कुछ स्पेशल। तो दोस्तों पेश है हमारी आज की स्पेशल छलकी जिसका टाइटल है तावीज का विश्वास, जिसका आलेख किया है उज्मा ने और प्रतिभागी है वाणी कौशिक, राशि त्यागी और उज्मा।
2: झलकी दिखला जा, झलकी दिखला जा,
3: झलकी दिखला जा।
1: दोस्तों आज है संडे और संडे को हम आपके लिए लेकर आते हैं झलकी दिखला जा। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही झलकी जहाँ जिंदगी की सच्ची कहानियाँ दिल की गहराइयों से निकलकर आपके कानों तक पहुँचेंगी। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही कहानी में जो हर उस इंसान से जुड़ी है जो कभी ना कभी डर और भरोसे के बीच फंसा जरूर होगा। दो सहेलियाँ, एक ही हॉस्टल का कमरा, एक ही सपना, लेकिन दो पूरी तरह अलग अलग दुनिया। रिया मेहनत की दीवानी, तर्क की पुजारी और हर समस्या का हल अपनी समझ और परिश्रम में ढूंढती है। वहीं सना जिसकी हर सांस अंधविश्वास से बंधी है। छोटी सी घटना, काली बिल्ली, टूटा शीशा, गुरुवार का दिन, सब कुछ उसके लिए तावीज और किस्मत का खेल बन जाता है। क्या एक छोटा सा तावीज सच में इंसान को हर मुसीबत से बचा सकता है या फिर असली सुरक्षा मेहनत, समझ और सही फैसले में छिपी है? तो चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या हो रहा है।
4: रिया जल्दी उठ, आज इंटरव्यू है यार, तो भूल गई क्या अभी तक कैसे पड़ी है? फटाफट उठ जा, हमें जाना है।
5: यार सना एक मिनट रुक जाना, क्या दिन है आज? आज गुरुवार है ना, ये बिना हरा ताबीज पहने मैं बाहर नहीं जा सकती यार, आज बिल्कुल भी नहीं।
4: तू भी ना, हर दिन का एक नया ताबीज सना।
5: रिया देख मजाक मत किया कर इस मुद्दे पे ना तू, पिछले महीने मैंने ताबीज नहीं पहना था ना तो उसी दिन मेरा टेस्ट खराब हो गया था।
4: अरे वो इसलिए हुआ था मैडम क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी।
5: चुप रह। नहीं, मौलवी साहब ने पता क्या कहा था, मेरी किस्मत पर ना बुरी नजर है, तू कहाँ समझेगी ये सब। हट,
4: चुप रह। हर चीज किस्मत या तावीज नहीं होते सना।
1: पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। शाम के समय रिया और सना दोनों पार्क में बैठी बातें कर रही हैं।
5: यार तुझे पता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया आज मुझे।
4: देखा, क्योंकि तूने मेहनत की थी यार।
5: जी नहीं, बिल्कुल गलत बोला तूने, क्योंकि मैंने आज तावीज पहना था।
4: यार तू हर चीज का क्रेडिट उसे ही क्यों देती है?
5: क्या है यार, क्योंकि वही मुझे बचाता है ना। तुझे पता है कल रात काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी, अगर मैं ये ताबीज ना पहनती ना तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था मेरे साथ।
4: रिया बिल्ली रास्ता काट जाए या चिड़िया उड़ जाए उससे जिंदगी नहीं बदलती यार।
5: रिया तू नहीं समझेगी यार, मुझे डर लगता है।
1: रिया और सना दोनों यूं ही लड़ती झगड़ती पार्क से वापस आती हैं, खाना खाती हैं और सो जाती हैं। शाम में मौसम खराब था तो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश होती है।
5: रिया, रिया सुन रही है तू?
4: क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार?
5: रिया मेरी सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
4: अरे बैठ, पानी पी तू।
5: नहीं नहीं, तू ना एक काम कर रिया, मेरा ना लाल लाल ताबीज कहाँ है, वो ला के दे दे रिया जल्दी।
4: तू पागल है?
5: दे देना प्लीज। तू ना रिया ज्यादा सवाल जवाब मत कर, बस मुझे लाल ताबीज ला दे।
4: रुक मैं ढूंढती हूँ, ले ये रहा।
5: कुछ भी असर क्यों नहीं हो रहा, मौलवी साहब ने तो कहा था हर मुसीबत से मुझे बचाएगा ये।
4: सना अभी ताबीज नहीं डॉक्टर की जरूरत है यार।
5: लेकिन रिया।
4: चुप रह, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, शांति से बैठ दो मिनट। सना मेरी बात समझ, डर से नहीं, सही इलाज से इंसान बचता है यार।
1: दो दिन बाद सना अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है और रिया उसके पास बैठी है। सना को होश आता है।
4: कैसी हो सना?
5: अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। रिया, पता है उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मर ही जाऊंगी, थोड़ी देर और हो जाती तो शायद मैं ना बचती। रिया, सच में रिया, तू सही कहती थी। शायद मैं हर चीज में अंधविश्वास को इतना ढूंढने लगी थी, डर इतना बढ़ गया था मेरा कि मुझे हर समस्या का हल सिर्फ ताबीज में ही दिखता था।
4: सना, विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके डर में जीना गलत है। और हाँ, आज से तेरे बैग में 10 ताबीज नहीं होंगे।
5: हाँ रिया, मुझे समझ आ गया है कि मेहनत, समझ और सही इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब पता है मैं क्या करूंगी? सिर्फ डॉक्टर की दवाई और इंटरव्यू की तैयारी करूंगी।
4: अब लगाना सना, तू मेरी दोस्त है।
1: दोस्तों, विश्वास इंसान को हिम्मत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को डर में जीना सिखा देता है। जीवन में मेहनत, सही सोच और सही इलाज का कोई विकल्प नहीं होता।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
1: रिंकू, तुझे वो दिन याद है?
4: कौन से दिन?
1: अबे वही वाले।
4: अरे वही वाले कौन से?
1: अबे वही सर्दियों के।
4: अरे सर्दियों के तो बहुत दिन होते थे, तू कौन से दिन की बात कर रहा है?
1: अरे वही भाई, जब हम सर्दियों में धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढा करते थे।
4: हाँ हाँ, याद है। और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है।
6: जी हाँ, मजा आ गया।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: तो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।

0: तो दोस्तों, आज हमने बात करी एलनीनो पर, हमने बात करी साइलेंट बर्नआउट पर, तो इतनी सारी हीटअप बातें हो गई, उसमें तुम्हारा क्या कहना है इस पर?
1: श्रेया, मैं तो देखो यही कहूंगी कि इतनी गर्मी जो हो रही है, इसका कारण अभी हम अपने दोस्तों से बातों में बता भी चुके हैं उन्हें। अब बात जो है वो ये है कि गर्मी से बचा कैसे जा सकता है।
0: सही बात है, उपाय ढूंढना ज्यादा
1: बिल्कुल।
0: जरूरी है।
1: तो दोस्तों, सबसे पहला तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, बहुत हल्का खाएं, बहुत हैवी खाना भी बहुत नुकसान देगा। और दूसरा, कपड़े बहुत हल्के पहने, सबसे पहले वाइट कपड़ों का बहुत

0: करे जो सूरज की किरणों को जो है दूर करता है, और तीसरा बिल्कुल बहुत तेज ठंडा पानी भी ना पिए, वो भी अब देगी रही है। श्रेया मुझे भी टोकी रही थी दोस्तों कि उसमें तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ख़राब लग रही है, तो दोस्तों ये उसी का कारण है, ठंडे पानी का, तो आप ज़रा उसे थोड़ा एहतियात रखें।
1: बिल्कुल, उज्मा की आवाज़ से सीख लीजिए और ठंडे पानी से दूर रहिए, लेकिन ठंडी शिकंजी हो, ठंडी रूअफ़ज़ा हो और नींबू पानी हो तो मज़ा ही आ जाए। क्या कहती हो तुम?
0: मुझे लगता है तुम्हारा तो वाकई दिल कर रहा है किसी ठंडी शिकंजी को।
1: बिल्कुल, मेरा बहुत तेज़ मन कर रहा है कुछ ठंडा पीने के लिए, तो क्या हम एक पानी के ब्रेक पे चलें क्या?
0: बिल्कुल भाई, नेकी और पूछ पूछ।
1: चलिए दोस्तों, हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, आप एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
1: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
1: क्या हो गया सुखुलाल, इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुझे, तू इतना कमजोर कैसे लगने लगा?
0: अरे यार क्या बताऊँ, वो मुझे शुगर है ना।
1: तुझे शुगर है? अरे अगर शुगर है भी तो कहीं आना जाना छोड़ देगा क्या?
0: भाई अब तो मैंने सब्र कर लिया है, मैं तो अब कहीं तभी जाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा।
1: देख मेरे भाई, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और एक अच्छे दोस्त के नाते मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ बता।
1: देख, जिनको शुगर होती है जैसे कि तुझे, उनको सब्र करना नहीं चाहिए।
0: क्यों भाई, शुगर वालों को सब्र क्यों नहीं करना चाहिए?
1: क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।
3: जी हाँ, मजा आ गया।

तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें ख़त के ज़रिए बता सकते हैं। ख़त भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं आज के प्रोग्राम के आखिरी गीत की ओर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वे 314.47 मीटर पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोती की भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला

0: संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई स्वराज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो आज 24 मई हो गई और भाई हमारे कहने का मतलब यो है कि भैया देखो लू और गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो भाई अपने किसान भाइयों को, अपने जो नौजवान साथियों को और जो भैया हमारे छोटे भाई हैं भैया, उन्हें हम तो यही बात कहेंगे कि भैया आप स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें, क्योंकि भाई देखो जब गर्मी हो है और लू चला है तो भाई आप जो है 11 बजे से और 3 बजे के बीच हो सके तो भैया बाहर ना निकलें, भैया घर पर ही रहें, क्योंकि भाई देखो जब लू लग जा तो काफ़ी तरह की बीमारी, भैया काफी तरह के रोग आदमी को लग जा है, और भैया लू जब लग जा तो काफी दिनों में आदमी ठीक हो करा। भाई देखो रोग या बीमारी कोई भी लग जाओ तो एक बार अगर लग जा तो भैया कई दिन लग जा, 10 दिन लग जा, 15 दिन लग जा, ये पता नहीं लगता। और भाई हमारा खेती किसानी का काम है भाई, रात दिन का काम है, तो भाई जब हम काम करना है तो भैया कुछ जल्दी कर लो, और दोपहर में अपना जो है ट्यूबवेल या भैया सिंचाई करनी है हम फसलों की तो ट्यूबवेल बंद कर दो, या भैया अन्य कोई काम करना तो समय से भैया कर निपटा लो, और शाम को भैया थोड़ी सी देर तक कर लो, और भाई दोपहर में अपने घर आराम करो। तो भाई हम तो यही बात कहेंगे कि आप जो है 11 बजे से और 3 बजे तक भैया भैया आप आराम करें बिल्कुल, और अपने आप स्वस्थ रहें, और भैया ज़्यादा ज़्यादा जाना भी पड़ रहा है भैया अगर थोड़ी सी धूप में, तो भैया आप जो है नमक चीनी का घोल का पानी अपने पास रखें और भैया नींबू डाल कर रखें और उसे पीते रहें, या आम का जो भैया आम पना कहते हैं उसको भैया वो बना लें, और काफ़ी तरह के भाई हमारे किसान भाई जो है अपने त्याज्य बरतें, और साथ ही साथ देखो एक कपड़ा हम अपने पास रखना है धूप से बचाव के लिए, अपने सिर पर रखने के लिए, ताकि भैया धूप यानी कि सूर्य महाराज हमारे सिर पर सीधे ना लगे। तो भाई इस तरह से हम अपना ख्याल रखना, साथ ही साथ अपने साथ साथ भैया हमारा खेती किसानी का काम है, साथ ही साथ हम पशुपालन करें हैं तो भाई अपने पशुओं का भी ध्यान रखना। भाई देखो पशुओं को सुबह शाम दोपहर और भैया लगभग दोपहर के बाद 3-4 बजे भाई लगभग 4 बार आप शुद्ध ताजा पानी पिलावा, ना कि भैया रखा हुआ पानी पिलावा, क्योंकि रखा हुआ पानी गर्म हो जा है उसे पशु नहीं पीता। दूसरा एक बात और है छोटी सी कि भाई कुछ हमारे भाई क्या काम करें कि भैया आजकल देखो सभी ने जो है समरसेबल करवा रखे हैं और टैंक रख रखी है अपने छतों पर, तो भाई छत से टैंक का पानी चलाया और वो भैया अपने पशु को पिलाने लगे हैं, तो भाई आप जो है टैंक का पानी अपने पशु को दोपहर में ना पिलावें, क्योंकि भाई दोपहर बाद जो है वो पानी भी गर्म हो जा तो वो सब पशु नहीं पीता और भैया प्यासा रह जाता है, तो आप जो है ताजा पानी अपने पशु को पिलावें। यदि समरसेबिल से ही पानी पिलाना तो भैया आप बिजली का प्रयोग करें और भैया उससे जो है मोटर चला कर उससे ताजा पानी पिलावा अपने पशु को। साथ ही देखो जब गर्मी पड़ा है तो हमारा पशु दूध देना कुछ थोड़ा सा कम कर दे है, तो हमारे किसान भाई क्या कहना है यार हमारी गाय या भैंस भैया दूध पर घट गई, तो भाई आप जो है उसके सही पोषण का यानी कि संतुलित आहार का ध्यान रखें, चरी आप उसको खिलाते रहें पशु को, और साथ ही साथ दाना मिश्रण और भैया खली का प्रयोग आप करते रहें, क्योंकि भाई गर्मी तो हो ही रही है लेकिन भाई फिर भी

0: आपको खली खिलाते रहना है, और अन्य प्रकार की खली भी आ रही हैं जो कि भैया ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, तो आप उनको खिलाएं ताकि भैया आपका पशु जो है दूध पर ना घटे और दूध उत्पादन आपको बराबर मिलता रहे। भाई देखो ये तो कुछ बातचीत हो गई भैया लू से बचाव की, साथ ही साथ भैया मौसम की देखभाल की। अब भाई देखो कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: तो भैया संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का कार्यक्रम में। और भाई हमारा कार्यक्रम खेती किसानी से जुड़ा है और भाई आइए चलते हैं खेती किसानी की ओर। भैया देखो आजकल हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में गन्ने की फसल लगा रखी है और भाई हमारे किसान भाई अपने खेतों में भैया उर्वरकों का प्रयोग भी कर रहे हैं, कीटनाशियों का प्रयोग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ भैया खरपतवार नाशियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी हमारी जो उपज है वो बढ़ने को तैयार नहीं है। तो भाई हमारी उपज किस प्रकार बढ़े? भाई देखो हम जो है अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की बजाय यदि हम भैया फसल चक्र अपना कर खेती करें तो भाई हमारी उपज निश्चित रूप से बढ़ेगी। भाइयों हम न अपने खेतों में भैया दलहनी फसलें, देसी खाद और भैया फसल चक्र अपनाना बिल्कुल छोड़ दिया। भैया हम क्या काम कर रहे हैं कि भैया गन्ने के बाद फिर गन्ना, गन्ने के बाद फिर गन्ना, और भैया ज़्यादा कर रहे हैं तो भैया पेड़ी के बाद थोड़े से गेहूँ ले ले हैं और गेहूँ के बाद फिर गन्ना बो दे हैं। यानी कि भैया इस फसल चक्र में हमारे जो खेत हैं भैया उन्हें आराम

0: बिल्कुल नहीं मिलता। और भाई देखो, आराम अगर नहीं भी मिल लिया है तो भाई हम जो है फसल चक्र अपना कर खेती करनी चाहिए, यानी कि अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश आवश्यक रूप से करना चाहिए। भाई करना क्या है, भाई यदि आप गन्ने की फसल भी बो रहे हैं तो भैया बीच में, भैया जो लाइनों के बीच में खाली स्थान, खाली लाइन की जगह खाली जगह पड़ी रहे है भैया, उसमें आप जो है दलहनी फसलों को बोलें, हरी खाद में भैया ढेंचा सनई बो दें, तो भाई उससे जो है आपके खेतों को भैया हरी खाद का खा मिल जाएगी। दूसरे भैया आपके खेतों में दलहनी फसलें जब उग जाएंगी तो भाई दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर ऐसे राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं जो कि भैया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जड़ों में करते रहते हैं। और जब भाई हम उसकी फली तोड़ लेंगे या भैया अपने खेतों में जोत देंगे तो भाई जो भी हमारे खेत में फसल खड़ी है या भैया अगली फसल हमें बोनी है तो भाई उस जो है नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि यूरिया की मात्रा हमारे किसान भाइयों को कम देनी पड़ेगी। और जब यूरिया की मात्रा कम देनी पड़ेगी तो निश्चित हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप भैया फसल चक्र अपने खेतों में अपनामा, साथ ही साथ भैया इंटरक्रॉपिंग अपनामा। दूसरे भाई हम तो एक बात और थोड़ी सी कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है अगर गहरी जड़ वाली फसल ले रहे हैं तो भैया उसके बाद उथली जड़ वाली फसल लें, ऐसी फसलों का चयन करें। दूसरे भाई अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को आपको अपने खेतों में लगाना चाहिए। भाई इस तरह से यदि आप अपने खेतों में भैया खेती किसानी करेंगे, फसल लगाएंगे तो भैया आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। क्योंकि भैया जब आमदनी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो हमारी लागत कम होगी, क्योंकि अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद हम कम पानी चाहने वाली फसल लगाएंगे तो भाई इस तरह से जो है हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो कम होगी। और एक फसल के खरपतवार दूसरी फसल में नहीं उगने के, तो जो हमारे किसान भाइयों का खरपतवार नाशियों पर या भैया मैनुअल गुड़ाई पर खर्चा हो रहा या भैया कीटनाशियों पर खर्चा हो रहा है तो भैया वो भी हमारे किसान भाइयों का बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ जाएगी। तो भाई अब देखो, आमदनी तो बढ़ती है और साथ ही साथ हमारे किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं, साथ ही साथ भैया सब्जियों की फसल लगाते हैं, तो भाई आज एक ऐसी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पिंटू कुमार। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से कृषि विज्ञान केंद्र में। किसान भाइयों, आज हमने बात की आपसे कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में कीट व रोग वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू कुमार से, और आज डॉक्टर साहब से हमने बात की कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के संबंध में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा विषय है आपसे कि कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के संबंध में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को इसी संबंध में जानकारी दीजिए, कद्दू वर्गीय फसलों में प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पिमार
0: जी।
1: मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में कई कीट लगते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य कीटों की बात करें
0: जी,
1: उसमें कद्दू का लाल भरण कीट जिसे हम रेड पंपकिन बीटल के नाम से जानते हैं
0: जी,
1: साथ ही साथ फल मक्खी जो कद्दू वर्गीय फसलों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है,
0: जी
1: इसे सभी किसान भाई जानते भी होंगे
0: जी,
1: क्योंकि इसके लक्षण आसानी से समझ में आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी व्हाइट फ्लाई जिसे सफेद मक्खी के नाम से जानते हैं, और कभी कभी थ्रिप्स का भी अटैक खीरे वर्गीय फसलों में देखने को मिल जाता है।
0: जी
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि रेड पंपकिन बीटल जिसे हम कद्दू का लाल भरण कीट के नाम से जानता है, ये लगभग सभी कद्दू वर्गीय फसलों में नुकसान पहुंचाता है।
0: जी
1: कद्दू के साथ साथ अन्य फसलों में जैसे आपका करेला है, आपकी लौकी
0: जी
1: है
0: जी
1: और खीरा है, तो इससे कई फसलों में अन्य में भी नुकसान देखने को मिलता है।
0: जी
1: ये एक काफ़ी हानिकारक कीट है, और इसकी पहचान अगर मैं बताऊं तो ये लाल कलर का होता है,
0: जी
1: और इसके जो अंडे हैं वही जड़ों के पास में ये देता है जमीन में, वहां से निकलकर जो भूमि से टच हुई रहती हैं
0: जी
1: शाखाएं कद्दू के फसलों की, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये पत्तों में छेद करके काफी नुकसान पहुंचाता है फसलों को, और सही से पौधा भोजन नहीं बना पाता, जिससे कई बार तो छोटी अवस्था में अगर इसका अटैक हो जाता है तो
0: जी
1: पौधे जो है सूख जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी कद्दू वर्गीय फसलों में प्रमुख कीट के संबंध में दी और किस तरह से हमारे किसान भाई कीटों को पहचान सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई बागवानी करते हैं उनमें सब्जियों की फसलें आती हैं, तो कीटों को तो हमारे किसान भाई पहचान लेते हैं, तो हमारे किसान भाई जब कीट को पहचान ले तो इसका प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
1: देखिए, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, मैंने अभी बात की लाल भरण कीट की
0: जी।
1: और आपकी फल मक्खी की, तो लाल भरण कीट को ये सुबह के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता,
0: अच्छा
1: अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो किसान भाई इसको

0: फिर से बैक कर जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा,
1: जी
0: और थोड़ा सा इसके ऊपर कवर होता है कीट के, तो हार्ड होता है, उतनी जल्दी से दवा या आपका तेल इस पर असर नहीं करता,
1: जी
0: तो जरूरी है जल्दी जल्दी इसको रिपीट करें।
1: जी
0: साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक दवा मेलाथियान
1: जी
0: जो 50% ईसी में आती है, उसकी लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी घोल बना के हमारे किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं, उस
1: जी
0: स्थिति में जब नियंत्रण के बाहर लगेगी कि इसकी संख्या ज़्यादा हो रही है और फसल को नुकसान पहुंचा रहा है कीटी।
1: जी
0: साथ ही साथ में एक दूसरा कीटनाशक है स्पाइनोसैड, जो
1: अच्छा
0: 45% ST में आता है, इसकी भी 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के हमारे किसान भाई इस कीट के जो है ऊपर स्प्रे कर सकते हैं
1: जी
0: और अपनी फसलों को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दूसरा जो मैंने कीट की बात की थी, जो
1: जी
0: फल मक्खी जो है फलों की जो छाल है उसके नीचे अंडे दे देती है, उसमें से जो उसके मैगिट जो लार्वा हैं वो निकलते हैं,
1: जी
0: और अंदर ही अंदर गुदे को खाने से उसमें क्या होता है, फल तिरछे हो जाते हैं, कई
1: जी
0: बार फल डेवलप भी नहीं हो पाते, तो इस तरह से ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, उनकी बाजार की जो एक वैल्यू होती है, जो एक कीमत मिलनी होती है फार्मर को हमारे, वो नहीं
1: जी
0: मिल पाती। अगर मैं इसके नियंत्रण की बात करूँ, तो
1: जी
0: सबसे पहले तो जितने भी इस तरह के फल हैं किसान भाई
1: बिल्कुल
0: जो मक्खी से ग्रसित हैं, उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दें,
1: जी
0: अगर वो वहाँ रहेंगे तो इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी।
1: जी
0: साथ ही साथ एक इसमें जो है ना फेरेमोन ट्रैप आता है,
1: जी
0: जिसको मिथाइल यूजिनोल एक टिकिया टाइप की रहती है, उसमें लगा के और थोड़े सी ऊंचाई पर इसको बांध देंगे, तो
1: अच्छा
0: फल इसमें जितने भी आपके मेल कीड़े हैं वो सब आके इसमें फंस जाएंगे, और प्रजनन सही से ना होने के कारण इसकी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी, तो इससे
1: बिल्कुल
0: भी हम नियंत्रित कर सकते हैं।
1: जी
0: साथ ही साथ किसान भाइयों को एक और भी ध्यान रखना है कि अगर लगातार हम कद्दू वर्गीय फसलों को लेते रहेंगे किसी भी खेत में, तो कीड़े बीमारियों की संख्या बढ़ती रहेगी, इन कीड़ों की
1: जी
0: संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि इनको लगातार भोजन मिलता रहेगा,
1: जी
0: उसी वर्ग की फसलें मिलती रहेंगी, तो फसल चक्र भी अपनाना जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: बीच बीच में उसमें गैप कर सकते हैं किसान भाई।
1: जी
0: इसके अतिरिक्त इसके लिए भी अगर मैं बात करूं, मेलाथियन बहुत ही कारगर कीटनाशक है
1: जी
0: जो 50% ईसी में आता है,
1: जी
0: लैम्बडा साइहेलोथ्रिन भी
1: जी
0: 5% ईसी में आता है,
1: जी
0: इसकी भी लगभग 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में अगर घोल बना के स्प्रे करते हैं, तो कीट के नियंत्रण में काफ़ी सहयोग मिलता है, तो
1: जी
0: किसान भाई इनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को दी। और जो भी हमारे किसान भाई बागवानी फसलों की खेती करते हैं, सब्जियों की फसलें उगाते हैं, चाहे उन्होंने बेल वाली तोरी लगा रखी हो, लौकी लगा रखी, कद्दू की फसल लगा रखी हो, या अन्य कोई फसल जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि फसलें आपने लगा रखी हो, तो डॉक्टर साहब की बात का आप अपनी फसलों पर प्रयोग करके अपनी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को कीटों के संबंध में दी कि कीटों को किस तरह से पहचान कर किस तरह से हमारे किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं, तो जैसा आज हमारा विषय भी है कि कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन, तो डॉक्टर साहब कीड़ों की बात तो हमारी हो गई है, अब रोग पर आते हैं हम। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से प्रमुख रोग हमारी कद्दू वर्गीय फसलों में लगते हैं?
0: किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं रोगों के बारे में, तो
1: जी
0: कई ऐसे रोग हैं जो हमारी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनको प्रभावित करते हैं,
1: जी
0: उसमें मैं प्रमुख रोग देखकर पाउडरी मिल्डू, डाउनी मिल्डू,
1: जी
0: एंथ्राकनोज एक बीमारी है, साथ ही साथ फ्यूजेरियम विल्ट, ये भी एक फंगस जनित बीमारी है जो होती
1: जी
0: है, और मोजेक ये एक वायरस जनित बीमारी है, तो कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कद्दू वर्गीय फसलों को प्रभावित करती हैं।
1: बिल्कुल
0: अगर मैं बात करूँ पाउडरी मिल्डू की, ये भी एक फफूंद जनित बीमारी है
1: जी
0: जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है।
1: जी
0: डाउनी मिल्डू और पाउडरी मिल्डू दोनों एक तरह के ही नाम देखने में आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा अगर मैं अंतर बताऊं, तो पाउडरी मिल्डू ऐसे समय में आती है जब मौसम शुष्क रहता है,
1: जी
0: और इनके लक्षणों में भी अंतर रहता है।
1: रोग की पहचान एवं नियंत्रण किस तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
0: तो पाउडरी मिल्डू में पत्ती के ऊपर की ओर चूर्ण के रूप में फैला रहता है,
1: आटा सा
0: छोटे छोटे, हाँ, पहले धब्बे बनते हैं, फिर वो आपस में मिलकर पूरी पत्ती को घेर लेते हैं,
1: जी
0: और सही से जो है ना तो भोजन सही
1: जी
0: से नहीं बना पाएगा, तो फल
1: बिल्कुल
0: भी छोटे आकार के बनते हैं उसमें, और कई बार नया जो है बेल सूख भी जाती है अधिक प्रकोप होने की दशा में।
1: जी
0: तो किसान भाइयों को चाहिए कि समय से इस रोग को पहचान लें, जब ये रोग दिखाई दे
1: जी
0: तो सबसे पहले तो रोग को पहचानने के बाद में सही चयन करें कि किस तरह के हमें जो है ना किस तरह से इसको नियंत्रित करना है।
1: जी
0: अगर मैं बात करूं फफूंदी नाशक की, फंगस जनित रोग है, तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक आता है फंजीसाइड हेक्साकोनाजोल,
1: जी
0: जो 5% ईसी में आता है, इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी
0: साथ ही साथ अगर किसान भाई चाहें तो इसमें ज़्यादा प्रकोप होने की दशा में अगर

0: अत्यधिक प्रकोप हो गया है,
1: जी
0: तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, ये भी एक बहुत ही अच्छे फंजीसाइड कॉम्बिनेशन है,
1: जी
0: इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसकी लगभग जो है ना 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी
1: जी
0: में घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। ये देख लें कि फ्रूटिंग की अवस्था में जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि
1: जी
0: ये जो हमारे केमिकल हम बता रहे हैं तो टॉक्सिक तो होते ही हैं,
1: जी
0: ठीक है। इसके अलावा जैसे दूसरी मैंने बीमारी की बात की, डाउनी मिल्ड्यू, वहां पर मैंने बताया था कि पत्ती के ऊपर सफेद चून सा बिखरा रहता है।
1: जी
0: इसमें क्या होता है, इस पे पत्ती के ऊपर पीले कलर के धब्बे बनते हैं,
1: जी
0: और जो आपके मुख्य लक्षण होते हैं वो पत्ती के नीचे होते हैं।
1: अच्छा सर
0: अगर वहाँ बात करें हम तो नीचे इसमें कॉटनी ग्रोथ, जैसे आपकी होती है रुई के
1: जी
0: आकार की
1: जी जी
0: ग्रोथ
1: जी
0: में बढ़वार देखने को मिलेगी, ऊपर
1: जी
0: हल्के पीले हरे से रंग के धब्बे होंगे, तो इसलिए इसको डाउनी मिल्ड्यू का नाम दिया जाता है। ये
1: जी
0: भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है,
1: जी
0: पत्तियों पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन फर्क पूरा हमारे जो है फलों पर भी पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि सही से जब पौधा भोजन नहीं बनाएगा, बीमार होगा, तो फल का आकार भी घटेगा और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को कम करने का काम करती है, और कई बार पौधे मर भी जाते हैं अगर अधिक उसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो
1: जी
0: इसके लिए किसान भाई क्या, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब का।
1: जी
0: इसमें दो फंजीसाइड है, जो हमारा मेटालैक्सिल है वो 8% है और मैंकोजेब इसमें 64%,
1: जी
0: दोनों को मिक्स करके एक ही जगह दिया जाता है। तो इसका क्या करें, 2 से 2.5 ग्राम मात्रा लें और
1: जी
0: 1 लीटर पानी घोल बना के इसका स्प्रे कर दें, काफी हद तक किसान भाइयों को इसमें जो है रोग के नियंत्रण में सहायता मिलेगी।
1: जी
0: तो ये दो रोग मैंने जो मुख्य बताए, इसमें साथ ही साथ में एक आता है फ्यूजेरियम विल्ट,
1: जी
0: ये भूमिजनित रोग कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि एक फंगस जो है फ्यूजेरियम है उसके द्वारा ये होता है।
1: जी
0: इसमें जो है ना पौधे की जड़ों से इन्फेक्शन शुरू होता है, पौधे जो जमीन से पानी उठाते हैं उसमें जाइलम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो
1: जी
0: ये जो हमारी फंगस है ये उस जाइलम को चोक कर देती है, उसमें इसकी ग्रोथ होने से वो बंद हो जाता है, तो पानी सही से ऊपर नहीं चढ़ पाता।
1: जी
0: अगर पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो अंदर से इसमें आपका काला काला चून सा देखने को मिलेगा, या वो चोक मिलेगा आपको जो जाइलम है,
1: बिल्कुल
0: ये भी एक बहुत खतरनाक रोग है, और इसमें ना एक बैग ही पूरा पौधा सूख जाता है।
1: अच्छा सर
0: तो इसमें किसान भाइयों को कई सारे जो है ना बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा फसल में।
1: जी
0: तो इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले तो जो इस तरह का रोग बार बार हो रहा है तो उस खेत को बदल दें जिसमें बार बार रोग आ रहा है, क्योंकि ये भूमिजनित रोग है और
1: बिल्कुल
0: इसमें फसल चक्र अपनाना उतना ही जरूरी है जितना रोग से बचाव करना
1: जी
0: जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ मैं इसमें बताना चाहूंगा, बीज उपचार जरूर करें। अगर
1: जी
0: जैविक विधि से मैं बात करूं तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा
1: जी
0: जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसमें मिला के जो है बीज की बुआई की जा सकती है।
1: जी
0: साथ ही साथ 2 से 2.5 ग्राम आपका कार्बंडाजिम,
1: जी
0: इसको जो है प्रति केजी बीज में मिला के तब बुआई करें, ताकि
1: बिल्कुल
0: प्रारंभिक अवस्था में बीज जो है रोग से बचा रहे।
1: बिल्कुल
0: मैंने पहले ही बताया कि इसमें फसल चक्र अपनाएं,
1: जी
0: और रोग आने की दशा में किसी भी अच्छे फंजीसाइड का, जैसे मैंने मैंकोजेब बताया अभी 75% WP में आता है,
1: जी
0: इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा जो है आप स्प्रे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत ही अच्छी जो है फंजीसाइड है, ये भी दवा पाउडर फॉर्म में आती है
1: जी
0: 0% WP में, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। ये भी 2 से 2.5 ग्राम लगती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और
1: जी
0: इसका स्प्रे कर दें। साथ ही साथ कार्बंडाजिम 50% WP में आते हैं, इसका भी किसान भाई यूज कर सकते हैं।
1: जी
0: समय से देखकर जो है रोग की पहचान कर उसमें दवा का इस्तेमाल करें, ताकि उसको रोग को नियंत्रित किया जा सके।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को दी कि रोग कौन कौन से आते हैं और रोगों की पहचान व नियंत्रण के संबंध में आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी अच्छी जानकारी दी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बात की कि बीज उपचार के संबंध में कि बीज उपचार आप अवश्य करें, फसल चक्र आप अपनाएं अपने खेतों में, तो बीज उपचार का रोग नियंत्रण में क्या महत्व है, किस तरह से हमारे किसान भाई बीज उपचार करके अपनी फसलों को रोगों से बचा सकते।
0: देखिए बीज उपचार
1: जी
0: तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे भूमिजनित और बीज जनित जो रोग हैं,
1: जी
0: जैसे मैंने अभी बात की थी कि फ्यूजेरियम विल्ट
1: जी
0: ये भूमि से लगने वाला रोग है, इसमें जो है ना दूषित जो हमारी दूषित करने वाली फंगस है जो
1: जी
0: हमारे पौधे में रोग पैदा करती है फ्यूजेरियम, वो
1: जी
0: जमीन में ही रहती है और जड़ों के माध्यम से पौधे में रोग पैदा करती है। साथ ही साथ एक दूसरा रोग जो डैम्पिंग ऑफ के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो कद्दू वर्गीय फसलों में नहीं, अन्य फसलों में जैसे मिर्च हो गया आपका, टमाटर हो गया, बैंगन हो
1: जी
0: गया, उनमें भी देखने को मिलता है।
1: जी
0: ये आपका फ्यूजेरियम और पीथियम फंगस हैं, इनके द्वारा ये रोग होता है।
1: जी
0: तो इन रोगों में बड़ा महत्व हो जाता है बीज उपचार का,
1: जी जी
0: और यह बीज जनित रोग जो बीज से लगने वाले रोग हैं उनमें भी जो है बीज उपचार का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि बीज उपचार के लिए मैंने अभी बताया था कि लगभग 2 ग्राम कार्बन डाइजिन
1: जी
0: जो 50% WP में आती है, उसको जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोएं।
1: जी
0: अगर फंजीसाइड का इस्तेमाल हमारे किसान भाई नहीं करना चाहते तो
1: जी
0: जैविक उपचार में मैंने ट्राइकोडर्मा अभी बताया था, 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा
1: जी
0: पाउडर ले लो, उससे आपका 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए तो उससे क्या होगा, जो बीज जनित रोग है और साथ ही साथ भूमि में भी अगर रोग है जहाँ बीज लगा रहे हैं तो उसे जो उससे सुरक्षित करने का काम ये हमारी दवा और ट्राइकोडर्मा करेंगे और कहीं ना कहीं रोग कम हमारे बीजों को ग्रस्त कर पाएंगे जिससे
1: जी
0: हमारी फसल बची रहेगी।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी बीज उपचार के संबंध में दी, और साथ ही साथ कीट व रोग प्रबंधन किस तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में। हमारी जो भी किसान भाई कद्दू वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी का अपनी खेती किसानी में लाभ भी उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते और क्या कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी से संबंधित या कीटों से रोगों से प्रबंधन के संबंध में आप देना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो समय से अगर कोई कीट, चाहे वो लाल बरंग कीट हो कद्दू का
1: जी
0: या अन्य आपकी फ्रूट फ्लाई फल मक्खी हो
1: जी
0: या कोई बीमारी हो, डाउनी मिल्डू पाउडर मिल्डू,
1: जी
0: अगर ये आपके खेत में आ जाती है और आप समय से इसको देख लेते हैं या ध्यान
1: जी
0: दे लेते हैं तो नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल
0: अगर आप इसको देखने में लेट हो जाते हैं या रेगुलर खेत का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं तो जब बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी उस समय नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होगा।
1: जी
0: तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी खेत का रेगुलर निरीक्षण करते रहें किसान भाई, और
1: जी
0: कोई भी कीड़ा बीमारी आए तो उसका निवारण समय से करें
1: बिल्कुल
0: ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिल सके समय से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आज कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के संबंध में दी, और डॉक्टर साहब आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने स्थल रिकॉर्डिंग सुनी, और भाई देखो विषय था कद्दू वर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। देखो भाई डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी कीटों के संबंध में हमारे सभी किसान बहन भाइयों को दी, बताया कि भाई जो भी हमारे सब्जी उत्पादक हमारे किसान भाई हैं या अन्य कोई भी फसल उगाते हैं तो भाई देखो सभी फसलों में कीट आते हैं, भाई सब्जियों के कीट अलग हैं, तो कद्दू वर्गीय फसलों के कीटों के संबंध में डॉक्टर साहब ने पूरी विस्तार से जानकारी दी, और भाई उसके नियंत्रण के संबंध में बताया कि भाई किस तरह से आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने रोग के संबंध में बताया कि रोग कौन कौन से हमारे कद्दू वर्गीय फसलों में आते हैं, और भाई उनका रोकथाम या उनका प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं। भाई देखो रोग जो होते हैं वो फफूंदी जनक होते हैं, और फफूंदी जनित बीमारियों के लिए डॉक्टर साहब ने भाई कितनी अच्छी दवाइयों का भी नाम बताया कि भैया आप जो है भैया एजोक्सिस्ट्रोबिन और भैया डेफिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि भैया बहुत ही अच्छी भैया और बहुत ही अच्छा उसमें साल्ट भी है दवाई का, तो वो उसका स्प्रे करके हमारे किसान भाई अपनी कद्दू वर्गीय फसलों को रोग से बचा सकते हैं। और भाई आप डॉक्टर साहब की जानकारी का अपनी सब्जी उत्पादन में अच्छा लाभ उठाएंगे, यही ऐसी कामना करते हैं हम। और भाई अब देखो कार्यक्रम में किसान भाई कह रहे होंगे कि भाई क्या बातचीत ही करो जाएंगे या कुछ मनोरंजन की ओर भी चलेंगे, तो बिल्कुल भाई बिना देर किए आइए चलते हैं किसान भाइयों के लिए मनोरंजन की ओर, और भैया सुनते हैं वीर अभिमन्यु की ये प्यारी सी नौटंकी।

द्रोणाचारी का ये संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। लाचारी ये थी कि उस समय अर्जुन श्री कृष्ण के साथ कहीं और चले गए थे और चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद गुरु की कृपा से सिर्फ उन्हीं को मालूम था। धर्मराज को अफसोस में पड़ा देखकर अर्जुन का बेटा सुभद्रानंदन अभिमन्यु सामने आया और इस प्रकार बोला।

0: अभिमन्यु की ऐसी वाणी सुनकर भीम ने वज्र के समान अपनी गदा को घुमाते हुए कहा,
1: ओ मेरे भतीजे, आज द्रोण गुरु देखें युद्ध के नतीजे, जो तुम

युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर अभिमन्यु माँ सुभद्रा से आज्ञा लेने पहुंचा।

0: माँ सुभद्रा की आज्ञा पाकर अभिमन्यु आंधी तूफान सा चक्रव्यूह की ओर चल पड़ा।
1: बालक को रन भेज कर करता घर में मौज, कायर अर्जुन डर गया देख हमारी फौज। कहाँ है बाप तुम्हारा जी जिसे मैंने ललकारा जी।

0: चलता तीर।
1: अभिमन्यु द्रोणाचार्य को परास्त कर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया।
2: अभिमन्यु जीत सब दरवाजे, सात में द्वार पर पहुंचा है। उस फाटक

0: मारो
1: मारो
0: मारो
1: मारो लेके।
2: ओह, ये तो अधर्म युद्ध हो रहा है।
3: ये अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान है।
0: जब तक इसके हाथों में तीर कमान है तब तक इसे जीतना नहीं आसान।
1: काट दो इसकी कमान,
0: ले लो इसकी जान।
2: ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है।

0: पापी जयद्रथ, तूने मेरा धनुष भी काट दिया। अच्छा तो मैं रथ के पहिए से युद्ध करूंगा। आ जा पापी, आ जा।
1: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये वीर अभिमन्यु की नौटंकी सुनी समूह स्वर में। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और भाई भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भाइयों देखो, अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त आपसे बिल्कुल भी नहीं दे रही है, लेकिन भाई उससे पहले हम आपको एक मौसम की चिट्ठी बता दें। भाई इस मौसम की चिट्ठी में अगली 27 मई तक का हाल हमारे पास है। भाई ये चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। भाई इस चिट्ठी के अनुसार आने वाले भैया 27 मई तक भैया मौसम शुष्क बना रहेगा और लू भैया चलती रहेगी। आप अपनी फसलों की सिंचाई को भैया सिंचाई करते रहें, साथ ही साथ भाई दोपहर में आप भैया गर्मी से बचे रहें और भाई सुबह शाम आप सिंचाई करें, साथ ही साथ भैया आप जो है अपने मौसम के हाल से अपडेट रहें और दोपहर में भैया स्प्रे किसी भी कीटनाशक का या किसी भी रोग का आप ना करें, स्वस्थ रहें और भैया अपनी खेती किसानी लंबे समय तक करते रहें। अब भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भैया इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा और भाई आजकल सभी के पास बड़े फोन है तो आप हमारा मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर 9457072888। भाई नंबर एक बार और लिख लें, 9457072888। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई समस्या हो या आप हमारे कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं या कोई दिशा निर्देश देना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य लिखें। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सत्यवीर सिंह की लिखी कहानी सिलवटें।
1: दीपावली के बाद मौसम ठंडा होने लगा था। सुबह शाम घूमते समय ठंडी हवाओं का एहसास भी होने लगा है। आज शाम के समय घूमते हुए सोचने लगा हूँ कि घर जाकर पहले गर्म कपड़े निकालूँगा। मफलर, जैकेट आदि पता नहीं कहाँ रखे होंगे। सोचते विचारते घर ही पहुँच गया। रोजाना की तरह उंगलियाँ दरवाजे पर लगी डोर बेल पर चली गईं। घंटी को तो बजना ही था, लेकिन दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। ये एक झटके के साथ मेरे मस्तिष्क में कौन गया। मेन गेट पर तो ताला लगा था और चाबी मेरी जेब में पड़ी थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और घर के अंदर आ गया। अचानक सारी तंद्रा भंग हो गई। सामने दीवार पर लगी फोटो में से सरला मुझे देखकर मुस्कुरा जो रही थी। उसकी आरएसटी में रखी गई फ़ोटो को घर के कमरे में लाकर टांग दिया गया था। जब भी घर में प्रवेश करता, सरला के मुस्कुराते चेहरे पर दृष्टि पड़ती ही थी। आज भी ऐसा ही हुआ। लगा जैसे कह रही हो, सर्दियां शुरू हो गई हैं मिस्टर जी। जैकेट और मफलर निकाल दिए हैं, कल को पहनकर जाना। मैंने अलमारी खोली, लेकिन ना मफलर दिखा ना ही जैकेट। भ्रम एकदम से वास्तविकता में बदल गया। गर्म कपड़े तो किसी संदूक या डबल बेड के बॉक्स में रखे होंगे, और इस बार निकालने भी मुझे ही हैं। लेकिन आलस्य मन बोला, अब नहीं यार, कल निकाल लेना। सोचकर मैं दूसरे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही टीवी ऑन कर दिया। न्यूज़ चैनल पर राजनीतिक बहस चल रही थी। सरला इस समय कमरे में आती तो झल्लाती, बस खुल गया टीवी, जब देखो न्यूज ही न्यूज़, हमें सीरियल भी देख लेने दिया करो। चाय ला रही हूँ, फिर मैं अपना सीरियल देखूँगी। ये आवाज़ भी लगभग रोजाना की ही थी। मुझे भी आदत सी पड़ गई थी। सरला आती तो टीवी का रिमोट उठाती और चैनल बदल लेती। हालांकि आज ऐसा नहीं होना था, सो नहीं हुआ। मैंने स्वयं ही रिमोट से न्यूज़ का चैनल बदलकर सीरियल लगा लिया, जो उसे बहुत पसंद था। सीरियल खत्म होते ही ध्यान आया कि कुछ खाना भी तो है। भूख को मेरे सुख दुख से क्या लेना देना, उसे तो बस लगना ही है। सोचने लगा कि आज क्या खाया जाए। फ्रिज खोलकर देखा, दोपहर की बची सब्जी रखी थी। बड़ा सुकून मिला। चलो सब्जी तो यही चल जाएगी, बस दो रोटियां बना लेता हूँ, आज का काम हो जाएगा। फ्रिज बंद कर ही रहा था कि नज़र वहाँ रखी ब्रेड पर भी पड़ गई। सोचा रोटी भी क्या बनाई जाए। ब्रेड पीस गरम करके सब्जी के साथ कैंडल लाइट डिनर किया जाए। नज़र सरला के फ़ोटो पर पड़ी तो लगा वह मेरे डिनर प्रोजेक्ट पर हंस रही है। जैसे कह रही हो, अकेले अकेले डिनर करोगे, बल्ब जला लेना, नहीं तो घर में कैंडल भी ढूंढते फिरोगे, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। अब तो बस सरला की बातों का अनुमान लगाकर यूं ही हंसी सी आ जाती है, तो कभी उदास भी हो जाता हूँ। आवाज़ें अब कानों के रास्ते नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के रास्ते यूं भी भ्रम पैदा करती रहती हैं। मतलब ये कि अब मैं भी एक भ्रम से भरी दुनिया में जीने लगा हूँ। जब तक सरला साथ रही, एक और एक 11 वाली बात सच लगती थी, लेकिन जब वो नहीं है तो एक भी नहीं, बस शून्य सा हो गया हूँ। शायद पति पत्नी के रिश्ते की ऐसी ही सच्चाई होती है। इस बार मेरी बात पर सरला हंसी नहीं, क्योंकि मैं दूसरे कमरे मतलब बेडरूम में जो आ गया था, बेडरूम में आकर बस लेटने का मन हुआ। एक तकिए पर दूसरा तकिया रखकर अधलेटा सा पसर गया। चाय बना रही हूँ, पहले पानी पीना है या चाय ही ले आऊं? लगा जैसे सरला की आवाज़ रसोई से आई है। मैं बोल पड़ा, पानी नहीं, बस चाय ही पिला दो। फिर से भ्रम सत्य पर हावी हो गया था, एक ही झटके में वापस अपने में लौट आया। क्या करें, 40 वर्षों का साथ जो रहा है सरला का और मेरा, पति पत्नी की सामान्य सी परिभाषा में रहकर इतना लंबा समय कट गया पता ही नहीं चला। हाँ, लड़ते झगड़ते भी रहे, रोते गाते भी रहे, लेकिन एक दूसरे की आदत और ज़रूरत कब बन गए पता ही नहीं चला। हाँ, बन जरूर गए थे, ये अब सच्चाई थी। घर में प्रवेश करते ही बच्चे दिखाई देते, बेटा और बेटी दोनों हंसते बोलते, लेकिन इन आँखों को तलाश सिर्फ सरला की रहती। जब तक वह दिख नहीं जाती, बेचैनी शांत नहीं होती थी। समय के साथ बेटे की शादी हो गई, बेटा पढ़ लेकर अमेरिका चला गया और वहीं की नागरिकता ले ली। इधर बेटी भी अपने ससुराल शादी के बाद चली गई। अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों शादी होने के बाद के समय की तरह फिर से दो अकेले रह गए हैं। बच्चों का सुख भोग कर एक बार फिर अकेले रहने का एहसास होने लगा है। इसी घर में गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद हम दोनों बच्चों की यादों और बातों के सहारे जीवन बिताने लगे थे। मोबाइल संस्कृति ने जीवन आसान बना दिया था, तो अमेरिका में बसे भूए बेटे और बहू के अलावा पौत्र पौत्री से भी लगभग रोजाना वीडियो कॉल हो ही जाती थी। लेकिन सरला के चले जाने के बाद ये वीडियो कॉल भी अब फ़ोन कॉल में बदल गई है, वो भी रोजाना नहीं। अब लगता है कि सरला ही इस घर की धुरी थी, फिर चाहे रिश्ता माँ का हो या पत्नी का। बिस्तर पर लेटा हुआ सोचने लगा, कहने को तो मैं डबल बेड पर लेटा हूँ, लेकिन अब ये डबल कहाँ रह गया है? लकड़ी के दो बेड जुड़ जाने से ये डबल बेड नहीं कहलाता, दो प्राणियों की उपस्थिति ही इसे डबल बेड बनाती है। उदास मन से दूसरे बेड पर नज़र पड़ी तो तमाम सिलवटें दिखाई दीं। कितनी बार कहा है मुझे बिस्तर पर सिलवटें अच्छी नहीं लगती, ठीक करके लेटा करो, सरला की आवाज़ से आई। मैं उठा और बिस्तर ठीक कर दिया। देखो अब तो ठीक है, अब मुस्कराने की बारी मेरी थी। पता था सिलवटें ठीक ना भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दिल का क्या करें, अकेला जो हो गया हूँ। बस ऐसे ही गूंगी बातें करता रहता हूँ। हाँ, अकेले में हंसा नहीं जाता, लेकिन उदासी की कोई सीमा नहीं रहती। सरला की आवाज़ फिर सुनाई दी, अरे खाने से पहले वाली दवाई खा लो, मैं खाना ला रही हूँ। लेकिन इस बार मैं फिर से भ्रम के जाल में नहीं फंसा। दवाई सामने रखी थी, मन नहीं हुआ, नहीं खाई। अब कौन सा सरला का डर है मुझे, मोह भी करूँ तो क्यों और किससे। मैं फिर से बिस्तर पर जा लेटा। मैंने पास के खाली बिस्तर को देखा तो एकदम साफ सुथरा, कोई सिलवट नहीं। देर तक देखता रहा, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उठा और सरला के बिस्तर पर फिर से तमाम सिलवटें बना दीं। मुझे अब अच्छा लग रहा था कि कम से कम सरला के बोलने और डांटने की आवाज़ आने का एहसास तो होगा। देर तक सिलवटों को देखता रहा और जागता रहा। जैसे सिलवटों पर लेटी सरला कह रही है, सो जाओ, अब आधी रात होने को है। अब याद आता है, रात को कोई भी समय हो, यदि मैं करवट भी लेता तो सरला को पता चल जाता और वो कितनी भी नींद में होती बोल पड़ती, क्या बात, नींद नहीं आ रही है क्या।
0: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सत्यवीर सिंह की लिखी ये पूर्व प्रसारित कहानी सिलवटे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के

0: 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। आवाजें थी सुरेश वाटकर और अनुराधा पौड़वाल की। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम त्रिशूल। गीत के बोल हैं साहिल लुधियानवी के और संगीत खयाम का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत के लिए धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम उजाला।

उजाला फिल्म में लता मंगेशकर और मन्ना डे के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 254 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और रात 10 बजे होगा अखिल भारतीय रविवार से संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8 बजे और 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे कुली नंबर 1 फिल्म के गीत। अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:50 पर आज कलाम शायर होंगे रिजवान जिगर। कल रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत होगा रात 10 बजे और 10:30 पर श्रोताओं आपके व्हाट्सएप मैसेज और फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे। गीत संध्या होगा रोजाना की तरह रात 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। पुनीत मेहरा के गए भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:42 पर।

युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा गपशप अड्डा और क्रैश कोर्स पैसा वसूल। रिश्ता ये खास है, ये कार्यक्रम आप सुने कल शाम 5 बजे।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे मीरा शर्मा के गाए भोजपुरी लोकगीत, और लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कल सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे रजनी टोंक के गंगा दशहरा पर्व पर विशेष गंगा गीत। आपके साथ संगत पर होंगे ढोलक पर रामकेश, हारमोनियम पर अखिलेश कुमार और बैंजो पर परवेज। बात आसपास की आप सुनेंगे सवेरे 9:50 पर, और दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा विजय गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रख रखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है।

ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: इसी क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।

0: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मजलिशे अज़ा दरगाहे आलिया नज़्फ़े हिंद के संपादित अंश पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।
3: आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। दरगाहे आलिया नज़्फ़े हिंद की फिजाओं में आज भी वही रूहानियत घुली हुई है, जहां अकीकत के चिराग हर दिल में रोशन है, जहां मोहब्बत, एहतराम और इंसानियत की खुशबू हर सांस में महसूस की जा सकती है। उर्स का ये मुबारक सिलसिला सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं, बल्कि तहजीब और रिवायत की रूहानियत विरासत का वो अजीम मंजर है, जो हर साल हजारों अकीदत मंदों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा है। दूर दराज इलाकों से आए जायरीन दुआओं में उठे हाथ, इबादत में झुके सर और खिदमत में मशगूल इल्तिजामियां हर मंजर पर अपने आप एक मुकम्मल दास्तान नजर कर रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे उन अहम शख्सियत से, जो इस रूहानी इज्तमा को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो चलिए, मैं अलीना अंजुम आप सभी का स्वागत करती हूँ दरगाह आलिया नज़्फ़े हिंद के एपिसोड 3 में। किसी भी अजीम इज्तमा को कामयाब बनाने के पीछे सिर्फ रौनकें नहीं होती, बल्कि एक मुकम्मल तज़ीम, बेहतरीन इंतज़ाम और बेशुमार मेहनत शामिल होती है। उर्स के इस निज़ाम को बेहतर अंदाज में समझाने के लिए हमने बात की संचालक नज़ीम बाकरी से, जो कि जिम्मेदार अफराद हैं जिन्होंने पूरे आयोजन की तैयारियों और मकसद पर रोशनी डाली। तो चलिए जानते हैं नसीम बाकरी से कि आने वाले जाहिरीन के लिए क्या इंतजामात हैं और क्या फैसिलिटीज उन्हें मिलने वाली है।
4: आने वालों के लिए पानी, उनके लिए खाने का भी इंतजाम है, पानी का भी इंतजाम है, रहने के लिए जो बड़े बड़े टेंट पड़े हुए हैं वो भी है, और जो जिन लोगों के अपने अपने कमरे हैं यहाँ वो भी इंतज़ाम है, और बाकी लोग किराए पे लेके जो बाहर कमरे बने हुए हैं उनमें भी रहते हैं। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, और पुलिस प्रशासन का बहुत ख़ास तौर से इंतज़ाम है। हमारी कई बार मीटिंगें हुई हैं पुलिस प्रशासन से, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप कीजिए, हम साथ हैं आपके। उनका बहुत बड़ा ताउन है पुलिस प्रशासन का हमारे साथ, XM साहब का, DM साहब का, सबका हमारे साथ, अयासो साहब का, जितने भी हैं हमारे पुलिस महकमे वाले, उनका बहुत बड़ा ताउन है हमारे साथ।
3: और सिर्फ अकीदत का नाम नहीं, बल्कि इंतज़ाम, तहजीब और मेहमान नवाजी की एक जिंदा मिसाल भी है। हजारों जाहिरीन की आमद के बीच हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को इंतजामिया पूरी संजीदगी के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अली इमाम से और जानते हैं उनकी मेहनत को थोड़ा और करीब से।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत अपने दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ आपका और आपकी पूरी एयर टीम एयर नजीबाबाद का, जो आप हमारे मौला के दर पर आए। देखिए, ये प्रोग्राम जो है तकरीबन 123 साल से कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है। इसको बोलते हैं सालाना तबलीग मजालिस, जिसका उनवान होता है जो समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं सही और गलत के बीच में लोगों को जागरूक करना, अपने देश से मोहब्बत करना सिखाना, और देश को किस तरह से देश और दुनिया की तरक्की के लिए, किस तरह से एजुकेशन के लिए, किस तरह से पब्लिक को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अच्छाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ जो है वो देश पहुंचे। हमारे यहाँ पे जो अभी आपका सवाल था, जो ये हमारा दरगाह कैंपस है, इसको हमने क्या है तकरीबन 12-13 सेक्टर में डिवाइड किया है।

0: और हर सेक्टर वाइज जो है हमने उसको जो एक टीम है वो गठित की है। इसके अलावा जो सफाई के लिए अलग की गई है, कुछ वॉलंटियर उसमें काम कर रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जल विभाग के लिए अलग हैं, प्लम्बिंग के लिए अलग हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग हैं, टेंट्स को अलग लोग देख रहे हैं, जो हमारा एक ग्रुप है तकरीबन जिसमें 300 से 450 लोग हैं, वो इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डेली आने वाले की जो एक अनुमानित हमारा पास एक फिगर है वो है तकरीबन यहाँ पे 3.5 से 4 लाख लोग जो इकट्ठा होते हैं, और एट ए टाइम यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 लाख पीपल रहते हैं। उनके रहने का, खाने का सब इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे खेमे भी लगाए गए हैं, हर साइज़ के टेंट जिसको आप बोलते हैं वो भी हैं। कुछ कमरेज अब अलॉट हैं, कुछ पब्लिक के हैं, कुछ प्राइवेट लॉज वगैरह है जिसमें आकर लोग ठहरते हैं और उसमें रहते हैं। जी
1: तो ज़ायरीन की बात करें, मेहमान की बात करें, कहाँ कहाँ से यहाँ पर मेहमान आते हैं?
0: देखिए, यूँ तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, मेजरली सऊदी अरब से, बहरीन, कतर, खाड़ी देशों से, इसके अलावा कुछ यूएसए और यूरोप के भी कंट्री से आते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी, और इधर फार ईस्ट मिडिल ईस्ट से भी बहुत से लोग आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से, एक कसीर एक एन नंबर ऑफ पीपल लखनऊ से, बनारस से, और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से, मेरठ से, दिल्ली से, मैं खुद दिल्ली से, बॉम्बे से, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, जो अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। और इसमें कोई एक रिलीजियस नहीं है, हर धर्म के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आते हैं अपनी मुरादें मांगते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं और उसको फुलफिल मौला करते हैं।
1: यहाँ पर किसी तरह की किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, सबके लिए इंक्लूजन यहाँ पर है, बेसिकली इरिस्पेक्टिव हो किसी भी मजहब से।
0: हाँ, इरिस्पेक्टिव है, एनी कास्ट हो, एनी रिलीजन, यहाँ पे आइए, आप अपनी दुआ मांगिए, किसी भी तरीके से वो करिए, आपको कोई वो नहीं है। और सबका यहाँ पे, बल्कि मैं एक शेर यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई बड़े शायर नसीमुल हसन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कि खुदा का नाम ज़माने में सबसे प्यारा है, फिर उसके बाद मोहम्मद हमें दुलारा है, और नहीं है कैद यहाँ पर किसी भी मजहब की, दरे अली पे जो आ जाए वो हमारा।
1: आखिर में हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम आपके लिए?
0: जी बिल्कुल, मैं आपके ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, यहाँ के इंतजाम देखिए, आपका मोस्ट वेलकम है, और सभी धर्मों के लोगों से यहाँ पे हम लोग पलके बिछा के आप लोग का स्वागत करते हैं।
2: रूहानियत की असल रूह इस्लाम, ईमान, अमर और इंसानियत के पैगाम में छुपी होती है। उर्स की इसी रूहानी पहलू को बयान करने के लिए हमने बात करी मौलाना शिकू हैदर से, जिन्होंने इस मुकद्दस मौके पर फजीलत दी और उसके पैगाम मोहब्बत पर तफसील से गुफ्तगू भी की। तो चलिए जानते हैं मौलाना शेखो हैदर से।
3: आम और मैसेज यही है कि सबसे पहले तो मानवता हो, यानी इंसानी ज़िंदगी हो, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग जमा होते हैं, और इमाम हुसैन के जिनका रोज़ा करबला में है और वो 40वां जो करबला में होता है उसमें भी सब लोग शरीक होते हैं, और यहाँ पर भी जो है हिंदू मुसलमान सभी लोग शरीक होते हैं, ईसाई सभी सब आते हैं और एक साथ बैठकर गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत कई साल पहले 1961 में करबला में शहीद कर दिया गया था और उनके बच्चों को भूखा प्यासा मार दिया गया था, उसी की याद में सब रोते हैं, गम मनाते हैं और सबको एकता का दर्श देते हैं कि यहाँ पर किसी को ना कोई बड़ाई है ना छोटाई है, सब एक साथ मिलकर बैठते हैं और जमा होते हैं और सब एक दूसरे के हाल अहवाल की पूछते हैं और मजलिस में रोते हैं। ये अहम पैगाम है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं।
1: जो आज का आपका जो बयान था, क्या उसका मौजूद था, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: हाँ, मैंने खाने काबा को, कि जो अल्लाह ने बहुत साल पहले जनाब इब्राहिम, एक नबी थे इब्राहिम, उनके ज़रिए से खाने काबा को मक्के में बनवाया था, उसी को मैंने मौजू बनाया और उसी पर लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। हमारी किताबों में मिलता है कि बहुत पहले जब काबा बन के तैयार हुआ तो उसमें हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम उसी के अंदर पैदा हुए, उनकी माता जी या वालिदा उसमें दाखिल हुई और वहीं से उनकी विलादत हुई और उसके बाद आज तक ये सिलसिला और ये रोज़ा भी मौला अली अलैहिस्सलाम का है। इसी को मौजू बनाते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए, उनकी तारीफ़ कि वो किस तरह के थे, कि आज तक भी साइंस जो है सर्च कर रहा है उनके बताए हुए बयान पर, तो लिहाजा हमें भी उनको ज़िंदा रखना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में हम शुक्रगुजार हैं कि 13 रजब को अली डे मनाया जाता है, यानी जन्मदिन मौला अली सलाम का मनाया जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से कि आपके पास इल्म बहुत ज्यादा था, यानी आप दुनियावी भी और दीनी दोनों इल्म रखते।
2: रूहानियत, अकीदत, इल्म और इंसानी खिदमत। दरगाह आलिया नजफ हिंद में जारी, उर्स मुबारक का यह खूबसूरत मंजर हराने वाले शख्स के दिल पर एक

0: गहरी छाप छोड़ रहा है। यहाँ सजती महफिलें सिर्फ रस्म नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का वो पैगाम है जो दिलों में एक दूसरे को जोड़ने की उम्मीद जगाता है। इंतजामिया की मेहनत, उलमाए किराम की नसीहतें और खिदमत में लगे लोगों का जज्बा, ये तमाम मंजर इस बात की गवाही देते हैं कि उर्स सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि रूहानी और इंसानी मिलन की एक मुकम्मल मिसाल है। इसी के साथ मैं अलीना अंजुम साद अहमद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर हमारे आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मजलिसे अज़ा दरगाह आलिया नज़्फ हिंद के संपादित अंश पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ये नात।

0: अभी आप सुन रहे थे ये नात। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी आप सुनेंगे और रात 10 बजे सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:50 पर अदबी दुनिया में आज कलामी शायर होंगे रिजवान जिगर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आज हम आपको सुनवाएंगे कुली नंबर 1 फिल्म के गीत और गीत संध्या होगा रात 8 बजे। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 10:30 पर और 10 बजे होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। परिवार जगत कार्यक्रम के अंतर्गत कल दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे लघु नाटिका उड़ान। विजय गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:05 पर। धरती गाती है इस कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे रजनी टोंक के गंगा दशहरा पर्व पर विशेष गंगा गीत। श्रोताओं ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:50 हुए हैं। अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत कलाम शायर हैं रिजवान जिगर।
1: मतला चंद शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा करें।

कुछ और इजाफा कर दिया। मतला चंदशेर हाजिर कर रहा हूं। चांद चेहरा बदलता रहा, रास्ते बेवफा हो गए, वो हमें इस तरह से मिले, गम से हम आशना हो गए। रोज खुशबू बिखरती रही, जिंदगी भी निखरती रही, साथ जब से तेरा मिल गया, बामो दर खुशनुमा हो गए। रोशनी यूं पिघलती रही, एक किरण चांदनी बन गई, एक चेहरा मुजस्सम हुआ, दो बदन आईना हो गए। रोज सूरज निकलता रहा, शाम होते ही डलता रहा, जिंदगी का सफर खूब था, लम्हा लम्हा फना हो गए। जब तलक हम सफर वो रहा, रास्ते जगमगाते रहे, जब वो बिछड़ा तो ऐसा लगा जैसे हम बेनवा हो गए। उसकी यादों से हटकर जिगर एक जरा देर क्या सो लिए, देर तक हमको ऐसा लगा जैसे लम्हे सजा हो गए। गुबार अपने अगर दिल का निकालूं गर इजाजत हो, किसी के गम में दो आंसू बहालूं गर इजाजत हो, मेरी इन प्यासी नजरों को भी तेरी दीद हो जाए, तेरे चेहरे से मैं पर्दा उठा लूं गर इजाजत हो। सुना है गेसुओं की छांव में आराम मिलता है, तेरी जुल्फों को साया मैं बना लूं गर इजाजत हो। जमाने ने गिराया है निगाहों से तुझे, लेकिन मैं पलकों पे तुझे अपनी सजा लूं गर इजाजत हो। सफर ये जिंदगी का है बहुत दुश्वार तय करना, तेरा गम हम सफर अपना बना लूं गर इजाजत हो। जरा मोहलत मिले दर्दे जिगर को तो जिगर, लेकिन जरा मोहलत मिले दर्दे जिगर को तो जिगर, लेकिन किसी को हाल ए दिल अपना सुना लूं गर इजाजत हो। सूरज का बार बार नजारा न कीजिए, सूरज का बार बार नजारा न कीजिए, चेहरे को आईने में निहारा न कीजिए। यूं भी हसीन लगता है इन बादलों में चांद, हर वक्त गेसुओं को संवारा न कीजिए। काम अपना दिल पे कर गया तीरे नजर का वार, लिल्लाह ऐसी भूल दोबारा न कीजिए। रुसवाइयों का खौफ है गैरों की बज्म में, उंगली उठा उठा के इशारा न कीजिए। साहिल है वो तो आप हैं मौजे वफा जिगर, साहिल से जाके मिलिए किनारा न कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अदबी दुनिया, कलामी शायर थे रिजवान जिगा। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या।

0: उमराव जान। इस फिल्म में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। गीत के बोलते सहरियार कर संगीत था खयाम का। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं ये सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में एक बार फिर से। फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल। गीत के बोल रविंद्र रावल के, संगीत बाबुल बॉस का।
1: आपके आने का था हमें इंतजार। मुस्कुराई कली जब है आती।

पहले तू शराब को उतरने दे, नजर के सामने शबाब को मचलने दे।

कॉलेज गर्ल का गीत श्रोताओं आपने सुना। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म बातों बातों में से। गीत के बोल हैं अमित खन्ना के और संगीत राजेश रोशन का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

बड़े दिल वाला। इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गीत के बोलते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं ये सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, बोल हैं साहिर लुधियानवी के, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम दाग।

गोरा और काला। इस फिल्म में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर को। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुली नंबर 1 फिल्म के गीत।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुली नंबर वन फिल्म के गीत। गीत आपने सुने, आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं श्रोताओं, चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कुली नंबर वन फिल्म के गीत। गीत थे समीर के, संगीत था आनंद मिलिंद का। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि

0: सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude A trade agreement at the earliest welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
4: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimensions of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussion focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the repoll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. The Election Commission had ordered a repoll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling for the West Bengal Assembly elections. The repolling was held on the 21st of this month. We have more from our correspondent.
5: Breaking the so-called Diamond Harbour model of the Trinamool Congress, BJP has set a record win in the Falta Assembly seat repoll today. Party candidate Debangshu Panda won the seat by a margin of 1,09,021 votes, defeating his closest rival CPIM Somunath Kurmi, who has got 40,645 votes. Debangshu Panda has got 1,49,666 votes. In an astonishing turn of event, Trinamool Congress's candidate Jahangir Khan finished fourth with only 7,783 votes. Congress is in the third position. By this win, total number of seats of the Bharatiya Janata Party has increased to 208 out of 294 assembly seats in the Vidhan Sabha. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation and repatriation in line with Ministry of Home Affairs guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the development

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताबुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतालिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर

0: हुई है, अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वाम मुत्तहदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर यह सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी, गैर मुल्कियों, नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की

0: दूर करने के लिए सीबीएसई की मदद की गरज से आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला सीबीएसई के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तश्वीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि आईआईटीज के माहिरीन की ये टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने, नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में सीबीएसई की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं, जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने चार अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा इख्तियार करने वाली ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्विशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्विशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्विशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ

0: साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसिल अथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सांगवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियो स्कूप, द नेशनल साइंस मैगजीन प्रोग्राम।
2: Good evening and welcome to Radioscope. In today's rapidly evolving world, science and technology continue to shape the way we live, learn, work and connect with one another. From artificial intelligence and advanced mathematics to healthcare innovations and India's growing achievements in space research, the spirit of scientific inquiry is transforming every aspect of society. Today's edition of Radioscope brings together distinguished experts, innovators and professionals who are contributing to these exciting developments through research, technology and public engagement. Stay with us for an informative, inspiring and engaging edition of Radioscope. Our editorial segment titled Innovate to Elevate by Aryan Rajput, founder of a deep tech startup who shares his thoughts on innovation-driven growth, sustainability, and the future of deep tech entrepreneurship.
3: I am Aryan Rajput, a student at IIT and the founder of a deep tech startup. Innovation does not always mean a big machine or complicated technology. Innovation simply means finding a better way to solve a problem. It can be a small idea, that saves the fall.

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांतो दे रॉय।
0: पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोर, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाई पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।
0: इसी के साथ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,000

0: 645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation, in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati